मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की तिथि 19, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:49 होने को हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

सत्संग अर्थात सज्जनों का संग मनुष्य के लिए सभी प्रकार से लाभकारी सिद्ध होता है। समाज में आदि युग से दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, एक सज्जन प्रकृति के और दूसरे दुर्जन प्रकृति के। इन्हें ही संत और असंत कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका विशिष्ट लक्षण ये बताया है कि संत सह ही दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। सज्जन पुरुष दूसरों के दुख दर्द क्लेश आदि को दूर करने के लिए स्वयं सहज भाव से कष्ट भी झेल लेते हैं। दूसरी ओर दुर्जन प्रकृति के लोग निर्दोष दुर्बल और असहाय लोगों को अनेक प्रकार की यंत्रणाएं और उत्पीड़न देते रहते हैं। सज्जनों में सहज दया भाव रहता है, दुर्जनों में स्वभावतः क्रूरता और निर्दयता होती है। संगत का प्रभाव हम जीवन में प्रत्यक्ष देखते हैं। शराबी और जुआड़ी के संग रहने वाले व्यक्ति शराबी जुआड़ी हो जाता है, वेश्यागामी का साथी वेश्यागामी और चोर डाकू लुटेरों का साथी चोर डाकू और लुटेरा हो जाता है। इसी प्रकार साधु के साथ रहने वाला साधु, पुजारी के साथ रहने वाला पुजारी, विद्वानों के साथ रहने वाला विद्वान, कलाकार और साहित्यकार के साथ रहने वाला कलाकार और साहित्यकार सहज ही बन जाता है। प्रकृति का ये नियम है कि जो जिसके साथ रहता है वो उसका गुण ग्रहण कर लेता है। पानी में चीनी मिल जाए तो उसमें मिठास, और नमक मिल जाए तो उसमें खारापन आप से आप उत्पन्न हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू।

0: गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिले नीच जल संगा। बुरी संगति से हानि और अच्छी संगति से लाभ हस्तामलक की भांति प्रत्यक्ष है। धूली के कुछ कण हवा के संपर्क में आकर आकाश की ऊंचाई छू लेते हैं और वे ही जब जल के संपर्क में आते हैं तो कीचड़ बन जाते हैं। स्पष्ट है कि उच्चादर्श के मार्ग पर चलने वालों के साथ रहकर मनुष्य बड़ा से बड़ा आदमी बन सकता है, और वहीं दुष्प्रवृत्ति और नीच प्रकृति के लोगों के साथ रहकर बुरा से बुरा और समाज का सबसे निकृष्ट आदमी बन जाता है। इसीलिए मनुष्य को कदापि बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए और ना ही उनकी बातें सुननी चाहिए। बगुले जैसा अभक्ष्य भक्षण करने वाला भी पयह पान करने वाला हंस प्रवृत्ति का हो जाता है। काक होए पिक बक हुमराला। दूसरी ओर दुर्जनों की संगति उसी प्रकार हानिकारक होती है जिस प्रकार काटे चाटे स्वान के दूह भाति विपरीत। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है कि बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देही विधाता। अतः दुर्जनों की संगति छोड़कर हमें सज्जनों की संगत करनी चाहिए, इसी से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। सत्संगति सदा लाभकारी होती है।
1: आकाशवाणी पटना से अभी आप चिंतन सुन रहे थे और अब प्रस्तुत है कृषि सूचनाएं।
2: किसान भाइयों नमस्कार। आजकल जैविक खेती की बातें होती हैं, साथ में अनेक तरह से उत्पादन बढ़ाने की बातें भी होती हैं। जैविक कृषि में बर्मी कंपोस्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। बर्मी कंपोस्ट एक जैविक खाद है जो कि बेकार कार्बनिक पदार्थों से एपिजाइक तथा एनिसिक केंचुओं द्वारा बनाई जाती है। एपिजाइक का मतलब हुआ सतह पर पाए जाने वाले और एनिसिक का मतलब हुआ सतह के अंदर पाए जाने वाले केंचुए। केंचुआ द्वारा कंपोस्ट बनाने की इस प्रक्रिया को बर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, जिसमें जैविक खाद और केंचुओं का उत्पादन साथ साथ होता है। इस विधि का विकास डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल ने किया था। इस खाद में गोबर की खाद की अपेक्षा नाइट्रोजन 1 से 1.5%, फास्फोरस 1.8 से 2% और पोटास 0.5 से 0.75% अधिक होता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवाणु ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, हार्मोन और एंजाइम भी पाए जाते हैं जो पौधों के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। अब आप जान लें बर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएंगे। तो बर्मी कंपोस्ट बनाने का काम गड्ढे, लकड़ी की पेटी, प्लास्टिक क्रेट अथवा किसी अन्य प्रकार के कंटेनर में किया जा सकता है। गड्ढे या पेटी की गहराई 1 मीटर से कम रखना चाहिए और इसके नीचे 8 से 10 छेद जल निकास के लिए बना दें। किसी ऊंचे एवं छायादार जगह पर 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा बना लेना चाहिए। गड्ढे के सबसे निचली सतह पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी, ईंट अथवा पत्थर गिट्टी बिछा दें। मिट्टी की परत 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटी बालू भी बिछा दें उसके ऊपर। बालू की परत के ऊपर 6 सेंटीमीटर दोमट मिट्टी की परत भी एक डाल दें। अब इस मिट्टी की परत को पानी छिड़क कर नम कर लेना चाहिए। इसके बाद 50 से 75 केंचुए इस मिट्टी की सतह पर बराबर की संख्या में डाल दें। अब नमी युक्त मिट्टी के ऊपर गोबर का ढेर बनाकर रख दें। गोबर के ढेर के ऊपर 2 से 4 सेंटीमीटर पुआल या सूखी पत्तियां बिछा दें। अब इसके ऊपर 20 से 25 दिनों तक पानी का छिड़काव आप करते रहें। 26वें दिन प्रति सप्ताह 2 बार आप जो कचरा है उसकी तह बनाकर रखते रहें। यह प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक कि गड्ढा भर न जाए। इसे सप्ताह में 1 बार पलटते रहें और उस पर प्रतिदिन पानी

0: का छिड़काव करें। इस प्रकार जब गड्ढा भर जाता है तब कचरा डालना बंद कर दें। लगभग 40 से 45 दिनों बाद बर्मी कंपोस्ट बन जाने पर 2 से 3 दिन तक पानी का छिड़काव बंद कर दें। इसके बाद खाद निकालकर छायेदार जगह पर ढेर कर दें और थोड़ा सूखने के बाद 2 मिलीमीटर साइज की जाली से छान लें। इस तैयार खाद में 20 से 25% तक नमी होनी चाहिए। छनी हुई खाद को प्लास्टिक के थैले में आवश्यकता अनुसार पैक कर लें। क्योंकि यह खाद अत्यधिक अत्यधिक पौष्टिक होता है, अतः इसकी मात्रा गोबर की खाद से बहुत कम उपयोग की जाती है। अनाज वाली फसलों में 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप प्रयोग कर सकते हैं। खाद की ये मात्रा 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप दे सकते हैं। इसकी आधी मात्रा खेत तैयार करते समय दें, शेष आधी मात्रा में से आधी मात्रा यानी 12.5 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रोपण या बुआई के 15 दिनों के बाद दें। फलदार वृक्षों में आवश्यकता अनुसार 1 से 10 किलो प्रति पेड़ बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। किचन गार्डन और फूल के गमलों के लिए 50 से 100 ग्राम प्रति गमला पर्याप्त होता है। सब्जी वाली फसलों में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। बर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से कई लाभ होते हैं। बर्मी कंपोस्ट अधिक किफायती होने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाती है। इसके प्रयोग से सब्जियों, फल एवं फूलों वाली फसलों में बीज का जमाव अपेक्षाकृत जल्दी होता है और पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है। इस खाद के प्रयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, भूमिगत जल और वायु के संचार में भी सुधार होता है।
1: अभी आपने कृषि सूचनाएं सुनी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
2: साथ में मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि

उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा।

0: विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में देश वंदना।

अभी आप ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। संसार में सभी के पास चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और चिंतन घटता जा रहा है। मन अशांत हो चला है। जब हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं तो फिर अशांति के सारे कारण खो जाते हैं। अशांति से छुटकारे का एक ही रास्ता है, सब कुछ भगवान पर छोड़ देना, निर्भर हो जाना, मुक्त हो जाना। लेकिन ऐसा करने के लिए भगवान में गहरा विश्वास, गहरी श्रद्धा, गहरा समर्पण चाहिए।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लोग कहते हैं ईश्वर नजर नहीं आते, पर सच तो यह है कि दुख के समय जब कोई दोस्त संबंधी साथ नहीं देता, उस समय सिर्फ ईश्वर ही नजर आते हैं।

हरि ओम शरण के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए अब सुनिए रामचरित मानस से पाठ, मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह का है।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे जड़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्रीराम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह का था और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य सूचनाएं।
1: श्रोताओं नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शशि प्रकाश, जो कि वरीय आवासीय चिकित्सक के पद पर तैनात हैं किडनी एवं मूत्र रोग विभाग IGIMS पटना में। आज का हमारा विषय है प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियों से बचाव। डॉक्टर साहब, तीन प्रकार के प्रोस्टेट की बीमारियां आपने बताई, उन तीनों से बचने के क्या क्या उपाय हैं और बदलती जीवन शैली को किस तरीके से अनुकूल में रखा जाए ताकि इन बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके।
2: जी धन्यवाद। आज हम लोग अपने ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं प्रोस्टेट कैंसर पे। सबसे पहले तो प्रोस्टेट कैंसर एक एज के बाद, 60 साल के बाद होने वाली बीमारी है। ये एक वंशागुनत बीमारी है जो पिताजी और हमारे वंशागुनत इसमें आता है। तो इससे बचाव के लिए सबसे पहला है जानकारी, और जानकारी में ये भाग है कि 55 साल के से ज्यादा उम्र के लोगों को अपने नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उसका जांच कराना चाहिए। इसका जांच क्लिनिकल एग्जामिनेशन से मल द्वार में उंगली करके किया जा सकता है, ब्लड जांच से किया जा सकता है, पेशाब जांच से किया जा सकता है, और अगर सस्पिशन हो, अगर संदेह हो, तो और सारे जांच करके किया जा सकता है। जहां तक बदलते जीवन शैली का संबंध है, मोटापा का बढ़ना, शारीरिक क्षमता का कम होना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना, चीनी का बढ़ना, ये सब चीजें इन बीमारियों में बढ़ावा देती हैं। तो ये प्रोस्टेट कैंसर से ये बचाव की बातें हैं। जहां तक इसके इलाज की बात है, जैसे ही बीमारी पता चलती है, जांच के बाद हम लोग शुरू करते हैं, और इसमें सर्जरी और कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और रेडियोथेरेपी विभिन्न चीजें हैं जो समय के साथ जिस तरह की बीमारी का जो स्टेज है होता है उसमें वैसा हम लोग करते हैं। दूसरी बीमारी है प्रोस्टेट ग्रंथि का केवल बढ़ना। मैं ये दर्शकों को, श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना कोई बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक समय के साथ सबका बढ़ता है। ये उसी तरह से है जैसे कि लोगों का बाल बढ़ता है, नाखून बढ़ता है, लेकिन ये जब समस्या उत्पन्न कर देती है तब हम लोग को इसके बचाव में जाना चाहिए। समस्या क्या हो सकती है मैं पहले भी बता चुका हूं, और बचाव के लिए हमको संतुलित मात्रा में पानी पीना है, सिगरेट और जो भी तंबाकू संबंधी चीजें जो हैं

0: वो उनका उनसे परहेज करना है, अगर किसी को चीनी है तो उसको कंट्रोल करना है, कब्ज की समस्या नहीं होनी चाहिए, और पेशाब करने के अगर किसी को पेशाब करने के बाद भी लगता है कि उसको दोबारा पेशाब लगेगा तो उसको रुक करके इंतजार करना चाहिए और दोबारा करना चाहिए, जिसको हम लोग टॉयलेट ट्रेनिंग बोलते हैं। तो इन सब चीजों से इन सब चीजों को कर करके फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस बात का, और इससे हम लोग प्रोस्टेट के ग्रंथि के बढ़ने में हम लोग बचाव कर सकते हैं। जहां तक प्रोस्टेटाइटिस है, तीसरी बीमारी जो कि इन्फेक्शन के चलती होती है, इसके ये जो है कम उम्र के लोगों में होती है, सेक्सुअली एक्टिव लोगों में होती है, तो इसके बचाव के लिए हम लोग को जहां भी सार्वजनिक शौचालय है वहां पे कोशिश करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, साफ सुथरे जगह पे ही मूत्र विसर्जन करना चाहिए, शारीरिक संबंध भी जब बनाए तो आप वहां भी लापरवाही न बरतें, और जो भी सुरक्षा के उपकरण आपके पास हैं उनका उपयोग करें, और जैसे ही इसके लक्षण आते हैं आपको तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से और यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए।
1: जी, जैसा कि हमें मालूम चला कि पुरुषों में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है ये प्रोस्टेट कैंसर, तो इसकी गंभीरता को किस तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि वो शुरुआती चरण में ही जागरूक होकर चिकित्सक के पास जाएं और सलाह ले सकें।
0: देखिए, जहां तक प्रोस्टेट कैंसर के बचाव की बात है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक पे ये बात है कि 55 साल के उम्र से ज्यादा व्यक्ति के हर एक व्यक्ति को अपनी जाँच करानी चाहिए, इसका फायदा है। लेकिन अगर जो नहीं भी करा पा रहे हैं तो जितने लक्षणों को मैंने बताया, पेशाब का बार बार लगना, पेशाब के धार की कम होना, पेशाब में जलन आना, पेशाब में खून आना, और पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगना कि पेशाब नहीं खाली हो, ऐसे अगर लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि आपको प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं इसको किया जा सके। प्रोस्टेट कैंसर ठीक होने वाली बीमारी है, इसका इलाज संभव है, हम लोग के पास सर्जरी की व्यवस्था है, हम लोग के पास दवाइयों की व्यवस्था है, हम लोग के पास कीमोथेरेपी की व्यवस्था है, हम लोग के पास रेडियोथेरेपी की व्यवस्था है, लेकिन ये तभी संभव है जब इनिशियल स्टेज में इन बीमारियों को हम लोग समझ पाएं और उसका सही समय से हम लोग इलाज शुरू कर पाएं। जहां तक दवाइयों की बात है तो अल्फा ब्लॉकर्स का रोल है पेशाब में जो भी परेशानियां हो रही हैं, अगर पेशाब का तीव्र न होना, पेशाब का रुक रुक के होना, इसमें अल्फा ब्लॉकर अच्छा काम करता है, लेकिन इन दवाइयों को शुरू करने से पहले हम लोग को प्रोस्टेट कैंसर को जरूर रूल आउट कर लेना चाहिए कि वो हमारी बीमारी नहीं है, और बिना डॉक्टरी परामर्श के नहीं लेना चाहिए। अगर ये दवाइयां फेल होती हैं तो इसके बाद दूरबीन की सहायता से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं और प्रोस्टेट के ग्रंथि को हम लोग वहां से की रास्ता से हटा सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में भी अभी लैप्रोस्कोपिक प्रोस्टेट ग्रंथि को निकालना और रोबोट के द्वारा भी ऐसी तकनीक आ गई है कि प्रोस्टेट की ग्रंथि को बहुत ही कम चीरे से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर सही समय पर इसकी पहचान हो पाई, सही स्टेज में ये हम लोग को बीमारी पकड़ में आ गई तभी यह संभव है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाने के बाद इसका कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर हार्मोनल थेरेपी में हम लोग को जाना पड़ेगा, परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन इनिशियल स्टेज में इसका रिजल्ट काफी अच्छा।
1: डॉक्टर शशि प्रकाश, आप हमारे स्टूडियो आए और प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियों से बचाव और इलाज के तरीकों के बारे में इतने अच्छे तरीके से आपने जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
2: अभी आपने स्वास्थ्य सूचनाएं सुनी। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हालचाल। 7:15 पर सूफी संगीत हम आपको सुनवाएंगे और 7:25 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित सीआर व्यास का राग भैरव बहार में ख्याल गायन। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन होगा हमेशा की तरह 9:10 पर। फिल्में गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी सुनिएगा सुबह 10:00। 10:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अजीत कुमार लाभ के स्वर में भजन और गीत। फिल्म संगीत अब सुनेंगे 11:00 से। बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम होगा दिन में 12:00।

0: महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत आप सुनेंगे 12:30 पर। किस लिए? ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 4:30 पर। शाम 5:30 पर मगही कार्यक्रम मागधी का प्रसारण किया जाएगा। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 6:30 पर और हमारे किसान भाई खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7 बजे। शाम 7:52 पर होगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। रात्रि 9:30 पर होगा राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती। रात्रि 10 बजे होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसमें आज आप सुनेंगे राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय 6:55 होने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोहः आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः, भाजपाध्यक्षः नितिन नवीनः, केन्द्रीय मंत्रिणः, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारी वर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलम् ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्रिपदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिमसर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्रीरंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षानुसंधान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया सम्पादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कॉन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति। अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये

0: ये सर्वविध सहायम प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मोज जलसंध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिका समर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरान देशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्ति इति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रिकेट क्रीडांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम् अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलम् गुजरात टाइटन्स दलम् सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनी

भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित

0: के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले जानेंगे इतिहास में आज का दिन के बारे में। आज है विक्ट्री डे। रूस और कई अन्य सोवियत देशों में सन 1945 में नाजी जर्मनी पर जीत की याद में मनाया जाता है। और 9 मई को हर साल नेशनल अल्फाबेट मैग्नेट डे मनाया जाता है। यह दिन बच्चों और वयस्कों के बीच लोकप्रिय फ्रिज पर लगने वाले रंग बिरंगे चुंबकीय अक्षरों अल्फाबेट मैग्नेट्स का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य रचनात्मकता को बढ़ावा देना, शब्द निर्माण का अभ्यास करना और संचार के लिए इन क्लासिक चुंबकीय अक्षरों के उपयोग को याद करना है। द टाइपसेट कंपनी द्वारा सन 2022 में इस दिवस की स्थापना की गई थी ताकि सन 1970 के दशक से लोकप्रिय रहे इन शैक्षिक खिलौनों का सम्मान किया जा सके। चुंबकीय अक्षर 1970 के दशक में फिशर प्राइस स्कूल डेज डिस्क के साथ लोकप्रिय हुए थे। लोग इस दिन अपने फ्रिज या मैग्नेट बोर्ड पर संदेश लिखते हैं, शब्द का खेल खेलते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी रचनात्मकता साझा करते हैं। यह दिवस भाषा सीखने और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक मज़ेदार और सरल उपकरण के रूप में वर्णमाला के महत्व को रेखांकित करता है।

श्रोताओं, आज की शख्सियत की बात करें तो मेवाड़ के वीर राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप का जन्मदिन है, जो विशेष रूप से राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। अंततः अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करने में असफल रहा। महाराणा प्रताप की नीतियां शिवाजी महाराज से लेकर ब्रिटिश के खिलाफ बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी।

श्रोताओं, मौसम की बात करें तो आंधी, बारिश और तूफान के दौरान खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपना सकते हैं। तूफान के दौरान घर के अंदर ही रहें, विशेषकर खिड़कियों, दरवाजों और बाहरी दीवारों से दूर रहें। घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद कर लें। घर के बिजली के उपकरणों को अनप्लग कर दें, क्योंकि बिजली गिरने पर इनसे करंट लग सकता है। तूफान के दौरान शावर न लें, बर्तन न धोएं और पाइप से जुड़े किसी भी स्रोत से दूर रहें, क्योंकि धातु के पाइप बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। बिजली जाने पर मोमबत्ती के बजाय टॉर्च का उपयोग करें, ताकि आग का खतरा न रहे। इस तरह से

अभी आप कार्यक्रम हालचाल सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सूफी संगीत।

अभी आप सूफी संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए पंडित सी आर व्यास का राग भैरव बहार में ख्याल गायन। विलंबित की रचना झूमरा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं मंदे माहो। द्रुत की रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं दलारियाँ। तबले पर इनकी संगति की है ओमकार गुलवाड़ी ने।

0: अभी आप पंडित सी आर व्यास का राग भैरव बहार में ख्याल गायन सुन रहे थे। विलंबित की रचना झूमरा ताल में निबद्ध थी, जिसके बोल थे मंदे माहो, जबकि द्रुत की रचना तीन ताल में निबद्ध थी, जिसके बोल थे डालरिया। तबले पर इनकी संगति की थी ओमकार गुलवाड़ी ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनने से पहले सुनिए ये संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
8: और इस गीत के बाद
9: छाया गीत।

0: Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: नमस्कार, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से होगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
3: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
4: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
4: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
2: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्ट

0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।

0: 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 118 हो जाएगी। तब तक किसी फैसले का इंतजार रहेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सब्रमणि को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकामात तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देंगे। वो जनरल अनिल चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि एक इंतहाई मुअज्जज़ अफसर हैं जिनकी 4 दहाइयों से ज्यादा की शानदार खिदमात हैं। वो सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मगरबी और शिमाली महाजों पर अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की कमांड भी की है। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमात हैं। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल स्ट्रेटजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफी तजुर्बा है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का कल बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। ये तकरीबात मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही हैं। इन तकरीबात में मुल्क भर के अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: सोमनाथ के मंदिर में सोमनाथ अमृत पर्व पठात्मक अति रुद्र के साथ शुरू हो गया है। आज 3 रोज यज्ञ का भी आगाज होगा जिसके दौरान सामग्री के तौर पर तकरीबन 125,000 अशिया मुकद्दस आग की नज़र की जाएंगी और मौजूदा बैन अल-अक़वामी तनाज़ात के दौरान आलमी अमन और इंसानियत की भाई के भलाई के लिए दुआ की जाएगी। ये तकरीबात 11 मई को इख्तिताम पजीर हो जाएंगी जब मंदिर में अजीम शान तरीके से कुंभाभिषेक का इनेकाद किया जाएगा जिसमें 11 मंदिरों का पानी नजर किया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की तरफ से अमेरिका की हिमायत वाली करारदाद के एक मुसवदे को मुस्तरद किए जाने के बाद आबनाए हुरमुस पर तातुल में शिद्दत आ गई है। ईरान ने कहा है कि इस करारदाद में खामियां हैं और इसके पीछे सियासी मकसद कारफरमा है। ईरान ने कहा है कि इस तजवीज से गैर कानूनी इकदामात को कानूनी जवाब हासिल होगा बजाय इसके कि इससे तनाजे को हल करने में मदद मिले। ईरान ने अक़वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से अपील की है कि वो इस मुजवजा करारदाद की हिमायत न करें। तफसील हमारे नमानिगार से।
2: इस करारदाद को अमेरिका के साथ साथ बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर की हिमायत हासिल है और इसमें तवानाई की दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने ईरान पर कमर्शियल जहाजरानी के लिए ख़तरा पैदा करने और बहरी ट्रैफिक को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसी दौरान ईरान की फ़ौज ने कहा है कि अमरीकी फ़ौजों ने मुत्तहिदा अरब इमारात में फुजैरा बंदरगाह के नज़दीक ईरान के एक तेल टैंकर और एक और जहाज़ को निशाना बनाया था, जबकि इत्तला के मुताबिक अमरीका के फदाई हमलों में बंदर खमीर, सिरिक और किस्म जजीरे में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। इधर ईरान का फदाई निजाम भी अपने दिफा के लिए सरगर्म है। समंदर में बढ़ती हुई इस महाजराई में इंसानी जानें भी तलफ हुई हैं, लिहाजा दुबई में भारत के मिशन ने एक जहाज में सवार भारतीय हमले के एक अहलकार की हलाकत पर दुख का इजहार किया है और इसे एक अफसोसनाक वाकया करार दिया है। इस सबसे अलग ईरान ने खलीज ओमान में एक टैंकर पकड़ लिया है जबकि अमरीका ने कहा है कि उसने उसी रोज 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया है। कल के इन वाकयात के बावजूद सिफारती ज़राए ने काम करना बंद नहीं किया है। 14 निकाती अमरीका ईरान मुजवजा फ्रेमवर्क अपनी जगह मौजूद है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: अमरीका ने 10 अफराद और कंपनियों के खिलाफ बंदिशों का ऐलान किया है जिनमें चीन और हांगकॉन्ग के अफराद और कंपनियां भी शामिल हैं। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने हथियार और शाही ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने में दरकार खाम मवाद हासिल करने की ईरान की कोशिशों में मदद दी है। तफसील हमारे नामेनिगार से।
0: अमेरिका की तरफ से ये बंदिशें सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर शी जिनपिंग के साथ एक मीटिंग के लिए चीन जाने के मंसूबे से कुछ दिन पहले आयद की गई हैं, क्योंकि ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों में तातुल पैदा हो गया है। एक बयान में

0: विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, साथ ही बेहतरीन प्लेसमेंट सपोर्ट, ताकि आपके करियर को मिले मजबूत शुरुआत।
1: एडमिशन आधारित है JEE मेन 2026 या BCECE मेरिट पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें bceceboard.bihar.gov.in। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवनियुक्त मंत्रियों से कहा, अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और तय लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। कल आंधी और वज्रपात से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में प्रदेश में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी नव नियुक्त मंत्रियों से अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और संबंधित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने को कहा है। पटना स्थित सचिवालय में मंत्रियों के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक में श्री चौधरी ने यह निर्देश दिए। बैठक में विकसित भारत के संकल्प के साथ समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने के बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित अन्य विभागों के मंत्री उपस्थित थे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू आज पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन करेंगे। यहां बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रम वाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जाएंगे। इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होगी। यातायात

0: के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने पटना में प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य के सभी जिलों में आयोजित लोक अदालत में ट्रैफिक चालान संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
1: इसमें वैसे ई चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं की गई है और जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं किया गया है, ऐसे सभी मामलों में दिनांक जो 31/3/2026 तक लंबित है उनके निपटान के लिए लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भुगतान की प्रक्रिया है वह भी सरल की गई है, इसमें भुगतान नगद या यूपीआई ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है। सभी जिलों में जो डीएसपी ट्रैफिक है उनको यह निर्देशित किया गया है कि आप लोक अदालत में अपने जिले अंतर्गत जो हो रहे हैं वहां पर आप उपस्थित रहें अनिवार्य रूप से।
0: ट्रैफिक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए पटना सहित विभिन्न जिलों में विशेष व्यवस्था की गई है। पटना में इन मामलों की सुनवाई ज्ञान भवन में की जाएगी। यहां मामलों के निष्पादन के लिए 25 बेंच का गठन किया गया है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना की स्थिति में प्रारंभिक जांच के बाद 24 घंटे के भीतर वाहन मालिकों को उनका वाहन सौंप दिया जाएगा। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने बताया कि राज्य के किसी भी थाने में दुर्घटनाग्रस्त वाहन 24 घंटे के दौरान नहीं मिलने की स्थिति में मोबाइल नंबर 9031-829-356 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे 2,174 शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया है। विभाग के अनुसार 18 मई को इन शिक्षकों की काउंसिलिंग होगी। अगर किसी कारण से निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग नहीं हो पाती है तो अगले दिन काउंसिलिंग की जाएगी। गौरतलब है कि विभाग के अनुसार बीपीएससी द्वारा परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए इस वर्ष फरवरी महीने में 6 से 11 तारीख तक तिथि निर्धारित की गई थी। विभिन्न कारण से इन शिक्षकों की काउंसिलिंग नहीं हो सकी थी। पटना स्थित आईजीआईएमएस नर्सिंग कॉलेज में पिछले 48 घंटे से जारी नर्सिंग छात्राओं का आंदोलन समाप्त हो गया है। कॉलेज के उपनिदेशक सह प्रवक्ता डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन पर छात्राओं ने आंदोलन समाप्त कर दिया। वहीं इस घटना के बाद कॉलेज की उप प्रधानाचार्य रूपाश्री दास गुप्ता को अकादमिक कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी से हटा लिया गया है। श्री सिन्हा ने बताया कि छात्राओं के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए मौजूदा पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी व्यक्तियों के लिए पेरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कोलकाता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले कल शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद श्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और राज्य में पहली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल के टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन खाने से 20 स्कूली बच्चों के बीमार होने की खबर पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो इस संबंध में शिक्षा विभाग को पीएम पोषण योजना

0: के समुचित अनुश्रवण और निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बीमार स्कूली बच्चों का समुचित इलाज कराने का भी निर्देश दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश की संभावना है। विभाग ने कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है।
4: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना, सारण, शेखपुरा एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, सारण, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। इसके चलते आवागमन और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। राजधानी पटना में भी कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात घंटों ठप हो गया। पटना जू में भी कई पेड़ गिर गए। प्रशासन ने गिरे पेड़ों को हटाने के लिए आज पटना जू को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इधर पटना जिला प्रशासन ने पेड़ गिरने या बिजली के तार टूटने की तत्काल सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9470001389 जारी किया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी, पानी और वज्रपात की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। पटना और वैशाली में 2-2 तथा आरा, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गृह विभाग ने छापेमारी में असहयोग के आरोप में कटिहार सदर 2 के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। वे वर्तमान में जहानाबाद के पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात हैं। इधर पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने गौनाहा थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नवादा जिले की साइबर पुलिस ने नगर

0: थाना क्षेत्र के कोनिया मोहल्ले से एक साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ठग के खाते से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई है। अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्सा कांटा मुख्य मार्ग पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 1028 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पटना के कृषि अनुसंधान परिसर में सतत कृषि हेतु संतुलित एवं पर्यावरण अनुकूल पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मृदा परीक्षण आधारित खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जैविक खाद अपनाने की जानकारी दी गई। भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड मैदान स्थित कार्यालय में रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम आज से स्वीडन में आयोजित पैरा स्विम ओपन फाल्कनबर्ग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शामिल हो रहे हैं। मधुबनी जिले के विस्पी प्रखंड के रथौस गांव निवासी शम्स 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले और 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ी जापान में होने वाले आगामी एशियाई पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 11 मई से आयोजित की जाने वाली अंडर 20 राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी के लिए बिहार पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन पर ताजपोशी शीर्षक से लिखा है, शुभेंदु संभालेंगे बंगाल की सत्ता। दैनिक जागरण लिखता है, मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड पर आतंकी कैमरा, जांच में जुटी एटीएस और एसटीएफ। प्रभात खबर का शीर्षक है, ठगी साइट तक पहुंचाने को सरकारी पोर्टलों का सहारा। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म, पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवनियुक्त मंत्रियों से कहा, अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और तय लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। कल आंधी और वज्रपात से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में प्रदेश में 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाए।

0: digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

शेर नगमे के तहत आप गज़ल से महफूज महजूज हो रहे थे। आवाज़ थी सुरेश वाडकर की। सामीन, हम जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, आज उनकी योम विलादत है। रविन्द्रनाथ टैगोर जदीद हिंदुस्तानी अदब के एक अजीम फ़नकार थे। ठाकुर ज़मींदार ख़ानदान में उनकी विलादत हुई। उनका घर बंगाल की रोशन ख्याली और सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ था। उनके वालिद देवेंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मो समाज के नहायत ही मुमताज़ रहनुमा थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को बचपन ही से शायरी, मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा का बेहद शौक़ था। उनके घर का अदबी माहौल भी ऐसा था जिसमें उन्हें उसको को परवान चढ़ाने का मौका मिला। उनकी विलादत के वक्त बंगाल में नई तालीमी अदबी तहरीक ज़ोरों पर थी। उन्होंने रिवायत और जदीदियत के दरमियान नहायत ही खूबसूरती के साथ तवाज़ुन पैदा किया। वो शायर, अदीब, मुसव्विर

और मूसीकार थे। भारत का कौमी तराना जन गण मन उन्हीं का तहरीर करता है। उन्होंने पूरी दुनिया को मशरक़ी हिकमत, इंसानी अकदार और इंसान दोस्ती से हम आहंग किया और उनकी याद में आज भी जो किताबें हैं, उनकी जो तहरीरें हैं, उनकी जो शायरी है, उनकी जो

आज भी जो किताबें हैं, उनकी जो तहरीरें हैं, उनकी जो शायरी है, उनकी जो मौसीकी है, वो सब उन्हें हमेशा ताज़ा दम रखती है। उन्होंने शांति निकेतन की बुनियाद रखी, जो अपनी नौईयत की एक अहम यूनिवर्सिटी है। इस तरह रविन्द्रनाथ टैगोर शायर, नोबेल निगार, फलसफी, आर्टिस्ट और नोबेल इनाम याफ्ता अजीम इंसान थे। आज उनका यौमे विलादत है। इस मौके पर हम उन्हें याद करके हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। सामिन, अब चलते हैं अगली पेशकश की जानी, और अब पेश खिदमत है एक ड्रामा। मौजू है चांद का दाग, तहरीर है नवेद हाशमी की और पेशकश है जमालुद्दीन साहिल की।

0: कौन है?
1: ये दरवाजा खोलो, जरूरी काम है।
0: ठहरो, खोलती हूँ।
2: क्या बात है बेटा?
1: ये मकान खुर्शीदा बेगम का है ना?
2: हाँ हाँ, मैं ही खुर्शीदा बेगम हूँ। लेकिन लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ।
1: ये सुना है आपके यहाँ कोई कमरा खाली है, इसे आप किराए पे लगाना चाहती हैं। मैं इसी कमरे के लिए आया हूँ।
2: हाँ, कमरा तो खाली है, लेकिन तुम हो कौन और तुम्हें मेरे बारे में बताया किसने?
1: ये मेरा नाम जावेद अख्तर है। मैं PWD में सर्विस करता हूँ और मेरा मकान रांची है। मैं रांची से ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। दरअसल मेरे दफ्तर के एक स्टाफ अहमद ने मुझे आपका नाम और इस मकान का पता बताया।
2: लेकिन मैं तो किसी अहमद को नहीं जानती।
1: लेकिन वो तो आपको अच्छी तरह जानता है।
2: देखो बेटा, आज कल जमाना बहुत खराब हो गया है। आँख बंद करके किसी भी भरोसा कर लेना हिमाकत है। और फिर मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे पास एक जवान लड़की है। मैं किसी अनजान आदमी को मकान कैसे दे सकती हूँ?
1: क्या आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी जात से आपको कोई नुकसान नहीं
2: पहुँचेगा। हर जरूरतमंद जरूरत पड़ने पर यही कहता है। अच्छा ये बताओ कि तनहा रहोगे या फैमिली के साथ?
1: जी तनहा रहूँगा, अभी मेरी शादी नहीं हुई।
2: तब तो और मुश्किल है।
1: ऐसा ना कहिए, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ।
2: मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ बेटा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानकारी हासिल न कर लूँ, ये कमरा किराए पर नहीं दे सकती।
1: वैसे तो मेरे जानने वाले बाहर के लोग इस शहर में मौजूद हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप सभी को जानती हूँ।
2: वो तो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि रांची में तुम्हारा मकान कहाँ है?
1: जी डोरंडा में।
2: डोरंडा? उसी मोहल्ले में तो मेरी छोटी बहन रशीदा भी रहती है।
1: रशीदा का आपकी छोटी बहन है?
2: क्या तुम उसे जानते हो?
1: अच्छी तरह। उनके शोहर का नाम अली हैदर है और उनके बड़े लड़के का नाम फिरोज और छोटे का आतिश। उनका मकान तो मेरे मकान के बगल में है। हम लोगों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अपनों जैसे।
2: रशीदा के बगल में तो आमना बहन का मकान है।
1: वो मेरी माँ है।
2: क्या तुम आमना बहन के बेटे हो?
1: जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अब तो मकान के लिए किसी जमानतदार की जरूरत नहीं है।
2: नहीं बेटा, नहीं नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ से मैं कई बार मिल चुकी हूँ, वो बहुत नेक और मिलनसार औरत है। बानो, ए बेटी बानो।
3: क्या है अम्मी?
2: बगल वाले कमरे का दरवाजा जरा खोल दे बेटी।
3: ठीक है।

0: Al beta, al. कमरा देख ले।
1: कमरा तो ठीक है, कुशादा कुशादा भी और हवादार भी। तो इसका किराया कितना होगा?
0: 150 रुपए।
1: ये लीजिए 150 रुपए। कल सवेरे में अपना सामान लेकर आ जाऊंगा। आप जरा कमरे की सफाई करवा दीजिएगा।
0: तुम इसकी फिक्र ना करो, सफाई हो जाएगी। अलबत्ता ये बता दो कि इस चौकी को इसी कमरे में रहने दूं या इसे निकाल दूं?
1: अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो फिर रहने दीजिए, मेरे काम आ जाएगी।
0: फिलहाल मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं।
1: तो फिर रहने दीजिए, फिर तो फिर मेरे लिए छोड़ दीजिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ।
0: अरे बेटा, बगैर चाय पी कैसे चले जाओगे? बानू बेटी, जरा चाय तो बनाना।
1: हाँ मुखात तकल्लुफ कर रही है।
0: इसमें तकल्लुफ की क्या बात है बेटा, तुम्हारे बहाने मैं भी पी लूंगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब भी आमना बहन से मिलने उनके घर गई, बगैर कुछ खिलाए पिलाए मुझे आने ही नहीं दिया। बहुत अखलाकमंद औरत है तुम्हारी माँ।
1: जी इंसान को खुश अखलाक तो होना ही चाहिए।
2: चाय तैयार हो गई अम्मी, आगे ले जाइए।
3: अभी आए बेटी। ये लो बेटा चाय।
1: लगता है कि बानो पर्दा का बहुत ख्याल रखती, वरना चाय लाकर वो खुद भी दे सकती थी।
3: हाँ बेटा, वो आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बहुत ही संजीदा और तन्हाई पसंद, न कहीं आना न कहीं जाना, बस दिन भर कमरे में बंद किताबें पढ़ते रहना ही उसका मशगला है।
1: ये तो बहुत अच्छी आदत है, वो अपना वक्त फजूल नहीं बर्बाद करती। अच्छा चाय मैंने पी ली, अब इजाजत दीजिए।
3: ठीक है बेटा, जाओ।

0: भैया जरा रिक्शा वाले, ये रिक्शा टाय गली में मोड़ लो। हाँ बस अब जरा यहीं रोक दो, ठीक है इसी जगह। अब जरा ये सामान उतार कर उस चबूतरे पे रख दो। ये लो पैसे।
1: कौन है?
0: जी मैं हूँ अख्तर, आपका नया किराएदार।
1: अच्छा आप हैं, जरा ठहरिए मैं आपके कमरे का दरवाजा खोल लेती हूँ। आपके कमरे का दरवाजा खोल दिया है?
0: जी ठीक है। हफ्तों की परेशानियों के बाद आज सुकून मिलता आया। वाकई बड़े शहरों में मकान तलाश करना जुए शीर लाने से कम नहीं।
1: अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा।
0: जी फिलहाल तो ऐसी कोई जरूरत नहीं, फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

कोई किताब नहीं। ये पहाड़ जैसा दिन कैसे गुजरेगा? अरे हाँ, याद आया, अख्तर के कमरे में तो किताबों का अंबार है, क्यों ना वहीं से कोई किताब ले आऊं। हाँ, यही बेहतर होगा, पढ़कर लौटा दूंगी। ये किताब सादत हसन मंटो की तो पढ़ चुकी हूँ, ये कृष्णचंद्र की ये भी पढ़ चुकी हूँ, ये रजिया भट्ट और ये अली मसरूर और ये जावेद अख्तर। किताब का नाम एक लम्हे की जिंदगी, ये किताब मैंने अब तक नहीं पढ़ी। अरे ये तस्वीर तो अख्तर की है।

गोया ये हजरत भी अफसाना निगारें, ये भी बातें बहुत सलीके से करती। आज इस किताब को पढ़ूंगी, जरा मैं भी तो देखूं इनकी कहानियों में क्या है।

0: अरे ये किताब रेक से उतरकर बिस्तर पर कैसे चली आई?
1: ये किताब खुद से नहीं उतरी थी, इसे मैंने उतारी थी।
0: आप बरामदे में मौजूद हैं क्या?
1: आपकी किताब मैं पढ़ने के लिए लाई थी, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप एक अफसाना नगार भी हैं।
0: जी शुक्रिया। मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगी?
1: बात कहानियाँ बहुत अच्छी हैं और बात नहायत कमजोर, जिसका दिलो दिमाग पर कोई रद्द अमल नहीं।
0: जैसे?
1: जैसे अंधेरा ही अंधेरा, तन्हाई का कर, ये सच्ची और मनगढ़ंत कहानियां जिनका हकीकी जिंदगी से कोई लगाव नहीं, लेकिन एक लम्हे की जिंदगी और एहसास, ये दोनों कहानियां जिंदगी के बहुत करीब हैं और काफी म्यारी भी। ये हकीकत है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्हें एक लम्हे की जिंदगी में असर है और एहसास, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एहसास जिंदगी का एक ऐसा सरमाया है जो इंसान को कभी खुशफहमी की दीवार पर खड़ा कर देता है और कभी मायूसी के सलीब पर लटका देता है। आपकी कहानी एहसास का ये कोटेशन मुझे बेहद पसंद आया।
0: वाकई आप बहुत जहीन हैं और कहानियों पर आपकी गिरफ्त सख्त है। जी चाहता है कि आपसे कहानियों पर खूब खूब बातें करूं, लेकिन ये सोचकर उदास हो जाता हूं कि हमारे दरमियान दीवार का एक पर्दा है। और बातें करने का मजा तो तभी आता है जब दो बातें करने वाले आमने सामने मौजूद हो। हर सच पूछे तो अब आपको देखने के लिए तबीयत भी मचलने लगी है।
1: ये तो आपका भड़कपन है, मुझ जैसे हकीर को इस काबिल समझ रहे हैं, वरना मैं इस लायक नहीं कि आपके रूबरू की बातें कर सकूं।
0: फिर वही इंकसारी?
1: ये इंकसारी नहीं, हकीकत है।
0: आप जा रही हैं क्या?
1: जी हाँ, कमरे में जा रही हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया।

आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बानो को अपने करीब बैठाकर खूब खूब बातें करूं? मोहब्बत भरी बातें। बानो, बानो इस वक्त गहरी नींद में सो रही होंगी और मैं उनके यादों के चिराग जलाए बैठा। आखिर मैं इसके लिए इस कदर बेचैन क्यों हो रहा हूं? क्यों मुझे सोते जागते इसी का ख्याल आ रहा है? क्यों? अरे, ये आवाज तो बानो की है। क्या बानो भी अब तक जाग रही है? क्या वो भी मेरी तरह बेचैन है और गजल गाकर खुद को बहलाने की कोशिश कर रही है, या फिर अपनी आवाज के जरिए अपनी मोहब्बत का पैगाम भेज रही है? बानो, मैं तो बहुत पहले ही तुम्हारे जुल्फों का असीर हो चुका हूँ। तुम काश तुम भी मेरे जज्बात की जुबान समझ लेती। बानो, खूब गाओ बानो। तुम्हारी कुर्बत अगर मुझे नसीब है तो कम से कम तुम्हारी आवाज तो मेरे करीब रहे।

0: अख्तर, गाने की आवाज कहाँ से आ रही है?
1: ये बानो की आवाज है।
0: ये बानो कौन है?
2: इस घर की मालकिन।
0: अच्छा कहते, इसकी आवाज में बला का सूर है। ऐसा लगता है कि वो गाने के फन से अच्छी तरह वाकिफ है।
1: सिर्फ गाने के फन से ही नहीं, वो अदब लतीफ के भी बहुत सारे फनून से वाकिफ है।
0: अच्छा, ये बात है?
1: हाँ, तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी कि मुंशी प्रेमचंद से लेकर अहदे हाजिर तक की कहानियों पर इसकी गहरी नजर है। और सिर्फ कहानियों पर ही नहीं, शायरी, सियासत और मौसीकी तक पर वो मुझसे बातें करती हैं।
0: अच्छा, ये तो वाकई कमाल की बात है।
1: ये तो इसकी ज़हानत और मालूमात की बात रही हो। बहैसियत इंसान भी वो बहुत अच्छे, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। रोजाना कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें अपनी माँ के जरिए भिजवाती रहती है। और इसकी माँ भी बड़ी मुखलिस और मिलनसार औरत है।
0: लगता है मियाँ कि वो तुम पर आशिक हो गई है।
1: इसका अंदाजा तो मुझे अब तक नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मैं इस पर आशिक जरूर हो गया हूँ।
0: तुम और इश्क, तुमने तो कहा था कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा,
1: लेकिन अब इरादा बदल दिया है। बानो जैसी लड़की लाखों के बाद एक पैदा होती है।
0: बहुत ही खूबसूरत है क्या?
1: मैंने उसे अब तक देखा नहीं, लेकिन हाँ, वो यकीनन खूबसूरत होगी।
0: कमाल की बात है, उसे देखा भी नहीं और

0: आशिक भी हो गए?
1: मोहब्बत इसी को तो कहते हैं।
0: तो फिर तुम उससे बातें कैसे करते हो?
1: मैं कमरे के अंदर रहता हूँ और वो बरामदे में।
0: और उसकी माँ?
1: अगर वो मौजूद भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी गुफ्तगू काफी मुहज्जब हुआ करती है।
0: लेकिन वो तुम्हारे सामने क्यों नहीं आती?
1: यार वो बहुत शर्मीली और उसकी निगाहों में पर्दे की खास अहमियत है, और अगर वो किसी जरूरत के तहत अपनी माँ के साथ बाहर भी जाती है तो चेहरे पे नकाब रखकर।
0: गोया ये लड़की तुम्हें बेहद पसंद है?
1: हाँ यू बेहद पसंद है।
0: क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है?
1: पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा है वो भी मुझे चाहती है। सोच रहा हूँ कि किसी दिन इस सिलसिले में उनसे बातें करूँ।
0: हाँ हाँ जरूर करो। और अब मुझे इजाजत दो, बहुत देर हो गई, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।
1: अच्छा खुदा हाफिज।
2: आपकी चाय बरामदे में तिपाई पर रख दिया है, उठा लीजिए।
1: मेरी चाय?
2: जी हाँ आपकी, चूँकि अम्मा घर में मौजूद नहीं है इसलिए तिपाई पर रख कर आपको खबर कर
1: दी। जी शुक्रिया। आप जरा बरामदे में आने की जहमत गवारा करेंगी?
2: कोई खास बात है क्या?
1: जी हाँ बहुत ही खास बात।
2: आती हूँ, लेकिन पहले आप चाय तो उठाइए।
1: मैं चाय पी रहा हूँ, आप आ सकती हैं।
2: लीजिए मैं आ गई, कहिए क्या बात है।
1: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपको मुझसे इतनी अपनाइयत क्यों है?
2: ये भी कोई पूछने की बात है?
1: ये सवाल बहुत अहम है, जवाब दीजिए।
2: इसलिए कि आप परदेसी हैं और यहाँ हमारे अलावा आपका कोई नहीं।
1: गोया आप परदेसी समझकर मुझ पर तरस खाती हैं।
2: खुदा के वास्ते ऐसा न कहिए।
1: तो फिर बताइए कि इस अपनाइयत की क्या वजह है?
2: आप एक फनकार होकर गैर जरूरी सवाल क्यों कर रहे हैं?
1: ये गैर जरूरी सवाल नहीं है बानो, इस सवाल का मेरी जिंदगी से बड़ा गहरा लगाव है। और एक बात पूछूं बानो?
2: क्या?
1: मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: मोहब्बत एक पाक जज्बा है, ये वो जज्बा है जो इंसान को एक दूसरे से करीब कर देता है। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत इंसानियत है, और मोहब्बत।
1: आपने कभी किसी से मोहब्बत की है?
2: मैं खुद को इस लायक नहीं समझती।
1: फिर वही इनके सारे?
2: मैं सच कह रही हूँ अख्तर साहब।
1: सच क्या है झूठ क्या है मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं जब से इस मकान में आया हूँ आपने मेरी रातों की नींद चुरा ली है, मेरा सब्र और सुकून छीन लिया है। बानो बानो मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके बगैर एक पल भी जी नहीं सकूंगा। खुदा के वास्ते मेरी मोहब्बत कबूल कीजिए और मुझे अपनी घनेरी जुल्फों की छांव में बना दीजिए, वरना
2: आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। आप यही कहना चाहते हैं? अख्तर साहब जिंदगी बड़ी लजीज शय है और लज्जत इंसान की कमजोरी, और शायद यही वजह है कि जिंदगी चाहे जैसे भी हो इंसान इसे झेलता रहता है। आप इस कदर जज्बात न बनिए।
1: मैं जज्बात की राह में नहीं बह रहा हूँ बानो, मैंने तो अपने दिल की बात की है, दिल की। मैं आपको अपनी मोहब्बत का वास्ता दे रहा हूँ, आप मेरे करीब आ जाइए, मेरे करीब।
2: आपने क्या किया अख्तर साहब, क्या किया? आपको अपनी मोहब्बत का वास्ता नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए।
1: बानो भाग गई, इसने मेरे सवाल का तशफी वक्त जवाब नहीं दिया। मेरी बातें उसे पसंद नहीं आई, क्या वो मेरी मोहब्बत, क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, या शर्म हयान उसे भाग जाने पर मजबूर कर दिया।
2: बानो आपकी खिदमत में हाजिर है,

0: मास्टर साहब आप खामोश क्यों हो गए? लगता है मुझे देखते ही आपके होश हवास उड़ गए, आपकी जबान गुंग हो गई। मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा, इसलिए आपके बार बार इसरार पर भी मैं इनकार करती रही। लेकिन आपने अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर मुझको मजबूर कर दिया और मुझे आपके ख्वाहिश का एहतराम करना पड़ा। अब मैं जा रही हूँ अख्तर साहब, अब मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगी।
1: खुदाया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बानो को मैंने दिलो जान से चाहा,

0: इसकी घनेरी जुल्फों की छांव में अपनी जिंदगी गुजार देने का फैसला किया था, लेकिन मैं इसकी कुर्बत एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक लम्हे के लिए भी नहीं।
1: क्या बात है अख्तर, आज तुम बहुत उदास और परेशान नजर आ रहे हो।
0: मैं उदास परेशान नहीं, मैं परेशान कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
1: तुम हंसने की लाख एक्टिंग कर लो लेकिन अपनी उदासी छुपा नहीं सके, आखिर बात क्या है?
0: बात तो कुछ नहीं है, कुछ बात नहीं है अयुब, तुम खामखा परेशान हो रहे हो।
1: परेशान मैं नहीं हो रहा हूँ, परेशान तुम लग रहे हो। लगता है कि बानो ने तुम्हारी मोहब्बत कबूल नहीं की।
0: अरे वो तो हाँ, वो तो मुझे टूट कर जाती है। अगर मैं रात को दिन कहूँ तो दिन, और दिन को रात कहूँ तो रात।
1: तो क्या फिर वो खूबसूरत नहीं है?
0: खूबसूरत? हाँ खूबसूरत, खूबसूरत नहीं अशोक, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है वो।
1: यानी चांद से भी ज्यादा?
0: चांद में क्या हुस्न है, तुमने पहाड़ों का हुस्न देखा है, तुमने झरनों का हुस्न देखा है, तुमने समुन्द्र के साहिल का हुस्न देखा है, बालू का हुस्न भी कुछ ऐसा ही अयुब। हाँ कुछ ऐसा ही।
1: लगता है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, चपी उठ पटांग की बातें कर रहे हो।
0: अगर मेरी बातें तुम्हें पसंद नहीं तो मैं जाता हूँ, अभी मैं पागल नहीं हुआ हूँ अयुब, अभी मैं पागल नहीं हुआ।
1: अख्तर, अख्तर सुनो तो सही। अख्तर चला गया, लगता है कि उसका दिमागी तवादन कुछ ठीक नहीं। मुझे उसके घर जाना चाहिए, मुझे पता लगाना चाहिए आखिर बात क्या है।

0: मैं बालों को भूल जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए उसे भूल जाऊंगा।
1: तुम उसे नहीं भूल सकोगे, कभी नहीं भूल सकोगे।
0: नहीं, मैं उसे भूल जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए उसे भूल जाऊंगा, उसे कभी याद नहीं करूंगा, कभी नहीं।
1: ये कहकर तुम खुद को बहलाने की कोशिश कर रहे हो,
0: ये गलत है,
1: यही हकीकत है। आज 5 दिन हो गए तुम घर और दफ्तर से फरार हो, रात होटल के कमरे में गुजार रहे हो और दिन सड़कों पर आवारा गर्दी करके, लेकिन क्या एक लम्हे के लिए भी तुम उसकी यादों को अपने दिल से निकाल सके हो?
0: नहीं, नहीं। जिस कदर उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी यादें इतनी ही शिद्दत अख्तियार करती जा रही हैं।
1: तो फिर ये दावा क्यों कर रहे हो कि तुम उसे भूल जाओगे?
0: लेकिन मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ।
1: तुम अपने जमीर को धोखा दे रहे हो। जज्बात और एहसासात का लगाव दिल से होता है, दिल से। तुम्हें ये देखना चाहिए कि उसका दिल कितना खूबसूरत है और वो तुम्हें किस हद तक चाहती है।
0: हाँ, तुम ठीक कहते हो, इसकी चाहत बेपनाह है।
1: तो फिर उसे अपना लो, उसकी खूबियों को देखो अक्सर, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। तुम एक अजीब हो, मोहब्बत की परसूदा रिवाजों को तोड़ दो और एक मिसाल कायम करो।
0: शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं बालों के बगैर एक पल भी जी नहीं सकता।
1: मैं जानता हूं कि बालों तुम्हारी जिंदगी है।
0: हाँ, बालों मेरी जिंदगी है। मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूंगा। तुमने मुझे सही मशवरा दिया है।
1: मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा अपना सही।

0: बानो।
1: क्या बात है अख्तर साहब, आप अपना सामान लेने आए हैं? ले जाइए, शौक से ले जाइए। मैं तो समझ रही थी कि आप सामान ही

0: छोड़कर भाग गई।
1: नहीं बानो, नहीं, ऐसा ना कहो, मेरे दिल पर चोट लग रही है। खुदा के वास्ते ऐसा ना कहो, तुम तो मेरे ख्वाबों की मलिका हो। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाता?
0: अख्तर साहब, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जमाने वाले तो सभी दिन से मेरा मजाक उड़ाते आ रहे हैं और मैं अंदर ही अंदर टूटती रही। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं टूट कर बिखर जाऊँ?
1: नहीं बानो, नहीं। जिस दिन तुम टूट कर बिखर जाओगी, उस दिन मैं बिखर जाऊंगा।
0: ये डायलॉग बहुत खूबसूरत है अख्तर साहब, इसे नोट कर लीजिए, कहानी में काम आएगा।
1: ये डायलॉग नहीं, मेरे दिल की आवाज है बानो। मैंने तुमको दिलो जान से चाहा है, तुमसे प्यार किया।
0: प्यार? अख्तर साहब, आप मेरे अंदर की चिंगारियों को फिर हवा दे रहे हैं। जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से थपक कर सुलाया है, इसे ठंडा किया। खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। मैं एक चेचक ज़्यादा स्याह फाम लड़की हूँ। मैं किसी को खुश नहीं रख सकती अख्तर साहब, किसी को खुश नहीं रख सकती।
1: मानो ज़ाहिरी हुस्न कोई हुस्न नहीं होता, ये तो वक्त के साथ ढल जाता है। असल खूबसूरती तो दिल में होती है बानो, दिल में। दाग तो चांद में भी होता है, मगर इसकी चांदनी हमेशा बेदाग होती है बानो। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जी नहीं सकता, एक पल के लिए भी जी नहीं सकता बानो। हाँ, मेरे सीने से लग जाओ बानो, मेरी बाहों में समा जाओ बानो, मेरी बाहों में समा जाओ।
0: तुम अजीम, तुमने मेरी अमंगों की अपनी जिंदगी भर नई जिंदगी।
2: सामिन, आप सुन रहे थे ड्रामा, मौजू था चांद का दाग। तहरीर थी नवेदा हाशमी की और पेशकश थी जमालुद्दीन साहिल की। चांद के उन्वान से हम आपकी खिदमत में एक गज़ल पेश करेंगे, लेकिन पहले कुछ तذکرہ करते हैं। आज 9 मई है और 9 मई को, मई के दूसरे हफ्ते को, महाजिर परिंदों का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन परिंदों की हिफाजत, उनके हिजरत के रास्तों और माहौलियाती ख़तरात से वाकिफ कराया जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि परिंदों की आबादी में बड़ी तेज़ी से कमी हो रही है, उसके घोंसले को, मस्कन को, आशियाने को तबाही से बचाया जाए। दुनिया में 4000 परिंदों की किस्में हैं जो हिजरत करती हैं, हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करके मौसम के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। परिंदे फितरत का एक हसीन हिस्सा है, ये परिंदे माहौलियाती तवाज़ुन का ज़रिया है। फूलों की गुर्दाफशानी और मुख्तलिफ बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ज़मीन के कीड़े मकोड़े मार कर उसे खा जाती हैं और फिर उस ज़मीन को पैदावार के लिए बेहतर बनाती हैं। परिंदे फितरत और इंसान के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद है। परिंदे हमारे माहौल को बेहतर बनाने के साथ इंसानी सेहत और ज़रूरी पैदावार के लिए भी ये नहायत मुफीद है, और परिंदों की आवाज़ से, उनकी चहल पहल से हमारी फ़िज़ा नहायत ही खुशगवार रहती है। जब तक ये परिंदे आसमानों में परवाज़ करेंगे, हमारी दुनिया हसीन और ख़ूबसूरत रहेगी, और इसके लिए हमें मुनासिब माहौल तैयार करने की ज़रूरत है। सामिन, अब चलते हैं अगली पेशकश की जानिब, और बज़्म मौसीकी में पेश खिदमत है नहायत ही उम्दा सी गज़ल, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और कलाम है शकील बदायूनी का।

उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म केदार।

नाथ का ये गीत अमित त्रिवेदी की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य की रचना है, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

0: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: बागी टू, इस फिल्म का गीत तभी आप सुन रहे थे आतिफ त्रिवेदी की आवाज में।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तिशनागी, इस फिल्म का गीत सुनिए मंदाकिनी बोरा और अमित मिश्रा की आवाजों में।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: द डर्टी पिक्चर, इस फिल्म का गीत सुनिए बप्पी लाहिरी और इश्रिया घोषाल की आवाजों में। रजत अरोरा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है विशाल और शेखर ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म बॉडीगार्ड का ये गीत, राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए अजीत कुमार लाभ के स्वर में गीत और भजन। आइए इनसे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में अजीत कुमार लाभ के स्वर में गीत और भजन। इनसे अब आइए सुनते हैं भजन।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कौन मिलावे मोहे जोगिया हो। अजीत कुमार लाभ के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म अंदाज का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: खिलाड़ी, इस फिल्म का गीत सुनिए अभिजीत और अलका याज्ञिक की आवाजों में। अनवर सागर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

रचना नवाब आरजू की, संगीत नदीम श्रवण का, आवाज़ें दी हैं अनुराधा पौडवाल, और साथ ही ने फिल्म का नाम है साथी।

अगला गीत है फिल्म खुद्दार से, आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने, ज़मीर काज़मी की रचना है, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। अब आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं एक बार फिर से अलका याज्ञिक और कुमार सानू की आवाज़ों में।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम साजन। इस फिल्म का गीत सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। समीर की रचना है, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। एक अंतराल के बाद सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं सुरेश कुमार सिंह। इनके स्वर में सबसे पहले सुनते हैं लोक भजन।

0: अभी आपने सुरेश कुमार सिंह के गाए लोकगीतों का आनंद लिया। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में एक अंतराल लेंगे, उसके बाद सुनवाएंगे कुछ और लोकगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: माधुरी सहाय के गाय लोकगीतों का आनंद आपने लिया। इसी के साथ बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 12:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सखियों को रंजना का नमस्कार। और सखियों, अभी गर्मी का मौसम है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना तो ज़रूरी है ही, पशु पक्षियों का भी हमें ख्याल रखना है। सुबह चिड़ियों की मीठी आवाज़ हमें जगाती है, तो हम भी उनका ख्याल नियमित रखें। दाना पानी ज़रूर उन्हें दें, कभी दिया कभी छोड़ दिया ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो हैं गृहिणी। तो गृहिणी का काम है, एक बार जो नियम बन गया, एक बार जो अच्छे काम शुरू हो गए सबकी भलाई के लिए, उसको करते रहना, उसको बढ़ाना घटाना नहीं। इसीलिए पशु पक्षी हमारे भरोसे होते हैं, उनका ख्याल रखना जरूरी है। और घर के छत पर, बालकनी में ऐसे बड़े छिछले बर्तन में पानी रखे जिसमें चिड़िया, कौआ, कबूतर सब आराम से पानी पी सके। और गर्म हवा हमें अभी बर्दाश्त करने में दिक्कत होती है, और ये तभी बर्दाश्त हो पाता है गर्मी की गर्म हवाएं, जब हमारे शरीर में जल की मात्रा हो। और इसके लिए मौसमी फल, तरल पदार्थ हमें लेते रहना चाहिए। सादा पानी पीने में थोड़ा हर बार अच्छा नहीं लगता है, तो पानी का स्वाद बदल दें। सौंफ की शरबत, छाछ, शिकंजी इस तरह से लें। और पानी को भी यदि सादा पीना है तो थोड़ा इस तरीके से पी लें। साफ बर्तन में पानी रखें जिसमें आप पानी पीती हैं, जग में या शीशे के किसी बॉटल में या जिसमें भी रखती हैं, उसमें कुछ पत्ते पुदीने के डालें, कुछ खीरे ककड़ी के टुकड़े डाल दें, और इस तरह उस पानी को आप दिन भर पिए। इससे इस पानी का स्वाद भी बदलेगा और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। और बेल का शरबत अभी तो अमृत समान है। जितने दिन मौसमी फल मिलते हैं, चाहे वो थोड़ा महंगे ही मिले, उसका सेवन जरूर ही करें, और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बाहर निकले तो पानी साथ लेकर चले, खुद को ज़रूरत ना हो, अगर आपके आसपास कोई पानी के लिए आपसे पूछे तो आप ये नहीं कहें मेरे पास पानी तो है ही नहीं, तो ये ज़रूर काम करें। इसमें मेहनत कुछ नहीं, बस थोड़ी सी याद रखने की ज़रूरत है। और आज के समय में पानी जितना ज़रूरी है।

है उसको तो हम समझ ही सकते हैं। और बहनों, आधुनिक तकनीक भी उतनी ही हमारे जीवन में जरूरी है, और जिनके उपयोग से हम अपना काम जल्दी भी निपटा लेते हैं। अब मोबाइल को ही ले तो मोबाइल जैसे हमारे लिए अलादीन का चिराग होता है, हर जरूरत में हमारे साथ और हमारे काम आसान भी करता है, और मनोरंजन तो करता ही है। तो मोबाइल को भी दाना पानी देते रहिए, यानी हमेशा उसको चार्ज रखें और अपने जरूरी कामों में मोबाइल का प्रयोग भी करते रहें। बहनों, हर चीज़ के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी। अब मोबाइल है, इंटरनेट है, इन सब जो है, इन सब का प्रयोग हमारे लिए फायदेमंद है, तो कुछ बातें इनको प्रयोग करने में जरूरी और याद रखने की भी जरूरत होती है। अब जैसे इंटरनेट या फोन से कोई कॉल आए और आप उनको ना जानती हो, या आपके मोबाइल में उनका नंबर सेव नहीं है, तो या तो ऐसे फोन उठाए नहीं, फिर भी हो सकता है कोई अनजान नंबर से आपके जरूरत की बातों वाले फोन हो, तो फोन तो उठाएं, लेकिन कभी भी तुरंत अपनी निजी जानकारी उनसे साझा नहीं करें, और वही वेबसाइट प्रयोग में लाएं जो आपको सुरक्षित और लगते हैं ऐसे जो सही हैं। धोखा हो तो कुछ सावधानियां जरूरी हैं, जिसमें पहली बात है कभी भी अपना पर्सनल नंबर और जानकारी, पता, फ़ोन नंबर, पासवर्ड वगैरह खुद शेयर ना करें। दूसरी बात, ऐप्स और वेबसाइट को जो सुरक्षित हो वही प्रयोग करें। और तीसरी बात, अगर इंटरनेट या कॉल से डराने, धमकाने की या अजीब हरकत करने वाली बातें हो दूसरे तरफ से, तो इसकी शिकायत तुरंत करें, इस पर कार्रवाई होती है, और ये कार्रवाई होगी उसके खिलाफ जो इस तरह का करते हैं गलत काम। और आधुनिक तकनीक में यह भी पता चल जाता है इस तरह की कॉल, इस तरह के परेशान करने वाले लोग कहाँ से, किस नंबर से फ़ोन कर रहे हैं, तो हमको उसकी सुविधाएं, हमको उसकी सेवा जरूर मिलती है। तो इन सेवाओं का लाभ उठाएं। और बहनों, हमने कहा था अपने को रिचार्ज रखें, तो रिचार्ज तो हमारे मनोरंजन से होता है, और गीत संगीत मनोरंजन का एक अच्छा साधन है, माध्यम है।

आज हम याद कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी को, जिनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ था। वे महादेव गोविंद राणा डे के शिष्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता थी। उन्हें भारत का हीरा कहा जाता है और ग्लेड स्टोन भी कहा जाता है। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और आज भी युवा ही नहीं, बच्चे और बुजुर्ग भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों की जीवनी हमारे लिए सीखने के नए रास्ते बनाती है, और उनके जीवन से हम सीख भी ले सकते हैं। सखियों, अपने जीवन में हम बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, और माँ की ममता को सबसे ज़्यादा हम इसलिए सराहते हैं, पसंद करते हैं, और वो हमारे दिल के करीब होती है, क्योंकि हर उम्र में माँ की जो अहमियत होती है, चाहे माँ की हो चाहे बच्चे की हो, बढ़ता हुआ बच्चा अपनी माँ की नज़र में बच्चा ही होता है। और माँ चाहे कम उम्र की हो, यानी कि जो सही उम्र है माँ बनने की उस समय की हो, या फिर बहुत बुजुर्ग माँ हो, हमको एक सानिध्य, एक प्यार, एक ममता भरी छाँव में ही हमेशा ही रखती है। तो माँ का सम्मान करें, माँ से प्यार पाएं, माँ को भी प्यार दें। यही, और हमारे लिए सिर्फ हमारी जन्मदायिनी माँ नहीं है, ये धरती भी हमारी माँ है, नदी भी हमारे लिए, गंगा नदी और भी नदियाँ हमारी माँ हैं, और ये प्रकृति जो है ना, वो भी हमारी माँ है। तो इन सब को हम नमन करें, इनका सम्मान करें, और इनसे हम हमेशा लाभान्वित होते हैं। सखियों, आज के समय में प्लास्टिक जो है ना, वो हर घर में जरूरत है, समझिए, किसी ना किसी रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन

जितनी ज्यादा हम प्लास्टिक की उपयोगिता को समझते हैं, प्रयोग करते हैं, उतना ही ये हानिकारक जानलेवा है और ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं प्लास्टिक के प्रयोग से। यानी किसी रूप में यदि हमने डब्बा या खाने के लिए कुछ सामग्री रखी या फिर कुछ भी खाद्य पदार्थ को प्लास्टिक में या प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं, वो सभी बहुत हानिकारक होते हैं, दूषित हो जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे प्लास्टिक का प्रयोग कम किया जा रहा है और इस कदम में हम गृहिणी, हम महिलाएं पूरा सहयोग दें। जहां भी ऐसा दिखे, अगर आप किसी के यहाँ मेहमान बनकर भी जाएं और उनके यहाँ प्लास्टिक का बहुतायत प्रयोग हो रहा है, प्लास्टिक के डिब्बों का वगैरह, तो उनको जरूर चेताएं। ये अच्छी बात है, उनको भी समझ में आएगी। और बहनों, बातें हम करते ही रहते हैं और कुछ बातें ऐसी भी करें जो हम लोगों को आनंद तो दे ही, मनोरंजन भी हो। बीती हुई रात हुआ उजियारा, आंगन में उतरी धूप, कण कण में पत्ते पत्ते पर हंसती गाती बिखरी धूप, पर्वत की चोटी पर उछली झरनों के संग खेली धूप।

जिंदगी धूप छांव का खेल है। धूप से आने वाला प्रकाश भी ऊर्जा देता है और जीवन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी को प्रकाशित करती सुबह की धूप, यदि 30 मिनट हम इस धूप को

करते हैं तो हमें विटामिन डी मिल जाता है जो हड्डियों के लिए जरूरी है और जीवन में दौड़ लगाते हुए नकारात्मकता को भी दूर भगाती है। तो हमारे पांव जितने मजबूत होंगे हम उतनी दूर तक दौड़ भी लगा पाएंगे और उतनी ही मजबूती से दौड़ भी पाएंगे।

जिंदगी धूप छांव का खेल है, आशा और निराशा धूप छांव है। जीवन में एक आता है तो दूसरा जाता है। धूप कभी दहकती कभी महकती, कभी मचलती आई धूप, हर मौसम

में आंगन आंगन रूप बदल कर छाई धूप। वैज्ञानिक पहलू देखें तो इसमें दृश्य प्रकाश के साथ इंफ्रारेड किरणें गर्मी का एहसास कराती हैं, तो सुबह की कोमल धूप नवजात की वृद्धि, नवजवान को नया उत्साह, बढ़ती उम्र को दर्द भूलने, मिल बैठने, मुस्कुराने का मौका भी देती है।

0: कभी छाऊं, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छाऊं।
1: धूप ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत पृथ्वी और उसके सहवासियों, वनस्पतियों और जीवधारियों के लिए सूर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोमल भोर की धूप एक चिकित्सक है, तभी तो सूर्य नमस्कार अंग अंग को चलायमान कर देता है। सूर्य षष्ठी आस्थावान बनाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त की उपासना धर्म से जोड़ता है। हम भी जुड़े रहें प्रकृति के इन अनमोल अद्भुत कृतियों से, लाभ लेते रहें, आनंद लेते रहें और इस गीत का भी आनंद लें।

0: नारी जगत के कार्यक्रम के सफ़र से आज रंजना को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे और आज के लिए अपनी सखियों को कहते हैं नमस्कार।
1: महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग

0: को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:05 हुए हैं। कार्यक्रम है किस लय। आज सुनिए वार्ता। विषय है किशोरों में सामाजिक राजनीतिक चेतना जरूरी। वार्ताकार है रीना राजीव।
2: आज के समय में लोकतंत्र आधारित प्रणाली सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार शासन व्यवस्था के केंद्र में होती है। ऐसा माना जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकती है, लेकिन कोई भी लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सभी नागरिक अपने जिम्मेवारी को समझें, चुनाव में भाग लें और अच्छे नेताओं का चयन करें। तभी लोकतंत्र के माध्यम से देश तथा समाज प्रगति की राह पे अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन कई बार व्यवहार में ऐसा नहीं भी होता है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार मतदान होने से लोकतंत्र के कमजोर होने की आशंका हो जाती है। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसमें भाग लेने वाले नागरिक अपने राजनीतिक कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं। विशेष रूप से युवाओं और किशोरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो राष्ट्र की नींव होते हैं, या यूं कहें कि वे ही देश के कर्णधार होते हैं। किशोर यदि जागरूक नहीं होंगे तो लोकतंत्र तो हार ही जाएगा। इसलिए किशोरों में राजनीतिक चेतना की अति आवश्यकता है। यदि किशोरों में राजनीतिक चेतना होगी, राजनीतिक रूप से जागरूक होंगे, तो न वह केवल अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि भविष्य में एक सशक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना भी कर सकेंगे। आज के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख रहे हैं, देश दुनिया देख रहे हैं। बच्चों को स्कूल में ही अपनी राजनीतिक कर्तव्यों की बुनियादी अर्थ को बताना चाहिए। स्कूल में शिक्षक, घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भी अपने अनुभवों से बच्चों में धीरे धीरे अच्छे संस्कार के साथ देश के प्रति कर्तव्य और उनके नागरिक अधिकारों के बारे में बता सकते हैं। बचपन से ही यह एहसास दिलाना बहुत आवश्यक है कि लोकतंत्र का आधार जनता यानी हम सब हैं, और हमारा भविष्य अच्छा हो इसके लिए अच्छी सरकार चाहिए। यह जानना भी जरूरी है कि आखिर राजनीतिक चेतना का वास्तविक अर्थ होता क्या है। एक आम समझ यह है कि मतदान में हिस्सा लेना ही राजनीतिक चेतना है। वास्तव में राजनीतिक चेतना का तात्पर्य सिर्फ चुनावों में वोट डालने तक सीमित नहीं है। राजनीतिक चेतना का एक व्यापक अर्थ है। राजनीतिक चेतना का एक मूल आशय है राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी होना, सरकार की नीतियों की परख होना, सरकार के कार्यों की समीक्षा करने की सामर्थ्य और जनहित के मुद्दों के प्रति सजगता, और इन सब के आगे संविधान के प्रावधानों की समुचित जानकारी। ये सारी बातें अगर किशोर वर्ग में हैं तभी वे भविष्य में मतदान में शामिल होकर लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और कर्तव्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। इन गुणों के अभाव में सही उम्मीदवार का चयन बड़ा ही मुश्किल है, और हमारी भूमिका लोकतंत्र में दर्शक मात्र की हो सकती है। राजनीतिक चेतना की जरूरत समाज के हर वर्ग को है, लेकिन किशोरों और युवाओं के लिए इसका अलग से खास महत्व है। युवाओं को देश का कर्णधार माना जाता है। आज के किशोर ही देश के भविष्य की नींव है। अगर वे आज

जागरूक होंगे तभी तो कल देश को सक्षम और बेहतर नेतृत्व मिल पाएगा। दूसरा, राजनीतिक रूप से सजग और सचेत किशोर वर्ग समाज में फैली कुरीतियों और समस्याओं की पहचान कर सकता है, आगे चलकर इनको चुनौती दे सकता है और इनसे संघर्ष कर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। तीसरा, किशोर ही राष्ट्र की नींव है और कहा जाता है कि जागरूक युवा सशक्त समाज स्वाभाविक है। राजनीतिक रूप से जागरूक युवा ही ऐसा करने में सफल हो सकते हैं और इसकी नींव किशोरावस्था में ही संभव है। किशोरों में राजनीतिक चेतना की अनिवार्यता का चौथा और महत्वपूर्ण कारण है नेतृत्व क्षमता का विकास। किशोरावस्था में राजनीतिक सोच विकसित होने से उनमें राजनीतिक गुण उभरते हैं। भविष्य के लिए ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। जब किशोरों में राजनीतिक चेतना होती है तभी युवावस्था में राजनीतिक और उसकी भागीदारी संभव है। जब उनमें राजनीतिक चेतना होती है तब सरकार को जनहित की नीतियां बनाने में एक प्रकार से मार्गदर्शन मिल जाता है। जनहित की नीतियां पूरे समाज के लिए होती हैं और एक प्रकार से राजनीतिक चेतना से परिपूर्ण युवा सरकार को मजबूर करता है कि वो जनहित के मुद्दों को ही अपनी नीतियों के केंद्र में रखे। किशोरों में राजनीतिक चेतना से लोकतंत्र मजबूत होता है। जब युवा राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है तो लोकतंत्र को कई दिशा मिलती है। जिस तरह बालों को घना काला और मजबूत करने के लिए बचपन से ही उनकी जड़ों में तेल लगाने की सलाह दी जाती है, उसी प्रकार से देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किशोरावस्था में ही संवैधानिक व्यवस्था, मतदान की महत्ता, मतदान की प्रक्रिया, चुनाव का महत्व आदि की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। किशोरों में राजनीतिक चेतना के लिए उन्हें संसद, विधानमंडल के साथ साथ जिला और पंचायत स्तर पर निर्वाचन और उन्हें के महत्व की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था और इसके माध्यम से ही समुचित विकास संभव है। ऐसी अवधारणा की नींव किशोरावस्था में ही पड़नी चाहिए। किशोरावस्था में ही अपने आसपास की समस्याओं की पहचान करना और यह समझ विकसित करना होगा कि इसका समाधान लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही संभव है। किशोरावस्था में राजनीतिक चेतना देश और समाज के लिए सही विकास को सुनिश्चित करता है। इसके लिए यह आवश्यक भी है कि देश में शिक्षा का उचित प्रसार हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जाहिर है किशोरों में राजनीतिक चेतना के लिए उनका शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा के अभाव में राजनीतिक भटकाव हो सकता है। सही और गलत की पहचान बिना शिक्षा के मुश्किल है। शिक्षा के माध्यम से ही देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनकी कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है। भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यहाँ आबादी में युवाओं की संख्या भी दुनिया में सर्वाधिक है। ऐसे में भारत को इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उसे अपनी युवा शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और राजनीति में किशोरों और युवाओं का भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। तेजी से बदलती दुनिया में किशोरों और युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के नीति निर्माताओं को देश की राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अब थोड़ी चर्चा करें कि अगर किशोरों में राजनीतिक चेतना नहीं होगी तो इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। ये जान लीजिए कि यदि राजनीतिक चेतना की कमी होगी तो सामाजिक गतिविधियों के प्रति उदासीन बने रहेंगे। इसका लाभ अवसरवादी नेता उठाते हैं जिससे भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और दमनकारी नीतियों को बढ़ावा मिलता है। अशिक्षा के साथ साथ राजनीतिक जागरूकता के अभाव में किशोर दिग्भ्रमित हो जाते हैं और खुद ना तो अपनी समस्याओं को पहचान कर पाते हैं और ना ही उन समस्याओं का हल ढूंढने में समर्थ हो पाते हैं। राजनीतिक चेतना की कमी जब युवाओं में होती है तो वह धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रवाद आदि के चंगुल में फंस जाते हैं और सही मार्ग भी उन्हें दिखाई नहीं देता। फलस्वरूप एक ऐसी शासन व्यवस्था के पनपने की संभावना बढ़ जाती है जो समाज के लिए हितकारी नहीं है। दुनिया के कई ऐसे देश ज्वलंत उदाहरण हैं। ऐसी चेतना के अभाव में हमारे कई पड़ोसी देशों में लंबे समय तक अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रही है। आइए अब बात करते हैं कि किशोरों में राजनीतिक चेतना को कैसे लाया जाए। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। पहले भी मैंने ये चर्चा की है कि राजनीतिक चेतना में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है।

0: पाठ्यक्रम में राजनीतिक शिक्षा और नागरिक शास्त्र को प्रभावी ढंग से शामिल करना चाहिए। पाठ्यक्रम को रोचक बनाया जाना चाहिए ताकि सब किशोरों के लिए यह बोझिल न बन पाए। आज के समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इनका सदुपयोग कर पर्याप्त जागरूकता फैलाई जा सकती है। डिजिटल मीडिया आज तमाम तरह की सूचनाओं के स्रोत बन गए हैं। इनका सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक सूचनाएं, नेताओं के भाषण, राजनीतिक दलों की नीतियां, उनके मैनिफेस्टो के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाती है। राजनीतिक चेतना जागृत करने में ये काफ़ी मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा स्कूल और महाविद्यालय स्तर पर राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन और इसमें किशोरों की भागीदारी काफ़ी उपयोगी हो सकती है। बाल संसद, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा, वाद विवाद से किशोरों को व्यवहारिक अनुभव मिलता है और उनमें सोचने समझने की शक्ति क्षमता बढ़ जाती है, जो कि राजनीतिक चेतना के लिए अति आवश्यक है। सकारात्मक राजनीतिक चर्चाएं परिवार के अंदर भी होनी चाहिए और इनमें किशोरों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे भी राजनीतिक व्यवस्था से अपना जुड़ाव महसूस कर सकें। इसके साथ ही किशोरों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि युवा अवस्था में वो राजनीति में आने के लिए प्रेरित हो सकें। इसके लिए राजनीतिक दलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की भी जरूरत है। राजनीति को गंदा करके इससे दूरी बनाना किसी के हित में नहीं है, बल्कि ऐसी दूरी का दूरगामी प्रभाव देश के लिए घातक होता है। इसलिए किशोरों को राजनीतिक प्रक्रिया की जानकारी देना, उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक करना हम सबकी सामूहिक और राष्ट्रीय जिम्मेवारी है। राजनीतिक चेतना सिर्फ एक विषय नहीं, इसे एक सोच समझना चाहिए। ऐसी सोच जो एक व्यक्ति को जिम्मेवार नागरिक बनाता है। किशोरों में राजनीतिक चेतना अगर समय रहते विकसित हो जाए तो न वो केवल अपने भविष्य बल्कि देश के भविष्य को भी संभाल सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। अतः समय की यह मांग है कि शिक्षा के साथ किशोरों में राजनीतिक चेतना भी विकसित की जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक रूप से पूरी तरह से जागरूक किशोर ही सशक्त और विकसित भारत की नींव रख सकता है।
1: किशोरों में सामाजिक राजनीतिक चेतना जरूरी विषय पर अभी आपने रीना राजीव की यह वार्ता सुनी कार्यक्रम खिसले में। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद देशभक्ति गीत आप सुनेंगे।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
8: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
8: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।

0: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना,
2: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अंतराल से पूर्वश्रोता सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 1:30 हो रहे हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म बनफूल से यह नगमा हमने आपको सुनवाया, आनंद बख्शी के भोलों को संगीत से संवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिया है फिल्म कर्तव्य से, कफील के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

0: लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म कर्तव्य में, कार्यक्रम में एक अंतराल लेंगे, सुनवाएंगे कुछ और गीत।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मोहम्मद रफी को आपने सुना फिल्म आशा में। आनंद बख्शी की रचना थी लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल के संगीत, और अब मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के युगल स्वर में सुनिए ये गीत। फिल्म है राम बलराम। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत बद किया है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मांग भरोसा जनाब फिल्म में भी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुना। आनंद बख्शी के बोलों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से संवारा था। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के पिकरेट परेड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 10,10,000 से अधिक परिवारों के 21,500 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का निपटारा किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,84,000 से अधिक परिवारों के लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा हो रहा है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन किया। लोक अदालतों में बैंक ऋण, बिजलीबाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रमवाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जा रहे हैं। इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई हो रही है। 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग पीठों का गठन किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव।

0: मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर में सबसे अधिक 51.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि आज भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, रोहतास, सारण और सिवान जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किए जाने की मांग को लेकर कल पटना में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में 5000 छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थियों पर ट्रैफिक बाधित करने, विधि व्यवस्था भंग करने और पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड अंतर्गत बड़हड़बा फतेह मोहम्मद गांव में एक दुकान में आग लग जाने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। घटना में 2 अन्य घायल हो गए। कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरे को हरे रंग में डुबोकर बेचने के वायरल हुए वीडियो के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने महिला विक्रेता समेत 9 महिला हॉकरों को गिरफ्तार किया है। आईआईटी पटना परिसर में क्रिकेट खेलते समय करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाक़दा एक तकरीब में मगरबी बंगाल में बीजेपी के पहले वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। वजीर आला के साथ साथ 5 काबीना वज़रा ने भी हलफ लिया। गवर्नर R.N. रवि ने वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ साथ कई मरकज़ी वज़रा और बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के ज़ेर इक़्तदार रियासतों के वज़राए आला भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वजारत खजाना ने कहा है कि समाजी तहफ्फुज़ की इन स्कीमों का मकसद तमाम लोगों, ख़ास तौर पर माशरे के महरूम और कमज़ोर तबकात को सस्ती माली तहफ्फुज़ फराहम करना है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से ज़ायद रजिस्ट्रेशन हो चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ अफराद शामिल हो चुके हैं। अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुका है। श्रीमती सीतारमन ने मजीद कहा कि जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 10,10,000 से ज़ायद खानदानों के 21,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा के क्लेम्स निपटाए जा चुके हैं। वजीर खजाना ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,84,000 से ज़ायद खानदानों के तकरीबन 3,660 करोड़ रुपए के दावों की अदायगी की जा चुकी है। पटना हाई कोर्ट समेत रियासत की सभी अदालतों में आज कौमी लोक अदालत का इनाकाद किया जा रहा है। लोक अदालत में बाहमी समझौते की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के सिविल और बाज़ किस्म के क्रिमिनल मामलात का तस्फिया किया जा रहा है। पटना हाई

कोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने आज पटना सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मुनाकिद लोक अदालत का इफ्तिताह किया। लोक अदालतों में बैंक लोन, बिजली के तनाजात, गाड़ियों के हादसात का बीमा और लेबर तनाजात जैसे मामलात बाहमी रजामंदी की बुनियाद पर हल किए जा रहे हैं। इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से मुतालका मामलों की भी समाअत हो रही है। 90 दिन से ज़्यादा पुराने ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलात की समाअत के लिए एक इलाहदा बेंच तश्कील दी गई है। मगरबी हवा के असर से रियासत में गुज़श्ता एक हफ्ते से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा 51.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में 135 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवा के साथ बारिश हुई। मौसम की पेशगोई में कहा गया है कि आज भी रियासत के बेशतर हिस्सों में तेज़ हवा के साथ बारिश का इम्कान है। औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, रोहतास, सारण और सीवान अजला में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग जारी की गई है। इस हवाले से रेड अलर्ट जारी किया गया है। असातिज़ा तकरीरी के चौथे मरहले के इम्तहान का इश्तहार जल्द शाया करने के मुतालबे को लेकर कल पटना में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे के मामले में 5,000 तलबा के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। गांधी मैदान के थाना इंचार्ज अखिलेश मिश्रा ने बताया कि इस मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उम्मीदवारों पर ट्रैफिक में खलल डालने, नज्म व नस्क को बिगाड़ने और पुलिस अहलकारों के साथ बदसलूकी करने का इल्ज़ाम है। मशरकी चंपारण ज़िला के ढाका ब्लॉक के तहत बड़हरवा फतह मोहम्मद गांव में एक दुकान में आग लगने से 2 बच्चे समेत 3 अफराद झुलस कर हलाक हो गए। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरे को सब्ज़ रंग में डुबोकर बेचने की वायरल वीडियो के मामले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने खातून फरोश समेत 9 खवातीन हॉकर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पटना IIT पटना के कैंपस में क्रिकेट खेलते हुए करंट लगने से एक तालिब इल्म की मौत हो गई। हलाक होने वाला तालिब इल्म मुंबई का रहने वाला है। वैशाली ज़िला के महनार जंदाहा मेन रोड पर योगी बाबा स्थान के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान होने वाले तसादुम में एक नौजवान जहां बहक हो गया जबकि दूसरा नौजवान शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, अब रोजगार सूचना सुनिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने कांस्टेबल टेक्निकल और कांस्टेबल ट्रेडमैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 23 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 19 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.crpf.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग SSC विभिन्न विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स अथवा 2 या 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2000

0: 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 14 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.ssc.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग SSC ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए स्टेनोग्राफर के कुल 731 पदों पर भर्ती के लिए योग रक्षक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। ग्रुप सी के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 15 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.ssc.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को

0: भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।

0: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़

0: का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुड़ेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में सम्पन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते

0: हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हो रहे हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: फिल्म माया में भी आपने लता मंगेशकर को सुना, मजरू के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लेंगे अंतराल, सुनवाएंगे कुछ और गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।

लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म छाया में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सलील चौधरी का संगीत, और अब मोहम्मद रफ़ी को सुनिए। गीत है फिल्म गायत्री महिमा से, भरत व्यास की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।

0: प्रकाश मेहरा के बोल है संत त्रिपाठी का संगीत, और अब एक अंतराल लेंगे, सुनवाएंगे कुछ और गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।

मन्ना डे को आपने सुना, इस गीत को हमने लिया था फिल्म मैं शादी करने चला से, मजरू के बोल थे, संगीत चित्रगुप्त का। और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम 4:30 पर आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है एफएम रेनबो पटना को और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रीता। अब से लेकर शाम के 7:30 तक मैं बनी रहूंगी आपके साथ और करती रहूंगी
1: पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहेगी,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया। इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सके। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुंचा सकें। चलिए आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।
4: हुस्न हा

ये स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था लैला मजनू।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

श्रवण का संगीत समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेग बिरक और मीका बिरक का।

ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
0: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
0: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
0: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
0: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
0: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियाडे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
3: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों कंदस्वामी, आज मेल लेट थी क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्टमास्टर साहब। अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बढ़ जानी चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्टमास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्टमास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गुड़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना।

0: मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए। मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई। यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या? तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
1: मनी ऑर्डर? हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है। शाबाश जवान।
0: कौन है वो सैनिक?
1: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
0: मेरा डुप्लीकेट?
1: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंदस्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंदस्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछे और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती। वो हूबहू तुम जैसा है।
0: कौन है वो?
1: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
0: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है। उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
1: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था। जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना। काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहाँ आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया। सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है वो। 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
0: अच्छा तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
1: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
0: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब? ये गलत बात है। डाक खाने का नियम तो यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
1: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
0: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है तो मैं चलूं। और हाँ उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
1: ये लो ठीक तरह से गिन लो। डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई श्रृंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज। क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई, मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई श्रृंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई, अपने राम का भी तो यही धंधा है। मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल कह रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: श्रृंगारम, श्रृंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त।
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कुछ झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ।
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो, पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब, जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है।

0: बुलाया आपने?
1: अच्छी बैठिए भी। अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
0: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
0: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम सिंगारम है।
0: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
0: वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
0: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
0: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते। जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना।
0: वरना क्या होगा?
2: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
0: सिंगारम ये न भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
2: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
1: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ, देखना ये सिंगारम कैसे।

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए, और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए, 100-100 रुपए के 30 नोट हैं, अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूंगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहां कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर

0: हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती
0: हैं। माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे, और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: अरे जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: हाजी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जीजी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारम? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम से।
0: अरे अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तो अब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार

0: स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा, कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ, सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं। अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, चला जा यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है यार।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हारा क्या

0: सामने वो बदमाश शिंकारम खड़ा है। अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है। अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो?
3: अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़े ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
3: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
3: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है?
2: देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है, रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा।
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे।
2: अच्छा ये बात है?
0: छोड़ मैं अभी। छोड़ मुझे।
4: जहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे, दिन भर हर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमी ना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
3: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
4: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चारों हाथ उधर कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तुमने?
3: अगर मैं अपने दलबल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस

0: मुंह से आपको धन्यवाद दूं। आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
1: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
1: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
1: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा ढंग का तो हो। मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
1: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है।
0: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं, और वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
1: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
1: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ। समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
1: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने। चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये, छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है। जब उसका मंगेतर है तब पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है, लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
2: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
1: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
2: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
1: ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
1: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
2: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
1: मैं लाता हूँ। दवाई?
2: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
1: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
2: बेटा, तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
1: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
2: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
1: लो माँ।
3: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे PS कृष्णा स्वामी और निर्देशन किया

महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुट जाऊंगी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
1: क्या बात है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया
1: प्रमिला जी। सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी
2: जी,
1: तो हम तब से बात शुरू करें
2: जी
1: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
2: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
1: जी,
2: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
1: हाँ।
2: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था।
1: हाँ, हाँ।
2: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: वाह।
2: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
1: हाँ।
2: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके
1: जी, जी, जी।
2: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
1: हाँ।
2: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह
2: जी।
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
2: पहला शो 1975 14 अप्रैल
1: जी,
2: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
1: हाँ, हाँ,
2: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है
2: जी,
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
2: मुहूर्त माना, हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते अच्छे जिस दिन, उनमें

0: ये पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी
1: जी
0: पाड़वा।
1: क्या बात है,
0: जी
1: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी
0: हाँ,
1: हैं।
0: फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी से के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्ना दा के साथ गाना था,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था। वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि
1: जी
0: मन्ना दा
1: जी
0: के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कोणा से, वो जो गाना है
1: जी
0: मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कोणा
1: जी
0: से। मुझे याद है छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी, मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की, तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोणा से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे
1: अच्छा
0: बोली
1: अच्छा
0: तुम तो मेरे लिए गाओगी, तो बोले हाँ
1: ओ
0: जरूर
1: क्या
0: गाओगी।
1: बात,
0: बहुत मजा आया
1: वाह
0: उससे,
1: वाह।
0: बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का
0: जी
1: हुआ,
0: जी
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी,
0: लिस्ट
1: आपको
0: बनाई
1: याद
0: थी,
1: है?
0: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए,
1: जी
0: क्या अजीब दास्तां है ये,
1: हाँ हाँ
0: इस तरह
1: हाँ
0: के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल। तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने
0: हाँ जी
1: टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी,
0: हाँ जी
1: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी।
0: जी
1: आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है,
0: राइट।
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे वो
1: हाँ
0: बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो, वो जो
1: ओह क्या
0: आई
1: बात
0: आई
1: है,
0: लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा
1: अलग अलग
0: गाना।
1: गायिकाओं ने अलग अलग
0: हाँ
1: मौके पे इसे
0: ऐसे मैं
1: गाया है।
0: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी,
1: हाँ
0: अलग अलग
1: हाँ
0: गायिकाओं के गाने हुए,
1: जी जी
0: उसकी झलक
1: हाँ
0: उसमें, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
1: जी
0: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत, मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे सब ऐसे, और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर
1: सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति दिवाली सब त्यौहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि ये लगता था हम सबका एक ही त्यौहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को।
0: जी जी।
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था।
0: हाँ।
1: तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे
0: जी जी।
1: गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरु के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा,
1: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
0: वाह।
1: पहली बार मैं बम्बई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
0: जी जी।
1: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत शारदा। जी जी।
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी।
0: अच्छा।
1: मेरी आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी, तो पुरुष के गायक के लायक थी।
0: अच्छा।
1: और हाइट भी अच्छी थी।
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
0: जी, जी,
1: नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल के
0: ये महिला विश्वविद्यालय,
1: महिला नहीं वो स्कूल की बात कर रही हूँ, महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
0: अच्छा।
1: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के।
0: अच्छा,
1: बाकी फ्रेंड्स वगैरह थे साथ।
0: बहुत
1: मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था।
0: क्या बात है,
1: बहुत मजा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर
0: सके?
1: जरूर।

0: वाह वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी।

0: नहीं करते
1: स्टेप
0: पुरुष
1: मंच पर, तो
0: लोग,
1: पुरुष की
0: स्त्री
1: अगर कहते
0: भूमिका
1: जिसके
0: है
1: लिए
0: क्या?
1: नारायण राजहंस यानी बाल
0: बाल
1: गंधर्व
0: गंधर्व
1: जाने
0: जी,
1: जाते हैं,
0: राइट राइट,
1: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार
0: हाँ जी
1: प्रसिद्ध
0: हाँ
1: हुए
0: जी,
1: अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के
0: तो
1: लिए,
0: यहाँ उल्टे मामला हो
1: और
0: गया
1: मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका
0: पुरुष
1: यहाँ
0: भूमिका
1: इस
0: निभाई।
1: नाटक में निभाई थी।
0: हाँ जी,
1: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
0: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था,
1: जी
0: हम
1: जी
0: हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज़ भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीज़न की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने,
1: हाँ,
0: तो उसमें भी मैंने रोल किया था,
1: अच्छा
0: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला
1: जी
0: में
1: जी
0: कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियाँ खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी, पहले ज़माने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में
1: जी जी
0: दिखाते
1: जी
0: थे,
1: जी
0: अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म
1: हाँ
0: डिवीज़न भी चालू है क्या नहीं पता, नहीं शुरू है,
1: हाँ
0: तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
1: हाँ
0: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में BA किया मैंने
1: जी
0: म्यूज़िक लेके,
1: जी जी
0: तो म्यूज़िक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें BA तक। और BA का वो एग्ज़ाम हुआ, और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब
1: हाँ
0: शादी हो गए 42 साल का मेरा जन्म है, और
1: हाँ
0: 58 को शादी हो गई 16 साल की,
1: हाँ
0: तो 58 को शादी हो गई। फिर मैं ऐसे घर में, तो BA हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई, तो 1962 में
1: जी
0: उसका बेटे का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने,
1: जी
0: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है तुम कर रही हो, तो क्यों रोकती हो, MA करो। MA में इंटायर म्यूजिक था
1: हाँ
0: SNGT में,
1: हाँ
0: तो उनकी बदौलत मैं MA करने के लिए गई। वो
1: वाह
0: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी,
1: हाँ
0: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक झिझक होती है कि
1: हाँ
0: जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज़्यादा अच्छा संभालती थी
1: अच्छा
0: बच्चों को।
1: हाँ
0: तो 62 में मैंने MA किया फिर,
1: वाह
0: और फिर MA किया, और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
1: अच्छा
0: हाँ, तलत साहब के साथ, एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब मेंबर थे, तो वहाँ पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन
1: हाँ
0: हुआ लायंस क्लब
1: जी
0: का,
1: जी
0: तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे, और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या, हमने चलेगी कूदते
1: दौड़ेगी
0: जाऊंगी कूदते जाऊंगी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: तलत
1: जी
0: साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, तीन
1: क्या
0: महीने
1: बात
0: का वो टूर था हमारा,
1: क्या बात है।
0: और दो बेटियाँ, एक
1: हाँ
0: चार
1: हाँ
0: साल
1: हाँ
0: की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की, मैं
1: हाँ
0: बिंदास चली गई, और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से।
1: हाँ हाँ
0: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स है,
1: जी,
0: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज़ में, हमको मतलब देखा हुआ जाके,
1: जी
0: कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने,
1: अच्छा
0: ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे,
1: वाह
0: बहुत मज़ा आया
1: क्या बात
0: टूर
1: है।
0: में, उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को
0: और
1: आपने याद
0: तलत
1: किया,
0: साहब तो
1: तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने
0: ओके
1: श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
0: मराठी में गाने थे।
1: जी
0: हाँ
1: जी

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी,
1: जी
0: फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने वेस्ट
1: पहले
0: इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ गए?
1: वशिष्ठ तलत साहब के साथ गए, फिर
0: हाँ
1: उसी उसी को नंदी दुगल जी थे
0: जी,
1: प्रमोटर अगली बार,
0: हाँ
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ
0: हाँ हाँ
1: जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा,
0: जी जी
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, हमने टूर किया
0: अच्छा
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था ना, तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों
0: जी
1: के लिए,
0: जी
1: तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं
0: हाँ
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी,
0: जी जी
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था दम मारो दम, तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की
0: जी
1: रेंज और आशा भाई की रेंज, वो
0: हाँ
1: दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके,
0: अच्छा
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था
0: अच्छा
1: दम मारो दम।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी,
0: जी
1: तो
0: जी
1: स्टेज पे आए थे दम मारो दम ऐसा करते
0: अच्छा
1: थे तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस
0: हाँ
1: किया
0: हाँ
1: उनको,
0: जी जी
1: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सारे सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहाँ शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
0: जी जी
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो
0: जी
1: अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए
0: हाँ
1: छुट गए, फिर मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे का कि अपने तीन चार गाने गा के ये
0: हाँ
1: लोगों को सामने से सुनते बैठू,
0: हाँ
1: बहुत ही भाग्य था
0: क्या
1: मेरा
0: बात
1: इस
0: है।
1: बारे। रफी
0: मगर
1: साहब को
0: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
1: डुएट नहीं गाया
0: नहीं गाया? अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम
1: जरूर
0: सुने तो कौन
1: जरूर
0: सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, बोले
0: मतलब
1: दूसरों की
0: टीका टिप्पणी की आप, जो आपका
1: टीका
0: कहना है।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई।
0: हाँ,
1: हाँ, उसकी वजह ये है कि लोगों की टीका टिप्पणी, मतलब ये अब 3 घंटे

0: नमस्कार दोस्तों, शाम के इस खूबसूरत और सुकून भरी घड़ी में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना का युवानी कार्यक्रम और मैं हूं आपकी दोस्त शिवांगी।
1: और मैं हूं सुनंदनी। उम्मीद है आपका दिन अच्छा जा रहा होगा।
0: और अब अगला एक घंटा हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन का शानदार शाम। आज का हमारा कार्यक्रम काफी खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करेंगे वीरता, साहस और मातृ प्रेम की। कार्यक्रम में रहेगा महाराणा प्रताप जयंती पर एक विशेष प्रस्तुति, जहां जानेंगे उस महान योद्धा के बारे में जिन्होंने स्वाभिमान और मातृभूमि के सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है।
1: और इसके साथ ही बात होगी यूरोप दिवस की, जो केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक विचार के जन्म का दिन है।
0: इसके अलावा आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे एक बेहद दिलचस्प बातचीत, जानेंगे बच्चों में साइंटिफिक नेचर यानी वैज्ञानिक सोच को कैसे विकसित किया जा रहा है।
1: हाँ, आज के दौर में क्रियोसिटी और लॉजिक थिंकिंग कितनी जरूरी है, इसी विषय पर होगी खास चर्चा।
0: इसी के साथ श्रोताओं का मनपसंद रोचक तथ्य भी होगा।
1: तो कुल मिलाकर आने वाला एक घंटा होने वाला है जानकारी, प्रेरणा और संगीत से भरपूर।
0: इसके साथ आइए सुनते हैं हमारा आज का।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में शाम के ठीक 4:29:46 हो चुके हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांतकालीन सभा। श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां डर, डाउट्स और लोगों की बातें हमें पीछे रोकने लगती हैं। लेकिन शायद वही पल होते हैं जहां हमें सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल सुनंदिनी, और आज की हमारी जेनरेशन बहुत टैलेंटेड है। उनके पास आइडियाज हैं, ड्रीम्स हैं और एनर्जी भी है। लेकिन कई बार कंपैरिजन या फिर फेयर ऑफ फेलियर या फिर लोगों के जजमेंट की वजह से हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हैं और हार मान जाते हैं।
0: और शायद इसीलिए ये याद रखना जरूरी है कि हर सक्सेसफुल इंसान कभी न कभी डरा जरूर होगा, लेकिन उसने अपने डर को अपनी पहचान नहीं बनने दिया।
1: बहुत खूबसूरत बात कही आपने, और आज का मोटिवेशनल कोट भी इसी सोच पर आधारित है दोस्तों। करेज डजंट मीन यू नेवर फील अफ्रेड, इट मीन्स यू मूव फॉरवर्ड इवन व्हेन फियर इज स्टैंडिंग बिसाइड यू।
0: तो अगर आप कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, या बस अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो खुद पर भरोसा रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि आपकी कहानी, आपकी मेहनत और आपका सफर किसी और जैसा एक नहीं है। और जब आप खुद पर थोड़ा विश्वास दिखाते हैं तो आप एक नई शुरुआत करते हैं, तभी जिंदगी में आप आगे बढ़ पाते हैं दोस्तों।
0: तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव एनर्जी और करेज के साथ अब वक्त है एक खूबसूरत से गीत का।
1: एक ऐसे गीत जो आपको याद दिलाएगा कि सपनों को सच करने के लिए बस हमें थोड़ी सी हिम्मत चाहिए।

0: आज का दिन दोस्तों हम सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व का दिन है। आज उस शूरवीर की जयंती है जिनका नाम सुनते ही रगों में जोश दौड़ जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा शिवांगी। आज हम याद कर रहे हैं मेवाड़ के मुकुटमणि अजय योद्धा महाराणा प्रताप को। आज उनकी जयंती है। आज पूरा देश उनके साहस को नमन कर रहा है।
0: बिल्कुल सुनंदिनी, जब भी महाराणा प्रताप का जिक्र आता है तो हल्दी घाटी और चेतक की यादें अपने आप ताजा हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, उनका जन्म किस दिन हुआ था? क्योंकि यहाँ अक्सर ये होता है कि दो तिथियों को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
1: बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, लेकिन राजस्थान और कई हिस्सों में लोग इसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को मनाते हैं, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है।
0: वाह, यानी कि तारीख भले ही बदल जाए श्रोताओं, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा हमेशा अटल रहती है। अच्छा सुनंदिनी, मैंने सुना है कि महाराणा प्रताप जी ने महलों का सुख छोड़कर जंगलों में रहना स्वीकार किया था, पर कभी घुटने नहीं टेके।
1: सच कहा, वह स्वाभिमान की जीती जागती मिसाल थे। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय घास की रोटियां खाना बेहतर समझा। सोचिए, एक राजा जिसके पास सब कुछ था, उसने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए वर्षों तक कष्ट सहा।
0: और उनका वो चेतक

0: उसके बारे में तो कविताएं आज भी हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं दोस्तों। याद है वो लाइन, चढ़क चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को।
1: बिल्कुल, चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वफादारी और वीरता का प्रतीक था। हल्दीघाटी के युद्ध में जब महाराणा घायल हुए तो चेतक ने उन्हें अपने जान पर खेलकर बचाया था। वह रिश्ता एक योद्धा और उसके साथी का सबसे सुंदर उदाहरण है।
0: बिल्कुल सुनंदिनी, और आज की पीढ़ी को महाराणा प्रताप के जीवन से क्या सीखना चाहिए, क्योंकि आज का समय तो युद्ध का नहीं है लेकिन चेतना का है।
1: दोस्तों, समय आ गया है एक प्यारे से गाने का, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। गाने के बाद हम और भी बातें करेंगे।

0: दोस्तों, अभी हमने सुना ये गीत फिल्म भाग मिका भाग से, जिसे आवाज से सजाया है श्रेया घोषाल ने। शिवांगी, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि आज के युवाओं को महाराणा प्रताप से क्या सीखना चाहिए। तो मेरा मानना है कि उन्हें सीखना चाहिए उनका दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन और सिद्धांतों के बारे में। हार ना मानना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अपने लक्ष्य से ना भटकना, आत्मसम्मान, अपनी जड़ों और संस्कृति से कभी समझौता ना करना। नेतृत्व उन्होंने भीलों और स्थानीय जनजातियों को एकजुट किया, जो दिखाता है कि उनके सच्चा नेता कैसा होता है।
1: बिल्कुल गहरी बात कही आपने सुनंदिनी, तभी तो उन्हें मेवाड़ी राणा कहा जाता है। आज के दिन राजस्थान के किलों में, खासकर कुंभगढ़ और चित्तौड़गढ़ में तो बहुत रौनक होगी। दोस्तों, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे अगले विषय पर।
0: शिवांगी, क्या तुम्हें पता है कि आज 9 मई है? सोशल मीडिया पर हर तरफ यूरोप दिवस की चर्चा हो रही है। मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो है, लेकिन मैं इसे गहराई से समझना चाहती हूँ। आखिर एक पूरा महाद्वीप अपना एक दिन क्यों मनाता है?
1: ये बहुत ही दिलचस्प विषय है सुनंदिनी। दरअसल 9 मई का दिन यूरोप के लिए महज एक तारीख नहीं है, बल्कि ये एक विचार के जन्म का दिन है। यह उस शांति और एकता का उत्सव है जो द्वितीय विश्व युद्ध की राख से पैदा हुई थी। इस शुमेन घोषणा यानी कि शुमेन डिक्लेरेशन की वर्षगांठ के रूप में हम मनाया जाता है।
0: अच्छा, शुमेन घोषणा, ये क्या है? यह नाम मैंने सुना है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है? आखिर युद्ध के तुरंत बाद यूरोप ने एक होने के फैसला कैसे कर लिया, जबकि वे शहीदों सदियों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे।
1: बिल्कुल, 1950 का समय सोचो यूरोप पूरी तरह तबाह हो चुका था। फ्रांस और जर्मनी के बीच की दुश्मनी जब जाहिर थी दोस्तों, तब फ्रांस के विदेश मंत्री रॉबर्ट शुमेन ने 9 मई 1950 को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा। अब आप सोचेंगे ये प्रस्ताव कैसा था? तो उनका मानना था कि अगर हमें भविष्य में युद्ध रोकना है, तो उन संसाधनों पर नियंत्रण साझा करना होगा जो युद्ध के लिए जरूरी है।
0: दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी, इसके बारे में हम और जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गाना। पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस गाने के बाद हम आपको इस विषय में और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं।

0: अच्छा, ये गाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बाद मेरे मन में, आपने जो मुझे बताया है, मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है
1: क्या सुनंद नहीं?
0: कि जिस तरीके से आपने बताया कि ये एक

0: समझौता था। तो क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता था?
1: सुनंदिनी शुरुआत में हाँ, लेकिन इसका उद्देश्य राजनीतिक था। शुमेन ने कहा था कि यूरोप एक दिन में नहीं बनेगा और न ही ये किसी एक योजना के अनुसार बनेगा। उन्होंने यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाने का प्रस्ताव दिया। विचार ये था कि अगर फ्रांस और जर्मनी अपने कोयले और इस्पात का उत्पादन एक साथ जोड़ते तो उनके बीच युद्ध न केवल अल्पनीय हो बल्कि भौतिक रूप से असंभव भी हो जाएगा।
0: यह तो बहुत ही व्यवहारिक सोच थी, लेकिन फिर यह एक आर्थिक समुदाय से यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन कैसे बन गया?
1: ये यात्रा बहुत लंबी रही है दोस्तों। 1957 की रोम की संधि यानी ट्रीटी ऑफ रोम के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी बना। धीरे धीरे इसमें अन्य देश जुड़ते गए, जैसे ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क और बाद में दक्षिणी और पूर्वी यूरोप के देश। 1992 की मास्टर ट्रीटी ने इस वह रूप दिया जिसे हम आज यूरोपीय संघ के रूप में जानते हैं। इसमें एक साझा मुद्रा यानी यूरो, साझा नागरिकता और साझा विदेश नीति की नींव रखी गई।
0: वाह, ये तो बात बहुत अच्छी है। तो क्या यह जो दिन है वो यूरोप दिवस उस पूरी प्रक्रिया का जश्न है?
1: बिल्कुल सुनंदिनी, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और इतिहास वाले देश एक साथ मिलकर एक सुपरा नेशनल इकाई बन सकते हैं। तो दोस्तों, बातें तो जारी रहेंगी, लेकिन आइए सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: बातों के बाद शिवांगी, तुम्हारी बातों से मुझे यह समझ आया कि यूरोप दिवस केवल इतिहास को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि यह भविष्य के संकल्प का दिन है। यह याद दिलाता है कि सहयोग हमेशा संघर्ष से बेहतर होता है।
4: बिल्कुल सही कहा सुनंदिनी। सुमेर ने जो सपना देखा था वो आज करोड़ों लोगों के लिए हकीकत है। एक ऐसा महाद्वीप जहाँ सीमाओं पर पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, जहाँ युद्ध बीते कल की बात हो गई है। हालांकि चुनौतियां बहुत है, लेकिन ये यूरोपीय प्रयोग पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है।
3: शुक्रिया शिवांगी, आज की इस चर्चा ने मेरे नजरियों को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब जब मैं अगली बार यूरोपीय झंडा देखूंगी तो मुझे उसके पीछे का गहरा संघर्ष और शांति का वह लंबा यात्रा याद आएगा।
4: मुझे बहुत खुशी है कि हमने आज इस टॉपिक पे बातचीत की, अपने श्रोताओं को जानकारी दी और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि आज शनिवार है सुनंदिनी, तो क्या है आज के हमारे खास सेगमेंट में?
3: शिवांगी, मैं ना 2 दिन पहले पटना के साइंस सेंटर गई थी और वहाँ के 3D एनवायरमेंटल शोज मुझे बहुत पसंद आए।
4: सच में मैं तो बचपन में गई थी, लेकिन मैंने सुना है इधर साइंस सेंटर तो काफी कुछ बदलाव आया है।
3: और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पे अब समर कैंप भी लगने वाला है, जहाँ जाने आने की फैसिलिटीज भी हैं।
4: हाँ, सुना तो मैंने भी है कि इस बार वहाँ समर कैंप बहुत बड़े पैमाने पे लग रहा है, तो क्यों ना इस बारे में अपने श्रोताओं को हम इसके बारे में और भी जानकारी दे ताकि वो आने वाले समर कैंप में हिस्सा ले सकें।
3: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं साइंस सेंटर के केंद्र के प्रमुख श्रीनु अप्पिकोडा और आकाश की बातचीत।
5: विज्ञान मानव के बौद्धिक विकास का प्रमुख आधार रहा है। हमने कई बीमारियों पर विजय भी विज्ञान की बदौलत हासिल कर लिया है। आज पोलियो से भारत पूरी तरह से मुक्त हो चुका है और इसके साथ ही कैंसर और कई बीमारियों की हमने इलाज ढूंढने में सफलता हासिल की है। और खासकर बच्चों में विज्ञान को लेकर के उनमें वैज्ञानिक चेतना का विकास कैसे हो, इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आज जुड़ चुके हैं श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना के केंद्र प्रमुख श्रीनु अप्पिकोडा। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
6: आपका धन्यवाद।
5: सर, सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे पटना के साइंस सेंटर में जो फैसिलिटीज हैं, खास करके बच्चों के साइंटिफिक डेवलपमेंट को, वो किस प्रकार से है और लगातार इसमें आप लोग क्या इनोवेशन कर रहे हैं?
6: जैसा आप सभी लोगों को जानता है कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र 1978 लेकर वैज्ञानिक सोच बच्चों के आराम जनता का पास लेके जाने के लिए कई सारा प्रोग्राम साल भर करते रहेगा। केंद्र में कई सारा गैलरीज भी है।

0: और फिल्म शोज भी है। अभी हमारा पास अभी 5 मुख्य गैलरीज भी है, जैसे ओशियन के ऊपर एक गैलरी है, मिरर इमेज के ऊपर एक गैलरी है, इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट के ऊपर एक गैलरी है, छोटे बच्चों खेलने के लिए एक गैलरी है, इसका गैलरी का नाम है चिल्ड्रन गैलरी है। गैलरी के अलावा भी हमारा पास अभी एक 3D फिल्म थिएटर है और एक थिएटर है, उसको बोलते हैं साइंस ऑन स्फीयर थिएटर। इसका साथ ही साथ अभी ये डिजिटल प्लानिटोरियम भी है, उसमें भी एक फिल्म शो चलाता है, ये भी साइंस का ऊपर ये फिल्म शो बनाता है। ये साइंस फिल्म शो भी जैसे कुछ अच्छा से विजुअल इफेक्ट भी देगा और साइंस का जानकारी देगा, ताकि फिल्म देख रहे हैं उसका साथ ही साथ वो साइंटिफिक सोच थोड़ा बढ़ाने के लिए हम लोगों कोशिश करेंगे। इसका साल बार अनेक कार्यक्रम हम लोगों आयोजित करते रहेंगे, जैसे अलग अलग साइंटिफिक प्रामुख्यता दिवस है, जैसे नेशनल साइंस डे है, एनवायरमेंटल डे है, अर्थ डे है। इस दिन में हम लोगों क्या करते हैं, जैसे साइंस क्विज, जैसे कुछ क्रिएटिव कंपटीशन, जैसे पेंटिंग कंपटीशन, वैसे अलग अलग प्रोग्राम हम लोगों करता है। इसका उद्देश्य भी वही है, वैज्ञानिक सोच बढ़ाने के लिए तो हम ये प्रोग्राम करता है।
1: सर, हमारा दूसरा सवाल आपसे होगा कि बच्चों में जो वैज्ञानिक सोच बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, आप इस केंद्र का जो रोल है उसे किस रूप में देखते हैं? अगर हम साल भर के आंकड़ों की बात करें तो लगभग कितने बच्चे और कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ?
0: देखिए जी, ये सेंटर में विजिटर का साल भर में करीबन 4 लाख तक विजिटर विजिट करेगा, उसमें स्कूल बच्चे होगा, आम जनता भी होगा, जो बड़ी बड़ी दूर में रहता है उन लोगों सेंटर में विजिट नहीं कर पाएंगे। सो ऐसा नहीं है मतलब उन लोगों के पास हम लोगों पहुंच नहीं रहे, उसके लिए भी हमारा पास और एक फैसिलिटी है। हमारा पास ये मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस है, हमारा पास अभी 3 बस है, ये 3 बस में अलग अलग साइंस कॉन्सेप्ट में मतलब उसमें एग्जिबिट माउंट किया गया। एक एक बस का, एक एक बस में 20 एग्जिबिट्स उसी का कॉन्सेप्ट का ऊपर, मतलब साइंस एग्जिबिशंस में। ये बस ये बिहार पूरा स्टेट में अलग अलग जिलों में जाएगा, गांव में जाएगा, स्कूल में जाएगा, जाके उधर 3-4 दिन वो बस उधर रुकेगा, विद्यार्थी लोगों उधर जाके बस के पास जाके एग्जिबिट्स इंटरेक्टिव नेचर में हैं, बच्चों खाली उसको देखेगा नहीं, उसका टच करके कुछ इंटरेक्ट वे में उसको सीखने का मौका मिलेगा।
1: सर, ये बहुत शानदार बात आप बता रहे हैं कि जो बच्चे सुदूरवर्ती रिमोट एरियाज में हैं तो वो अगर इस सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके लिए बस के थ्रू साइंस एग्जीबिशन आप लोग लगाएंगे, ये प्लान कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा और बताएं कि ये कब से आपने सोचा और ये क्या अभी पायलट प्रोजेक्ट में है या काम इस पर हो चुका है?
0: ये सेंटर शुरुआत, ये तो मोबाइल साइंस एग्जीबिशन है, शुरुआत का कुछ साल का बाद से ये शुरू हुआ, काफी लंबा साल से ये चल रहा है, साल बार एक्चुअली ये प्रोग्राम चलते रहे हैं। कभी क्योंकि ये बस जाता है स्कूल विद्यार्थी लोगों के पास जाता है, जब भी उनको छुट्टी वगैरह होता है, जैसे भी मान लीजिए समर वेकेशन वगैरह को, उसी टाइम बस वापस आ जाएगा, होने के बाद दूसरा जिले में लगातार साल बार ये बस घूमता रहेगा। तो एक बस अगर मान लीजिए एक एक जगह में हो गया तो वो बस, हमारे पास 3 बस है तो दूसरा बस जाएगा उसी जिला में करके, ये तो कंटिन्यूस प्रोग्राम है, ताकि जो आदमी सेंटर विजिट नहीं कर पा रहे हैं वो उधर जाके एटलीस्ट ये बस को देख के साइंस का थोड़ा जाने
1: जी
0: का पता
1: बिल्कुल,
0: करें।
1: मैं बिल्कुल सर, हमारा अगला प्रश्न आपसे होगा कि जो बच्चे अभी गर्मी की छुट्टियों के मौसम में साइंस सेंटर विजिट करते हैं या उनके माँ बाप उन्हें यहाँ लेकर आते हैं तो क्या खास उन्हें यहाँ देखने को मिलेगा? कुछ क्या खास व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई है?
0: तो हम भी साइंस सेंटर भी सोच रहे हैं विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा से निकालने के लिए, हम एक समर वेकेशन हॉबी कैंप लेकर आ रहे थे श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। इस कैंप में अलग अलग सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सारा सब्जेक्ट्स में 3 दिन का वर्कशॉप हम लोगों करवा रहे हैं। वो वर्कशॉप भी सुबह में एक एक शिफ्ट में चलेगा, सेकंड हाफ में और एक वर्कशॉप चलेगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट है 11 बजे से 1:30 बजे तक, इवनिंग शिफ्ट है 2 बजे से 4:30 बजे तक, और 24 मई से लेकर जून 6 तारीख तक ये कैंप आयोजित करने वाले हैं।
1: जो ये समर वेकेशन का कैंप हो रहा है ये किस क्लास के बच्चों के लिए होगा और इसकी क्या कोई फीस रखी गई है और कोई कांटेक्ट नंबर या वेबसाइट है जहां से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके?
0: ये वर्कशॉप डिजाइन किया गया क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक, ये बच्चों लोगों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी है, उसमें नॉमिनल फीस भी है सारा वर्कशॉप में। रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मैं जैसे फेसबुक में जा सकते हैं, वेबसाइट में www.skscience

0: center.org, उसमें जाने से समर कैंप्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। जो लोगों को असुविधा हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में, उन लोगों में सीधा सेंटर आ सकता है कैंप शुरू होने से पहले, मतलब मई 24 से पहले उसके इधर आके ऑफलाइन में फॉर्म सबमिट भर के सबमिट करके पूरा प्रोसीजर, पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट करने से उसको सीट कंफर्म हो जाएगा। उसका साथ ही साथ पूरा वर्कशॉप का जैसे इंस्ट्रक्शन होगा, इंस्ट्रक्शन में दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए।
1: सर, साइंस की दुनिया में अगर हम बात करें अभी तो एआई और रोबोटिक्स को लेकर के काफ़ी हाइप है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ये भी आपने कुछ डिज़ाइन किया है अपने इस कैंप में।
0: ये आजकल ये जमाना है, तो इसका अभी जैसे मैंने बोला था अलग अलग सब्जेक्ट का ऊपर ये साइंस समर वेकेशन हॉबी कैंप लगा हुआ है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स का और आर्डिनो के ऊपर भी हम लोगों कैंप्स रखा हुआ है। जैसे आर्डिनो में कोड्स जनरेट करके सेंसर को मतलब मैनुअल ना करके ऑटोमेटिक जैसे ऑपरेट करता है ऐसे है, जैसे वाटर लेवल इंडिकेटर वो भी एक बना सकता है जैसे सर्किट यूज करके, जैसे पानी टैंक उधर पानी पूरा भरा हो जाएगा टैंक में, इधर एक लाइट जलेगा इंडिकेटर देके तो हम ऑटोमेटिकली बंद कर सकते हैं। सो जैसे बच्चों ऐसे मतलब ये बेसिक्स चीज़ अगर सीख के, ये तो अभी समर कैंप में ये प्रोग्राम हम लगा हुआ है, तो आने वाला टाइम में भी नेक्स्ट दूसरा कॉन्सेप्ट में ये कर लेकर हम लोगों वर्कशॉप प्लानिंग कर रहे हैं।
1: सर, जाते जाते हमारा आखिरी सवाल आपसे होगा, अभी जो हमारे श्रोतागण हैं उसमें हम बच्चे भी शामिल हैं, अभिभावक भी हैं, विभिन्न वर्ग के श्रोतागण हैं, क्या अपील होगा उनसे आपका और उनको क्या संदेश देंगे आप?
0: श्रोताओं लोगों के लिए हमारा अनुरोध यही है कि थोड़ा टाइम निकाल के एक बार श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में घूमने के लिए आने के लिए हमारा अनुरोध है। खाली जानकारी के रूप में नहीं है वो, अभी इंटरैक्टिव वे में, जॉयफुल वे में, इधर मजा के साथ ही उसको जानकारी सीखने के लिए एक मौका मिलेगा। जैसे मैंने शुरुआत में मैंने बोला था अलग अलग साइंस शो है, स्पेशल शो है साइंस मैजिक शो, उसमें साइंस का ऊपर एक्सपेरिमेंट्स का मैजिक तरीके से फन तरीके से मतलब डेमोन्स्ट्रेशन होगा। अगर विद्यार्थियों में अगर साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो अगर पेरेंट्स और हम लोगों भी उनको बहुत मदद करना, एनकरेज करना, क्योंकि हम लोगों भी देख रहे थे बहुत सारा समस्याओं की समाधान देने वाला साइंस का रूप में है। हम लोगों जैसे इस रिसेंटली हम लोगों विटनेस किया कोविड पैंडमिक, उस पैंडमिक से हम लोगों में अभी बच गया बहुत सारा, मेडिकल टेस्टिंग से दवाई है जैसे वैक्सीन है सभी, जैसे हमको कैसे साइंस कैसे हमको हेल्प किया था। जैसे अभी भी अभी दुनिया में बहुत सारा समस्या अभी है, समस्या को परिष्कार के लिए हम लोगों में अभी सो रिसर्च कर रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे पोल्यूशन है, इन्फेक्टेड डिजीज है। स्टूडेंट्स अगर साइंस को पसंद कर रहे हैं तो उनको हम एंकरेज करने से इन्हीं बच्चों आने वाले टाइम में बहुत वैज्ञानिक में मतलब साइंटिस्ट बनेंगे। तो हमारा फाइनल अनुरोध यही है कि आप लोग आइए साइंस सेंटर विजिट कीजिए।
1: जी जरूर। तो श्रोताओं की जैसा आपने जाना कि आप श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र यहाँ पर आ सकते हैं अपने बच्चों को लेकर, उनको विज्ञान की दुनिया का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था की गई है, उनकी वैज्ञानिक चेतना का विकास भी होगा और साथ ही साथ वे बाहरी दुनिया को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। हम समझते हैं कि इस बातचीत से हमारे श्रोतागण जरूर लाभान्वित होंगे।
0: आपको भी आकाशवाणी पटना को बहुत धन्यवाद जी।
2: श्रोताओं, अभी हमने सुना ये वार्ता श्री कृष्ण साइंस सेंटर के प्रमुख श्रीनु अपिकोंडा और आकाश की गई बातचीत, जहां हमने जाना कि बच्चों में कैसे वैज्ञानिक चेतना को विकास कर सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं।
3: हाँ, तो श्रोताओं आप भी जाइए साइंस सेंटर पटना के और वहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए कि वहाँ क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं और होती हैं, और अपने बच्चों के मन में नए विचार को पैदा करने के लिए, विज्ञान को जानने के लिए एक अलग दिशा दीजिए।
2: आइए इसी के साथ सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अब वक्त हो गया है हमारे कार्यक्रम के उस सेगमेंट का जिसका इंतजार आपको बेसब्री से रहता है, यानी रोचक तथ्य। हाँ सुनंदनी, और कल द मदर्स डे मनाया जाएगा, तो क्यों ना आज के रोचक तथ्य में हम दुनिया के सबसे प्यारे रिश्ते के बारे में थोड़ी बातचीत कर लें।
1: हाँ, एक ऐसा रिश्ता जहाँ बिना कहे बातें समझ ली जाती हैं और बिना शर्त के प्यार मिलता है।
0: तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं मदर्स डे की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी? इसे शुरू करने का श्रेय अन्ना जार्विस नाम की महिला को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी माँ को सम्मान देने के लिए इस दिन की शुरुआत की।
1: और धीरे धीरे ये दिन पूरा दुनिया मनाने लगा। हालांकि माँ के लिए प्यार जताने के लिए कोई एक दिन काफी नहीं होता, लेकिन फिर भी

0: दोस्तों, घड़ी ने इशारा कर दिया है और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई राय है तो भी हमें ज़रूर बताएं feedback@patna@gmail.com पर। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए मगही कार्यक्रम मागधी।

साथे साथ एगो कहानी भी सुनबै, करीमन चाचा के बेटी कहानीकार होथिन अनुपमानंद। परसू परसू माने 7 मई 7 मई के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जयंती हले। ई बंगाल पुनर्जागरण काल के कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक, चित्रकार, माने ढेर मनी रचनात्मक प्रतिभा के मालिक हलखिन। 1913 में टैगोर कोनो श्रेणी में नोबेल पुरस्कार जीते वाला पहला भारतीय हलखिन आ भारत के राष्ट्रगान के रचयिता भी हलखिन। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 20वीं सदी के पहला जे समय हले, ने पूर्वार्ध हले, प्रासंगिक आधुनिकतावाद के माध्यम से जे बंगाली साहित्य हले आ संगीत, एकरा में ई नया रूप दलखिन। गीतांजलि के सुंदर, संवेदनशील, ताजगी भरल कविता के लिखनहार हलखिन, जे खातिर हिनका नोबेल पुरस्कार मिलन हल। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के ई मानद विद्वान हलखिन। ब्रिटिश राज के घनघोर विरोधी हलखिन। चित्र बनाबे के बात रहे, रेखा चित्र के बात रहे, ग्रंथ आ गीत के बात रहे, सब चीज से भरल ई विशाल साहित्यिक कृति के आगू बढ़ेलखिन। शिक्षा के संबंध में हिनकर अपन आदर्श हलन, अपन विचार हलन, ओकरा लागू करे लेल विश्व भारती विश्वविद्यालय के स्थापना कैलखिन, अशांति निकेतन संस्था के शुरुआत कैलखिन। हिनकर महत्वपूर्ण रचना में गोरा, घरे वायरे, गीतांजलि आ सर्वप्रसिद्ध जनगणमन, अमार सोनार बांग्ला रचना के मानल जाए। टैगोर जे हलखिन से कठोर शास्त्रीय रूप के त्याग के, माने आम जन के जे भाषा है ओकरा में कला के समाहित करलखिन। जानल मानल शिक्षाविद के रूप में ई प्रकृतिवाद के समर्थक हलखिन। कहल जा है कि शांति निकेतन में गाछ वृक्ष के सानिध्य में बचपन के भावनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास करल जा हले। 7 अगस्त 1941 में हिनकर मृत्यु हो गलन हल। हमने के बातचीत जारी रहते तो सबसे पहने प्रभु के नाम लहिए आ ई लोक भजन सुनहिए कलाकार रमेश कुमार प्रभात आउ साथी से।

माघधी सुननिहार के नीलाद्री के प्रणाम। आए हन शनिचर सुननिहार सब आ हमने आगलियन है अपने लेल माघधी कार्यक्रम के लेके। सबसे पहिने आए प्रसारित होबे वाला कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दे दहियन। हमने दू दिन पहले हले रविन्द्रनाथ टैगोर के जयंती, त गुरुदेव के याद करबे। साथे साथ आए है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महाराणा प्रताप के जयंती। हमने लोकगीत सुनबे रमेश कुमार प्रभात और साथी से।

0: अभी सुनलखिन लोक भजन आ आई है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जयंती। अब जो अंग्रेजी कैलेंडर है ओकरा मुताबिक 9 मई 1540 के कुंभल घर राजस्थान में हिनकर जन्म होले हल। हालांकि ग्रेगेरियन आ विक्रम संवत के मुताबिक 10-20 दिन आगू पीछू होते रहे। मेवाड़ के महान योद्धा हलखिन। हिनकर शौर्य आ स्वाभिमान के कहानी बड़ से लेके बुतरुअन तक सबके सुनावल जाए है। हिनका मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ बहादुरी भरल संघर्ष के लिए याद करल जाए है। आय के दिन राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश भी रहे। उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा हलखिन। हिनकर नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम आओ दृढ़ प्रण के लिए अमर है। ये मुगल बादशाह अकबर के अधीनता मरते दम तक नहीं स्वीकार करलखिन आ लंबा संघर्ष करलखिन। अंतिम में अकबर महाराणा प्रताप के अपना अधीन नहीं कर पैलखिन। मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल महाराणा प्रताप के मुगल बादशाह अकबर से संधि आ दोसर जो राजनीतिक प्रस्ताव होवे है एकरा माने लेल बहुत अनुरोध करलखिन। लेकिन महाराणा अपन विचार पर अडिग रहलखिन। ई लेल हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध भी होले। महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक के साथ महाराणा पहाड़ी में शरण ले ललखिन। युद्ध में हार जीत तक नहीं होले तय, लेकिन एक दिन में महाराणा प्रताप के बहुत ज़्यादा सैनिक मारल गेलखिन। एकर बाद ई छापामार तरीका से पहाड़ के सहारा लेके युद्ध के जारी रखलखिन आ 24,000 सैनिक के अपना साथ खाए पिए के उपाय कैसों कैसों करते रहलखिन। 1585 में उदयपुर समेत 26 को महत्तम स्थान पर फिर से ही अधिकार कर ललखिन। तो महाराणा प्रताप के हमनी के देश आए नमन करे है। अब समय हो गलन है ये कहानी पाठ के। करीमन चाचा के बेटी कहानीकार हथिन अनुपम आनंद।
1: मुन्ना के पापा अभी ले सुतले हा, 8 बज गेलवा। अपने तो रोज 4 बजे उठ जा हला। आज इतना देर तक काहे

सुतल, कोई बात है? हाँ जी, अभी तो सुते के कारण है, काहे कि देर रात तक नींद ना आयल। बड़का बेटा बिंदा के पढ़ावे लिखावे में ढेर खर्च भेल हल। ओकरा बीटेक करवावे ला देहरादून भेजली हल। ओकरा 4 साल के पढ़ाई में बड़ा खर्च भेल हल। आज ऊ पूना में नौकरी कर रहल है। शादी करला भी 3 साल हो गेल। पोता लेके मात्र 3 गो प्राणी है। ओकरा 60,000 वेतन मिला है, लेकिन 1 रुपया अब न भेजे। शादी के पहले हरदम रुपया भेजित रहल, जेकरा से कर्जा के पूर्ति होइत रहल और परिवार चलावे में हमरा कोई दिक्कत न होवल। लेकिन आज ऐसा समय गुजरी थे कि हम कर्ज में फंस गेली। छोटका बेटा चंदा और बेटी कविता के पढ़ाई लिखाई जारी है। दोनों के खर्च और तोर बीमारी के खर्च से हम तबाही। बिंदा के पढ़ावे में 1 बीघा खेत इजारा रखल गेल से आज तक न छूटल। लगित है कि वो खेत सदा ला बिक ही जात। सुनी था जी, चिंता करे के कोई बात नहीं। चिंता करे से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हमने जितना में ही उतने में रह। बिंदा के कोई चिंता न है तब हमने का करम? वो बीटेक कैले है, खुद समझदार है। ओकरा समझावे के जरूरत है? ओकरा 60,000 रुपया 3 गो में खर्च हो जा है। वो अपन पत्नी के फेर में है। जे वो कहत से वो सुनत। हमनी के बात पर ओकरा कोई असर न है। समय के फेरा है पर ओकरा कोई असर न है। समय के फेरा है। शादी के बाद मर्द पत्नी के बाद ज्यादा माना है। परिवार लोगन के कम आदमी स्वार्थी हो गेल है। वो परिवार के लेके आगे बदल न चाह है। वो परिवार के अपना बाधक समझा है। ओकरा लगे है कि परिवार के लेके चले में हम पीछे पड़ जाम। बिंदा अपन पत्नी और बउआ के ही परिवार समझा है। भाई बहिन माय और बाप परिवार में गिनती न करे। जौन परिवार तोरा बीटेक करवा देल, शादी विवाह करवा देल, ओकरा परिवार में गिनती न है। समय के फेरा है ना। मुन्ना के पापा चिंता मत कर, आगे के बात सोचल जाए। अब का करे के चाहिए? हमर तो राय है कि कविता और चंदा दोनों के पढ़ाई बढ़िया से करावल जाए। खेत बिके तब बिके। बात तो तू सही कही था, लेकिन सभे तो खेत बिकी जात तब का करम? पढ़ाई लिखाई करावे से काम न चलत। पढ़ाई लिखाई के बाद कविता के शादी में ढेर खर्च होत। एकरा बारे में सोची था जी? अपने ढेर बात सोचही। वर्तमान देख, भविष्य के चिंता करे के जरूरत न है। वर्तमान अगर ठीक हो जात तब भविष्य भी ठीक हो जात। वर्तमान के हाथ से न जाए द। पढ़ाई लिखाई बड़का धन है कि आगे पढ़े के माध्यम है। यही माध्यम में से सफलता के अंतिम शिखर तक चढ़ल जा सका है। कविता के माय, तू हमर दिमाग के पट खोल देला। अब हम कोई चिंता न करम। कविता के और चंदा के जरूर पढ़ा, चाहे जितना खर्च होवे, चाहे जितना हमनी के कष्ट सहे पड़े। माय बाप के फर्ज होवे कि बेटा बेटी आगे पढ़े, सुख में जीवन व्यतीत करे, बेटा बेटी खुशहाल रहे। बिंदा के पढ़ावे में 1 बीघा खेत इजारा रखल गेल हल। अगर ई दोनों के पढ़ावे में खेत बिक भी जाए तब कोई चिंता के बात न है। कविता IAC में और चंदा मैट्रिक में पढ़ रहा है। दोनों भाई बहिन पढ़े में तेज तरार हत। दोनों के प्रतिभा देख के गांव के लोग अचरज कर रहत। सब कहत कि करीबन काका के बेटी और बेटा प्रतिभा वाला हत। गांव में तो ढेर अमीर के बाल बच्चा हत, लेकिन ऐसन प्रतिभा कोई में नहीं। गांव घर में करीबन काका के बड़ चर्चा होवे है। लोग कहत कि करीबन काका के दिल दरिया है, उनकर सोच महान है। अपन बच्चा के पढ़ावे ला खेत भी बेच देलन, पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देवत। गांव के लंद फंद से कोसों दूर रहत। खेती बाड़ी जम के करहत। 3 कट्ठा खेत में सब्जी लगावहत। तरह तरह के मौसम के अनुसार सब्जी लगावहत। सालों अपने खेत के अपने उपजावल सब्जी खात, बचला पर बेच भी देहत।
चंदा।

आव कविता भी समझा है कि हमर माय और बाबू आर्थिक स्थिति से गुजरी थत। हमनी के पढ़ाई लिखाई में खर्च से बाज ना आवी थत। ई लेल दोनों भाई बहिन मन लगा के पढ़ाई करी थत। ई भी समझ रहल है कि बड़का भाई के पढ़ावे लिखावे में ढेर खर्च भेल है। नौकरी लगला के बाद भी पापा के पास पैसा न भेजी थत। यही कारण है कि पापा आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गया। कविता इंटर के परीक्षा में जिला टॉपर आयल। ई समाचार समूचे गांव में फैल गया। कविता के माय और बाबू के खुशी के ठिकाना न रह। दोनों व्यक्ति कविता के बधाई देलन। बेटी आज हमर खुशी के ठिकाना न है। तोर उपलब्धि से हम बड़ खुशी। अब तोर आगे के भी पढ़ाई जारी रहत। कविता के नाम पटना कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स में लिखा गया। पढ़ाई लिखाई चलते रहल। कविता के पापा करीबन 3 साल तक पूरा खर्च जुटाबित रहलन। खर्च जुटाबे में तनिको पीछे न रहल। कविता मन लगा के पढ़ाई करल, जेकरा परिणाम भेल कि पटना कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स में टॉपर रहल। कविता के प्रतिभा देख के लोग कायल हल। वही कॉलेज में गुंजन नाम के एगो छात्र हल, जे अंग्रेजी ऑनर्स में सेकंड टॉपर हल। गुंजन अपन माय बाप के दुलरुआ बेटा हल। रंग रूप सहन के साथ साथ प्रतिभा वाला विद्यार्थी हल। लंद फंद से लाखों दूर रहा हल। गुंजन के पिताजी अमीर आदमी हलन। उनका कोई चीज में कमी न है। जर जमीन से तो भरपूर तो है ये हत। साथे साथे सरकारी स्कूल के काम भी करत। मुन्ना के पापा कविता के पढ़ाई लिखाई तो होते है, लेकिन शादी विवाह के बारे में भी सोचित है। लड़का खोजे में भी समय लगा है। अब वहीं से ध्यान रख। अगर कहीं योग्य लड़का मिल जाए तो कविता के हाथ पियर कर ही देवे के जरूरत है। काहे कि जवान बेटी के समय के अनुसार शादी कर देवे के जरूरत है। पैसा कौड़ी के भी व्यवस्था करे पड़त। काहे कि हमनी के हाथ में एको पैसा कौड़ी न है। जितना पैसा कौड़ी है सब पढ़ाई लिखाई और घर चलावे में खत्म हो जाते है। भगवान हमनी के कैसे इज्जत बचैतन, ये तो भगवान के हाथ में है। कविता के माय चिंता करे के कोई जरूरत नहीं है। सब इज्जत भगवान के हाथ में है। हमनी के काम है कर्म करना। फल तो भगवान के हाथ में है। बेटी कविता मेहनत करके पढ़ी थे। पटना कॉलेज में अंग्रेजी प्रतिष्ठा में टॉपर करना कोई आसान है। ओकरा मेहनत के परिणाम है। हमारा पूरा विश्वास है कि बेटी आगे चल के कोई पदाधिकारी बनत और हमनी के दुख बलाए खत्म हो जाए। हम यहू जानी थी कि कविता के माय कि तोरा गांव घर के लोग कह भी होत कि कविता के शादी कहिया करम। ऊ बीए पास कर गेल। समय बड़ा खराब है। जवान बेटी ढेर दिन तक रखना ठीक न है। गांव घर के लोग तरह तरह के तोरा कुछ कह होतन। तोरा खराब भी लगा होत। तोर बेटी कविता होनहार है। तोर कहला पर जर जमीन बेचकर ओकरा पढ़ा रहली है। चाहे कविता होवे या चंदा दोनों के एके समान देखी थी। बेटी के बेटे समझी थी। जितना बेटा के दुलार उतने बेटी के भी दुलार दी थी। दोनों भाई बहन के कोई भी कमी न होवे देली। बिहार सेवा आयोग से नियुक्ति निकलल, जेकरा में कविता और गुंजन दोनों फॉर्म भरलन। कविता और गुंजन दोनों मिल के प्रतियोगिता के तैयारी जम के कैलन। परीक्षा भेल। कुछ दिन के बाद परीक्षा के परिणाम आयल। दोनों के सफलता मिलल। कविता इंटरव्यू भेल। इंटरव्यू में भारी सफलता मिलल और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति भेल। गुंजन भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति भेल। कविता और गुंजन खुशी के ठिकाना न रह। कविता और गुंजन दोनों एक दूसरे के पूरक हत। दोनों में अटूट संबंध हो गया, लेकिन दोनों के माए बाप के पता न है। दोनों अलग अलग प्रखंड में नियुक्ति हो गेलन। कविता के गांव में शोर मचल है। करीमन काका के बेटी कविता प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गेल। ई गांव के शान शौकत बढ़ा दिल। बेचारे करीबन काका बड़का बेटा के पढ़ा लिखा के नौकरी लगा दिल।
लेकिन वो बेटा

0: अपन परिवारे देखे में रह गेल। आर्थिक संकट गरीबन काका के ढेर भेल, लेकिन पढ़ाई लिखाई में पीछे न हटल। भले पढ़ाई लिखाई के चलते कुछ खेत भी हटावे पड़ल, लेकिन पीछे न हटल। गांव के ढेर लोग सोचे लगलन कि बेटा रहे या बेटी, सबके पढ़ावे के जरूरत है, सभे में प्रतिष्ठा है। आज इनकर बेटी प्रखंड विकास पदाधिकारी बन के दिखा दिल कि बेटी में भी प्रतिभा है, समूचे गांव के आंख खोल दिल।
1: अभी अपने सुनलखिन करीमन चाचा के बेटी कहानी, कहानीकार हलखिन अनुपम आनंद। आ अब हमने बढ़ते हुए सुनइए ई लोकगीत पूर्वी रमेश कुमार प्रभात आओ साथी से।

तऽ अपने ई निमन निमन लोकगीत सुनलखिन रमेश कुमार प्रभात आ साथी से अभी निर्गुण सुना रहलखिन हली, हिनका दही धन्यवाद आ कहानीकार अनुपम आनंद के भी धन्यवाद कहानी पाठ लेल। आ अब हमनी के समय ओरिया रहलन है तो विदा दथिन, फेर मिलबन, प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे मगही कार्यक्रम मागधी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से बस थोड़ी देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

अनूप कुमार के स्वर में आज आप सुनेंगे गीत। कार्यक्रम होगा सुगम संगीत और समय होगा 8:30। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह के स्वर में इस गीत को, जो है फिल्म तड़प से।

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल को अभी आप सुन रहे थे। लीजिए आप सुनिए अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल के स्वर में फिल्म तेरी सांसों में से इस गीत को।

0: अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री संजातः। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्। तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणेन

0: अशेषेहि देशे विवादानां सौहार्दपूर्ण रीत्या निस्तारणार्थं राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विहितम्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं त्रिनिदाद एंड टोबेगो देशस्य प्रधानमंत्रिणा सह मेलनं साधितवान्। अपि च क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य जयपुर नगरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपा दलस्य प्रशासनं संघटितं जातम्। अवधेयं यत् भाजपा दलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15 वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत्। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर एन रविः श्री शुभेन्दु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। 34,200 सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18+ विधायकाः आवश्यकाः आसन्। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्याम दलाभ्याम तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम्। अधुना निर्वाचने 88% आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्। यद्यपि दलनेता सी जी सेफ विजयः द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः, अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति, येन दलस्य संख्या 70+ भविष्यति। तथापि कांग्रेस दलस्य 5 विधायकाः सीपीआई सीपीआईएम वीसीके तथा आईयूएमएल इत्येतेषां प्रत्येकं 2 विधायकौ च मिलित्वा सहायक दलानां कुलसंख्या 13 वर्तते, येन बहुमतस्य मार्गः प्रशस्तो जातः। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणम् अद्य सम्पूर्ण देशे ऐषमः द्वितीय राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोकन्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लंबित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणम् इति वर्तते। श्री पाण्डेयः अवोचत् यत् 23,000+ 25,000+ यावत् 12 राष्ट्रिय लोक न्यायालयानाम् आयोजनं विधाय 26 कोटि प्रकरणानां समाधानम् अभवत्।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित है उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकरः भारत त्रिनिदाद टोबेगो देशानां मिथः पारंपरिक संबंधानां प्रशंसाम् अकरोत्। त्रिनिदाद टोबेगो इत्यस्य विदेश तथा कैरिकॉम प्रकरणानां मंत्रालयस्य समारोहे डॉक्टर जयशंकरेण द्वयोः देशयोः प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधानां अथ ऐतिहासिकतायाः उल्लेखं कृतम्। भारतस्य त्रिनिदाद टोबेगो अमुना सह परंपरागत रूपेण मैत्रीपूर्णाः सम्बन्धाः।

0: पूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे समारोहे सहभागितां करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र नवनिर्मितं ध्यानमन्दिरमपि उद्घाटयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैदराबाद नगरे प्रायः 9,500 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तत्र हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां राष्ट्रीय राजमार्गस्य चतुर्भागपरस्य निर्माणस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। तत्रैव प्रधानमंत्री वारंगल स्थले पीएम मित्रा पार्क इत्येतस्य उद्यानस्य उद्घाटनं करिष्यति। सममेव श्रीमोदी हैदराबाद अत्याधुनिकं कर्करोगपरं चिकित्सालयमपि लोकार्पयिष्यति। अद्य गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य 65-अधिकैकशततमी जयन्ती वर्तते। दिनमिदं उपलक्ष्य शान्तिनिकेतनं विश्वभारती विश्वविद्यालयं अथ बांग्लादेशं समेत्य जगतः अनेकेषु स्थलेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाः समायोजिताः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमितशाहः अथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः पोचिशे बोईशाख इत्येतस्य अवसरे गुरुदेवाय श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन नियामक निर्देशानां तथा च केवाईसी मानकानां उल्लंघनम् उद्दिश्य हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस सहैव यस बैंक इत्यनयोः उपरि मौद्रिक दण्डः आरोपितः। पृथक् पृथक् वक्तव्येषु भारतीय रिजर्व बैंकेन सूचितं यत् तेन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः प्रस्थापितः। अपरत्र यस बैंक इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः आरोपितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामी 5 दिवसेषु केरलम राज्यस्य विविध जनपदेषु विद्युत्पातेन प्रचंड वायुना च सह अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन अद्य राज्यस्य 9 जनपदेषु पीतवर्णीया संचेतना अपि प्रसारिता। श्वः अपि संचेतना तावत् 7 जनपदेषु यथावस्थं कार्यान्विता भविष्यति। प्रतिकूल वातावरणस्य कारणात् मत्स्याजीविभ्यः अद्य केरल लक्षद्वीपतटेषु गमनपरिहारार्थं परामर्शः प्रदत्तः। यद्यपि कर्णाटकतटेषु मत्स्यग्रहणार्थं तादृशः कश्चन प्रतिबन्धः एतावता नैव उपस्थापितः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा तावत् सायं 7:30 जयपुर नगरे आरप्स्यते। अवधेयं यत् अंकतालिकायां राजस्थान दलं चतुर्थे, गुजरात दलं च पंचमे स्थाने स्तः। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: तो मोबाइल पे मत बतियाई,
1: हाँ,
0: नशा मत करी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: नशा करके गाड़ी मत चलाई।
1: हाँ,
0: और सबसे बड़ा बात कि गाड़ी कभी भी तेज रफ्तार से मत चलाई। जितना तेज गति रहेला तो गाड़ी के रोके में अगर कभी जरूरत पड़ल तो ओकरा में दुर्घटना के खतरा बहुत रहेला।
1: देखती नर्चना बहन, सड़क दुर्घटना से दुनिया भर के कितना आदमी विकलांग हो जाथिन और मृत्यु के भी शिकार बन जाथिन। ऐसन मानल जा हई एगो आंकड़ा के मुताबिक कि हर साल लगभग 1.2 मिलियन आदमी मौत के शिकार दुर्घटना से हो जाथिन और लगभग 50 मिलियन लोग घायल भी हो जाथिन। तो विश्व स्तर पर अगर देखल जाए तो 4 में से 1 जे आदमी है या ज्यादा भी या तो पैदल चले वाला या साइकिल से चलावे वाला 4 में से 1 आदमी जिनकर मौत सड़क दुर्घटना से हो जाए। और यही बात के ध्यान में रख के संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनावल जाए प्रतिवर्ष, जे कि अभी मई में, जे कि अभी 8 मई से लेके 12 मई तक है।
0: और देखिए कि दिवस मनावे के, दिवस कहते नहीं, सप्ताह मनावे के एक उद्देश्य भी था। उद्देश्य तो कहे के यह बा कि लोग में जागरूकता होके ताकि सड़क पर चलता नहीं तो तनी ध्यान से चली, नियम के पालन करी, जे सड़क पर चले के सुरक्षा नियम बा ओकर पालन जरूर करी और खतरा से बचल रही। अक्सर देखिला कि अखबार में देख, न्यूज में पढ़े में सुने में आवेला, देखे में आवेला, टीवी में देखी था, हेजा ट्रक आ गाड़ी में धक्का मार दिलस तो साइकिल सवार के मार के भाग गई। तो एह तरह से एकर तो हमरा सबसे बड़का कारण बुझाला तेज रफ्तार।
1: देखा सड़क सुरक्षा जे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जे मनावल जाए वो खास करके ये बात पर जोर दे है कि जे पैदल चलने वाला आदमी हथिन और जे साइकिल से चलने वाले लोग हथिन वो सुरक्षित चल सकथिन। कई भी देखा ये बहुत जरूरी है कि अगर उनका सुरक्षा मिलते, अगर सब हर लोग अगर कुछ दूर पैदल सफर कर रहे हथिन और साइकिल से जा हथिन तो बहुत एक फायदा भी है कि वायु प्रदूषण और बहुत तरह से के एथी से मुक्ति मिल जाए। तो ऐसन में ये ध्यान रखे के चाहिए कि जे लोग भी साइकिल से या पैदल से जा रहे थे उनका वो सुरक्षित रूप से वो अपने गंतव्य तक पहुँचते। अगर ये चीज़ ध्यान में रखल जाती तो हर लोग कोशिश करते हैं कि हम गाड़ी मोटर से ना जाके साइकिल चला के जाए, हम थोड़ा 4 कदम चल के ही हम गंतव्य तक पहुँचे।
0: अब देखिए कि जे भी गाड़ी मोटर पैदल चले वाला के रुआ बात कही नहीं तो पैदल चले वाला खातिर भी सड़क पर बहुत नियम बा। सड़क पर अगर चल रहल बानी तो जे पैदल चले वाला रास्ता बा जकरा की फुटपाथ कहल जाला ओह पर चली, बीच रोड पर मत चली। चाहे साइकिल सवार बाड़न तो ओहो तनी किनारे से अपना जाई। और अगर रोड पार करे के जरूरत बा तो देख करके दाया बाया जेब्रा क्रॉसिंग से पार करें। और देखी कि जे पैदल चले वाला बाड़े तक मोबाइल पर बतियावत मत चली, मोबाइल पर बतियावत चलत रहेला आदमी आ देखी कि पीछे से गाड़ी मोटर हॉर्न मार रहल बा, कोनो बुझाते नहीं के एकदम अपना बतियावे के धुन में जात रहन तो ओ चक्कर में बुझी कि कई बार धक्का लग जाला। और धक्का लगला पर तो देखे कि नुकसान ही नुकसान बा, चाहे तो अपंग हो जाता लोग, चाहे तो मृत्यु हो जाता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहते। तो भाई संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जे कि हम सब 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक मनावे, तो ये मनावे के उद्देश्य ये नहीं कि मतलब सब साल भर हम ना ध्यान दें। ये सप्ताह विशेष रूप से आदमी के जागरूक करल जाए अभियान के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से या कोई कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि लोग बाग ध्यान देथिन कि ना कितना जरूरी है सड़क पर सुरक्षित तरीके से चलना। तो हर आदमी अगर ध्यान रखथिन, काहे कि बहुत तरह दुर्घटना जो पीछे वाला से होवे है, आगे अगर कोई आदमी सुरक्षित चल भी रहे तो पीछे वाला ही, तो हर व्यक्ति के ध्यान से चले के चाहिए, ध्यान से चलावे के चाहिए। और जीवन बहुत कीमती है, ये बात भी ध्यान रखे के चाहिए। और चले के बात अगर हम करे तो अर्चना बहन बहुत दूर दूर से तो अच्छी सब जो हथिन वो सब उड़ के चल के कितना हजार किलोमीटर उड़ करके चला हथिन, जिनका कि हम सब प्रवासी
0: देखिए
1: पक्षी के
0: अब
1: नाम से जाने ही।
0: जिकरा भी देखिए आजकल हमनियों के इंसानों बानी जा तो जहाँ दाना पानी भेटेला ओजा आदमी के घर द्वार छोड़ के जाए पड़ेला कि ना कमावे
1: बिल्कुल
0: खातिर
1: हाँ
0: खाए खातिर तो

0: नमस्ते अर्चना बहन।
1: नमस्कार अंजुला बहन, कहीं सब समाचार निमन बानू?
0: हाँ भाई, सब समाचार अच्छा है। बसते बचाते
1: हम देखत रही कि एकदम धड़पड़ाए लावत रही,
0: लेकिन वह भी ध्यान रखे भाई।
1: हाँ,
0: इधर से कोई धक्का ना मार दे, उधर से कोई पे पे पे करे लगे सड़क पर, तो इधर से हम बच बचा के अच्छा से निश्चिंत से होके चले।
1: ऐसे हूँ, देखी अंजुला बहन, सड़क पर आदमी चलेला तो सड़क पर तो चले में ध्यान तो रखे ही पड़ेला। अब बहुत चीज के ध्यान रखे पड़ेला। अगर हमनी के सड़क पर चल रहल बानी जा तो देख ली दाया बाया, देख ली तब पास करी। आ गाड़ी पे अगर चल रहल बानी

0: लोग एक से एक जगह से दूसरा जगह
1: हाँ
0: जा रहल बा।
1: सही सही बात
0: आ
1: है।
0: वही समझी कि जीव जंतु पशु पक्षी के साथ भी बा, जहाँ
1: हाँ
0: उनका भोजन भेटी, जहाँ रहे के सुविधा भेटी,
1: जहाँ अनुकूल
0: वाता
1: वातावरण
0: हाँ,
1: मिल जाए।
0: तो वही देखे कि वो लोग जाले आवे ले।
1: हाँ हाँ
0: तो साइबेरिया के जे पक्षी बारे क्रेन जिनका कहो,
1: हाँ हाँ
0: उनकर ज्यादातर बुझी कि जाड़ा महीना में उन्हें तो बहुत बर्फबारी होला,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो वो लोग अपना वो मौसम से बचे खातिर दूसरा दूसरा जगह जहाँ जहाँ उनका बुझाला कि वातावरण उनका रहे खातिर बा, वही जा उड़ करके चला बेलन। आ
1: अचानक से
0: ई
1: दिखाई
0: बुझी कि
1: पड़े
0: नजदीक
1: लगे
0: नहीं के
1: बहुत
0: बहुत कई कई 1000 किलोमीटर की दूरी से ई लोग आवेलन, और काहे खातिर कि उनका अपना रहे खातिर वातावरण भेटे और दाना पानी भेटे।
1: तो भाई इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। प्रवासी पक्षी और उनका संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देवे के चाहिए, और यही लगी संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थन देल गई है, और एगो वैश्विक अभियान करल गई है कि प्रवासी पक्षी सबके सामने जे आवे वाला चुनौती है ओकरा बारे में जागरूकता बढ़ाना, और ओकर आवास के संरक्षण लगी जे भी तरह के कार्रवाई हो सके, जे भी तरह के प्रयास हो सके वो करना। यही से अर्चना बहन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आज मनावल जा है।
0: अब देखिए कि इस साल में 2 बेर मनेला, एगो तो आज के दिन मनावल जा रहल बा आ एगो अक्टूबर में मनावल जाला।
1: मने आज के दिन कहे के मतलब मई के दूसरा शनिवार के, हर वर्ष जहाँ तक हमरा मालूम है कि मई के दूसरा शनिवार के ये बनावल जाए।
0: और देखा कि ई वर्ष के संरक्षण विषय वा हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण है। कहे के मतलब कि रउआ भी ध्यान रखी, रउआ देखत सुनत रही कि का हो रहल बा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर बरिस प्रवासी पक्षी आ उनकर आवास के सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ावे खातिर मनावल जाला, और प्रवासी पक्षी के रक्षा और उनकर आवास के संरक्षण खातिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बढ़ावा देवे खातिर भी ई अभियान 2006 में शुरू कैल गई रहे। ई दिवस मनावे के उद्देश्य बा कि पक्षी के अनुकूल प्रथा में स्वस्थ आवास बनावे के, और पक्षी के कांच से टकरावे के, उनकर प्रदूषण कम होके जहाँ वो रह रहल बाड़े,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: और पक्षी खातिर पर्याप्त भोजन स्रोत उपलब्ध करावे के इसकुल शामिल बाय
1: भाई,
0: करन।
1: देखा कि ये जे प्रवासी पक्षी होवथिन एक प्रकृति के एक तरह से कहथिन कि ये दूत होवथिन, एक दूत के तरह, क्योंकि ये पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता के बनाए रखे में इनकर महत्वपूर्ण भूमिका होवे है। तो हमने सबके कर्तव्य है कि इनकर रक्षा जरूर करे के चाहिए, इनकर लगी उचित माहौल बनावे के चाहिए। जैसे देखते हैं कि कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गए है और रात में पक्षी सबके पता न चले और बिल्डिंग से टकरा के वो घायल हो जाथिन, तो ऐसी चीज़ को कि कैसे मतलब प्रबंध करल जाए, कैसे मैनेज करल जाए, उस सब पर बात पर जोर दे करके
0: और
1: प्रवासी
0: अंजुला
1: पक्षी
0: बहन
1: दिवस
0: देखिए,
1: पर।
0: हमनियों के ए पर ध्यान देवे के बा कि उनकर जो प्राकृतिक आवास बा, तो जैसे उन लोग के जंगली झाड़ फूल घास पेड़, तो इस सब के नष्ट मत करी ताकि उनकर आवास बनल रहे,
1: बिल्कुल
0: और वो अपना वहाँ पे अब खाली रहे लन तो दाना पानी तो चाहबे करी। अब
1: बिल्कुल
0: देखी कि प्रजाति अपन बढ़ावे खातिर जो प्रजनन के काम होला, तो वो खातिर भी वातावरण अनुकूल रहेला, तबे उन लोग के
1: बिल्कुल
0: बढ़ती भी बा।
1: तो यही से
0: तो ये
1: पक्षी
0: सब चीज के ध्यान देवे खातिर ई हमनियों के जिम्मेदारी बा, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बा
1: बहुत
0: कि
1: जिम्मेवारी।
0: इनकर भी प्रजाति बनल रहे। देखी कि कई प्रजाति यही से विलुप्त हो रहल बा कि
1: हाँ
0: उनकर आवास में छेड़छाड़ हो गई, उनका रहे में दिक्कत हो रहल बा, तो ये खातिर ई जरूरी बा।
1: बिल्कुल
0: और अब इतना निमन निमन बात के बाद तो एगो गीत सुने के मन रहे।
1: तो भाई सबसे पहले तो बहुत हम सब बनी बात कर ली और सभी जानकारी ले ली कि प्रवासी पक्षी के हम सब के कैसे जीवित रखना है, उनका बचाना है, और यही ये दिवस मनावे के उद्देश्य भी। तो अपने गीत के जब चर्चा करते हैं तो अपने ही बता देते हैं कि अपने कौन से गीत सुनाते थे हम सब श्रोता लोग के।
0: अच्छा तो चलिए हम ही सुनाओ तनी रउआ सभी के कविता चौधरी के आवाज में ये गीत।

0: हाँ तो अर्चना बहन, अभी हम सब सुन डालिए हैं।
1: देवी गीत सुन लीजिए और ये गीत खातिर इनका के धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और आगे अब प्रायोजित कार्यक्रम के समय हो रहल बा,
0: हाँ तो
1: तो
0: सुनिए
1: चलिए।
0: प्रायोजित कार्यक्रम ममता के आंचल।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: नमस्कार, मेरा नाम राजेश है। ममता का आंचल कार्यक्रम शनिवार का दिन है। हम लेकर आ गए हैं एक बार फिर से। एक छोटी सी जानकारी हम दे दें कि ये कार्यक्रम, हालांकि आप जानते हैं, वैसे कपल के लिए, वैसे दंपत्ति के लिए है जिनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। शादी के कुछ साल बीत गए हैं, 1, 2, 3 कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा है और अब बच्चे की चाहत भी है। ऐसे में वैसे दंपत्ति के लिए कार्यक्रम हम लेकर आते हैं कि IVF पद्धति से इलाज करवाया जाए तो बच्चा ठहर सकता है। ये एक सिर्फ छोटी सी बीमारी है, पहले ये पता लगाना होगा क्यों बच्चा नहीं हो रहा है, काहे बच्चा नहीं हो रहा है, और इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर के पास आपको जाना ही होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में एक विशेषज्ञ को हम लेकर आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर श्रद्धा चकय्यार। लगातार वर्षों से हाँ आपके घर आंगन में हम आ रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर, और अब थोड़ा बहुत विश्वास भी जमने लगा है। बड़े बुजुर्गों, आपसे भी हम आग्रह करते हैं कि जो विश्वास आपने हम पर दिखाया है वो आगे भी जारी रहना चाहिए। आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और डॉक्टर श्रद्धा अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, बाकी सब ऊपर वाला जाने। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा का नंबर नोट कीजिए। जिन लोगों ने आज से हमारा ये कार्यक्रम सुनना शुरू किया है, नंबर है

0: 9162562266 ये नंबर है वैसे दंपत्ति। हाँ, गांव देहात में अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बताएं कि जिनके शादी के 3-4 साल हो गए हैं, समझ रहे हैं ना, बच्चा नहीं है, अब घर बैठने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आईवीएफ पद्धति से बच्चा प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो नंबर दिए हैं ना 9162562266 इस पर बातचीत कर लेना है। जहां चुप्पी टूटती है, हम यही चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, जहां चुप्पी टूटती है वहीं इलाज शुरू होता है। नमस्कार, तो हमने आप लोगों को कह लिया, और पिछले हफ्ते हमने एक सवाल उठाया था, उंगली बहू पर ही क्यों उठती है, एक उंगली नहीं उंगलियां कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आज हम उससे भी बड़ा सच सामने लाने वाले हैं। घर में समस्या है लेकिन उस पर बात नहीं होती, जांच हो सकती है लेकिन कोई पहल नहीं करता, सच्चाई सामने आ सकती है लेकिन हम चुप हैं। क्यों भैया, क्यों चुप हैं? और यही चुप्पी इलाज को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। डॉक्टर साहिबा आ जाइए, स्वागत है आपका, और हम सिलसिला शुरू करेंगे सवालों का। अब तक आप समझ गए।
1: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
0: अच्छा बताइए, क्या कारण सिर्फ महिलाओं में है या हम सच्चाई जानने से बच रहे हैं?
1: राजेश जी, ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि कारण सिर्फ महिलाओं में नहीं होता है। आज जितना भी रिसर्च आया है उसमें ये पता लगा है कि अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं ठहरता है
0: जी,
1: 30% कारण उसमें पुरुष होते हैं
0: जी,
1: 30% महिलाएं होती हैं, और 40% कारण अनएक्सप्लेन होता है। यानी कि वो महिला में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है, और दोनों में भी हो सकता है
0: जी।
1: तो बीमारी, अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं ठहर रहा है तो कारण पुरुष और महिला दोनों ही हो सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जांच कराना। अगर आप जांच कराएंगे तभी बीमारी पकड़ेगा, पकड़ाया जाएगा, और तभी इलाज होगा। निसंतानता सिर्फ एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। आज के दौर में मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है
0: जी।
1: और निसंतानता, जैसे पुराने जमाने में अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं ठहरता था, शादी के 3-4 साल हो गए तो फिर नहीं ही ठहरता था, लेकिन आज मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा देन है हर निसंतान दंपति को, और वो है आईवीएफ। तो अगर आप जांच कराते हैं तो फिर आपका इलाज संभव है। हो सकता है दवाई से ठीक हो सकता है कुछ छोटे छोटे प्रोसीजर से ठीक हो, और जिनकी बीमारी बहुत जटिल है उनको आईवीएफ से भी बच्चा ठहर सकता है। लेकिन जरूरत है चुप्पी तोड़ने की, पहल करने की। हर दंपति जिनको बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रहा है, अगर वो पहल करेंगे तो रास्ता जरूर सामने आएगा और उन्हें बच्चा अवश्य प्राप्त होगा।
0: लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपने भी देखा है, जिया है इस चीज को, कि पुरुष जांच की बात जब भी आती है तो चुप्पी छा जाती है।
1: बिल्कुल सच, आज भी जमाना चाहे जितना भी आगे हो गया हो, पुरुष आज भी अपने जांच से हिचकिचाते हैं
0: जी।
1: मैं इसमें एक आपको एक स्टोरी भी सुनाना चाहती हूँ कि
0: बिल्कुल।
1: एक दंपति मेरे पास आए, जहाँ हमने जब औरत का जांच किया तो पता चला कुछ उनको दिक्कत है
0: जी।
1: तो कुछ दिक्कत है लेकिन वो बहुत बड़ा दिक्कत नहीं था, वो इलाज से ठीक हो सकता था। लेकिन जब मैंने पुरुष को कहा जांच कराने के लिए तो वो हिचकिचा गए, और वो बोले कि जब दिक्कत महिला में ही है तो मेरा जांच का क्या जरूरत है। तो मैंने बहुत समझाया, तो किसी तरह से वो जांच के लिए तैयार हुए
0: जी।
1: उनको उनमें भी कुछ दिक्कत पाया गया, लेकिन अच्छी बात है कि दोनों में छोटा छोटा दिक्कत था
0: जी।
1: उन्होंने जांच किया, पहल लिया, और आज उनके पास बच्चा है।
0: एक बात तब यहाँ समझ में आती है कि मतलब बीमारी से ज्यादा हम सच्चाई से डर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ।
1: लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, खासकर पुरुष एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो ये सोचते हैं कि उनमें अगर शुक्राणु की कमी है तो उनके मतलब पुरुष में मेलनेस में कमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है। और पुरुष में अगर दिक्कत है तो इसके लिए एक छोटा सा जांच होता है जिसको हम लोग सिमेन एनालिसिस कहते हैं, यानी कि धात का जांच होता
0: जी,
1: है। लेकिन अगर आप जांच कराएंगे तभी रास्ता खुलेगा।

0: खुलेगा। हम आगे चुप्पी पर ही बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम ममता का आंचल चल रहा है। वैसे दंपतियों के लिए ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, अभी भी बच्चा नहीं है, डरते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं या जिस डॉक्टर के पास जाना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ये मुहिम चला रहा है कि अब चुप्पी तोड़ना है और तभी इलाज शुरू होगा। हम नंबर बता रहे हैं डॉक्टर श्रद्धा चखियार का, नोट कीजिए 9162562266 9162562266। एक और बात, पैसे को लेकर हिचकते हैं, अब यहाँ श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में EMI पर, हाँ EMI की सुविधा है, टुकड़ों में आप पैसा दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4 महीने नहीं 24 महीने तक टुकड़ों में आप पैसा दे सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। बड़े बुजुर्गों, ध्यान से आप इस कार्यक्रम को सुनिए और हमारी और डॉक्टर श्रद्धा की कही गई बात को एकदम चैन से सुनिए और उसे अपने बच्चों तक पहुंचाइए, इनिशिएटिव लीजिए, हम यही कहना चाहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर श्रद्धा अगर हम ये चुप्पी तोड़ दें और दोनों की जांच कराएं तो क्या बदलता है?
1: सब कुछ बदल सकता है। जब कपल साथ में टेस्ट करवाते हैं तो सच्चाई जल्दी सामने आती है
0: जी।
1: ब्लेम गेम यानी कि एक दूसरे पे जो दोषारोपण है वो खत्म हो जाता है
0: जी।
1: सही ट्रीटमेंट जल्दी शुरू होती है और सबसे जरूरी पति और पत्नी का रिलेशनशिप मजबूत होता है
0: जी, जी।
1: क्योंकि अब ये समस्या किसी एक का नहीं होता है, ये एक जर्नी बन जाता है, इसलिए जरूरी है कि कपल चुप्पी तोड़े और इलाज कराएं। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ निसंतानता होती क्या है।
0: बिल्कुल,
1: वैसे दंपति जो एक साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए और उनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है तो उनको कहा जाता है ये दंपति निसंतानता से जूझ रहे हैं, तो जरूरी है अब जांच कराना और इलाज कराना। अगले एक साल आप किन्हीं से भी इलाज कराइए, जांच कराइए और इलाज कराइए। अगर 2 साल में बच्चा ठहर गया तो बहुत अच्छी बात है, हमारे तरफ से भी बधाई उनको। लेकिन अगर 2 साल अब हो चुके हैं और बच्चा नहीं ठहरा है तो जरूरी है कि अब आप निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलें, क्योंकि वो आपका बीमारी बेहतर पकड़ेंगे। और एक चीज मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है उसमें उम्र बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हर महीना उनके बच्चा ठहरने की संभावना घटते जाती है। बच्चे ठहरने की संभावना सबसे ज्यादा जो होती है वो शादी के पहले साल होती है, 80% दंपति को इसी समय बच्चा ठहर जाता है। जिनको 1 साल में नहीं ठहरा उनको अगले 1 साल यानी कि 2 साल में 90% दंपति को बच्चा ठहर जाता है। लेकिन अगर 2 साल में भी नहीं ठहरा तो हर महीना उनको अपने से बच्चा ठहरने की संभावना 3-4% होती है और ये घटते जाती है, यानी कि 5 साल के बाद वो 1% या 0.5% या 0% हो सकता है। इसलिए अगर आप जल्दी इलाज कराएंगे और सही जगह जो उसके विशेषज्ञ डॉक्टर है उनसे इलाज कराएंगे तो आपको बच्चा ठहरने की संभावना बढ़ेगी। चाहे अगर दवाई से भी अगर आपको बच्चा ठहरने की संभावना है वो ज्यादा होगा अगर आप जल्दी इलाज कराएंगे।
0: जी जी।
1: अगर आप कोई प्रोसीजर कराते या IVF जैसा एक कोई ट्रीटमेंट, बड़ा ट्रीटमेंट भी कराते तो इसकी भी सक्सेस रेट जो है वो उम्र पे डिपेंडेंट है। अगर कोई दंपति 30 साल में करा रहा है वो समझ गया है कि उसको अपने से बच्चे ठहरने में थोड़ा दिक्कत है, उनको एडवांस ट्रीटमेंट का जरूरत है और उन्हें IVF का जरूरत है, और अगर वो दंपति 30 साल में अपना IVF कराता है तो उसको बच्चा ठहरने की संभावना काफी ज्यादा है बनस्पत उस दंपति से जो 40-45 साल में अपना IVF करा रहा है। निसंतानता का जो रास्ता है, मतलब जो उनको, मतलब निसंतानता टुवर्ड्स बच्चे का जो रास्ता है वो काफी सरल हो जाता है।
0: डॉक्टर साहिबा ने बहुत विस्तार से बताया कि उम्र पर सारा कुछ निर्भर करता है, बच्चा होना, कितना बच्चा हो सकता है, कितना सक्सेस रेट है, सारी चीज बताए। तो अगर जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बार बार कह रहे हैं जब जहाँ चुप्पी टूटती है वहीं से इलाज शुरू होता है। एक छोटा सा सवाल और हम पूछ लेते हैं चुप्पी पर ही।

0: जहाँ चुप्पी होती है वहाँ दूरी बढ़ती है, और जहाँ बात होती है वहीं से उम्मीद शुरू होती है। डॉक्टर साहिबा, हाँ कि ना?
1: बिल्कुल, इनफर्टिलिटी का इलाज दवाइयों से शुरू नहीं होता है, सच बोलने से शुरू होता है, और सच बोलने के लिए चुप्पी तो तोड़नी पड़ती है। तो अगर कोई दंपति अगर हिम्मत करते हैं, सच बोलते हैं और अपना इलाज शुरू कराते हैं, तो पता चलता है किस कारण से बच्चा नहीं ठहरा, और जब कारण पता चलता है तो इलाज तो हो ही जाता है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ क्या कारण है जिससे बच्चा नहीं ठहर रहा है।
0: जी।
1: कारण औरत भी हो सकती है, कारण पुरुष भी हो सकते हैं, कारण दोनों हो सकते हैं, या कारण अनएक्सप्लेन भी हो सकता है। हो सकता है औरत के अंडाशय में अंडा खत्म हो गया हो, हो सकता है उसके पास इतने अधिक अंडे हो कि उसको अंडा बन के फूट नहीं रहा हो सकता है औरत का नली जाम हो, जहाँ औरत का अंडा और पति का शुक्राणु मिलता है। हो सकता है बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो सकता है पुरुष के शुक्राणु में दिक्कत हो। दिक्कत कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरूरत है चुप्पी तोड़ने का और हिम्मत करके इलाज कराने का। और जब आप इलाज कराएंगे, आपने जब जिस दिन पहला कदम ले लिया, आप समझ लीजिए आप मंजिल तक अवश्य पहुंच पाएंगे।
0: मंजिल तक अवश्य पहुंच पाएंगे, और अब इसमें पैसा भी आड़े नहीं आएगा। हाँ, बड़े बुजुर्गों आप भी सुन लीजिए, पैसा भी आड़े नहीं आएगा, क्योंकि श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में अब सारी सुविधाएं जो है EMI पर है। आप टुकड़ों में पैसा दे सकते हैं, बस आपको चुप्पी तोड़ना है, विशेषज्ञ डॉक्टर के पास आना है। एक बार हम डॉक्टर श्रद्धा का नंबर बता रहे हैं, 9162562266, 9162562266। फोन कीजिए, थोड़ी सी भी शंका है, थोड़ा सा भी अगर ऐसा लगे आपको कि हाँ हम भी सफल हो सकते हैं, और सफल होइएगा, ये तो एक बीमारी है, तो इस नंबर का इस्तेमाल कीजिए। आज की बात याद रखिए, चुप्पी इलाज की सबसे बड़ी दुश्मन है, और पहला कदम है खुलकर बात करना अपनों से, डॉक्टर से। पति पत्नी दोनों साथ आए, दोनों जांच कराएं, और सच्चाई से भागे नहीं। आइए आज एक फैसला करें, चुप्पी तोड़ो, सच को अपनाओ और इलाज की शुरुआत करो। जी हाँ, और मैं आपका राजेश इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर श्रद्धा चकहियार के साथ आज के कार्यक्रम को खत्म करता हूँ, निकलते हैं। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी, पटना 4।
3: अंजुला बहन, अभी हमने का ये प्रायोजित कार्यक्रम सुननी जा ममता का आंचल, और यही के जोरे चौपाल के समय भी ओरी आ गए, तो हमने का खेती गृहस्थी में फिर बत्ती आई।
4: हाँ,
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: अंजुला बहन, खेती गृहस्थी में देखी हर एक किसान भाई के यहाँ कुछ न कुछ गाय गोरु जीव जंतु जरूर लोग पोसेला।
4: हाँ,
3: तो वो चाहे व्यवसाय के रूप में हो खो, चाहे जरूरत के रूप में।
4: वैसे भी लोग ग्रामीण लोग पाला थे इनमें भेड़ बकरी कुछ,
3: लेकिन ये जीव जंतु भी हमनिये के जैसे बीमार हो खेले, सर्दी हो गई, बुखार हो गई, पेट में हमनी के जैसे गैस हो खेला, ये लोग के परेशानी हो जाए।
4: तो बताई थी ना कि हमारा गैस हो गए, इनका तो लक्षण से पहचान।
3: हाँ, आप देखी कि जैसे पेट के बायाउरी के हिस्सा फूल गए, कड़ा हो गए, बकरी के सांस लेवे में हमनी के आज बकरी के कुछ रोग जेबा, तो अफारा रोग के बात करब जाए कि बकरी में हो खेला अक्सर, और एमे लक्षण के बात रुआ कही नी, तो जैसे कि बकरी के पेट के बाया उरी के हिस्सा फूल जाला, कड़ा हो जाला, बकरी के सांस लेवे में कठिनाई महसूस होखेला, बेचैनी होखे लागेला, और मुंह से लार चाहे झाग आवे, आ खाए पिए के छोड़ देवे, तब बूझ जाएं कि बकरी के अफारा रोग भइल बा।
4: तो अर्चना बहन, देखते हैं कि जैसे हमनियो सब ज्यादा खा ले ही, अचर अचर खा ले ही, कुछ खा ले ही, शादी ब्याह में खा ले ही, तो आके कुछ हमरा हम सब के फाकी फाके पड़े है, तब जाके पेट ठीक रहे ना,
3: तो देखिए कि गैस हो जाला, तो पेट फूले लागे ला, हमनियो के तो ऐसे ही हो।
4: तो वैसे ही बकरी भी अगर ज्यादा खा ले हथिन, या पहले से बनल गैस जब कोई

0: कारण से बाहर ना निकले। कितना बार पेटे में जमल गैस, पेट के खाए वाला नली में कोई खाना के अगर कण फंस गेल रह गेल ओकरा में, तो आओ बाहर ना निकले, तो एकरा से बकरी में अफरा रोग बहुत जोर से हो जाए। और कभी कभी चारा उरा में भी अगर कुछ गीला है चाहे
1: हाँ
0: ये है, या अचानक से वो जो चारा खा रहे थे ने ओकरा में परिवर्तन कर दिली,
1: हाँ
0: तो ई कारण से भी बकरी में अफरा रोग
1: अब
0: हो
1: देखिए
0: जाए।
1: कि जीव जंतु बाड़े तो उनका बुझाला ना, कहूँ पानी मिलल तो पी ले, तो एहू सब अफारा रोग करेला, तबीयत बिगड़ जाला और खाए पिए में दिक्कत रोए कहनी कि जैसे भिजल चारा आ ओगरी मत खियाई हरियर, तो कई बार सड़ल चारा ओमे चल गई तो ओहू से दिक्कत होला। अच्छा है बकरी घूमत फिरत एने उन्ने कुछो कुछो खा पी लेली, सड़ल अनाजे भेल कुछो भेल, तो ओहू से देखी कि ई दिक्कत होला। और अगर बकरी के ऐसन लक्षण दिखाई दे रहल बा तो तुरंत ओकरा पर ध्यान दीही और तुरंत राहत खातिर एंटी ब्लोट 50 से 60 ml ब्लोटोनॉक्स चाहे ब्लोटासिल के प्रयोग करे के चाही। एकरा 100 ग्राम और दवाई तो देवे करी, एकरा संगे संगे और उपाय भी बा, जैसे कि 100 ग्राम हींग अजवाइन आ काला नमक के घोर के गुनगुना पानी जोड़े देवे से भी गैस में आराम भेटेला। और अगर गंभीर स्थिति होके तब पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क
0: और
1: करी।
0: कुछ उपाय जैसे कि हमने सभी पेट के बल बैठ जाए चाहे कोई सर, तो वैसे ही बकरियों में एकरा निज से अफरा रोग से निजात दिलावे लगी। इस हालत में बकरी के जो अगला टांग ऊंचा जगह पर और पिछला टांग निचला जगह पर रख दे है अगर, तो एकरा से का होवा है कि बकरी के पेट के गैस मुंह से बाहर निकल जाए।
1: और तनी घुमा फिरा देला से भी ना
0: हाँ
1: तो ओहू से गैस में आराम
0: अब
1: होखेला।
0: भाई अगर कोई आराम ना मिले तो अपने से ज्यादा डॉक्टर बनने की जरूरत ना है, चिकित्सक से संपर्क कर लेवे के चाहिए।
1: हाँ
0: काहे
1: अब देखिए कि
0: कि
1: परेशानी नहीं है, कम हो तो जरूर डॉक्टर के दिखाई।
0: काहे कि जैसे आदमियों के भाई गैस उस बहुत से हार्ट अटैक हो जाए, वैसे ही बकरी में भी अगर 8 घंटा 9 घंटा गैस अगर रह जाए या फिर रह जाए तो उनका भी जान पर गंभीर संकट हो सके।
1: तो एक तरह से जीव जंतु अगर घर में रख ले बानी तो उनका
0: तो इस
1: के
0: सब पर
1: ध्यान
0: ध्यान
1: दी,
0: देवे के
1: और
0: चाहिए।
1: ध्यान दे तबे ओकरा से दुगो फायदो होगी।
0: और जब फायदा होवे है तो मन भी झूमे के मन कर रहे
1: अब सब का
0: हर
1: सुनवा रहल बानी,
0: नहीं। तो
1: सुनवाई
0: चल दिन कविता चौधरी से सुने ही लोकगीत।

0: वाह, गीत सुननी।
1: पूर्वी झूमर लोकगीत के हलै। और देखते हैं कि अभी हम सब पशु के अफरा रोग के बाद में बारे में बातचीत कर ली अर्चना बहिन, तो जैसे टीकाकरण जो है वो आदमी में जरूरी हो है, बहुत सारा बीमारी से सुरक्षा दे है टीका, तो वैसे पशु में भी टीकाकरण करना बहुत जरूरी है, तो और उनका भी बहुत सारा
0: रोग से बचावे
1: लगी। तो यही पर हम सब एगो वार्ता सुने ही पशुओं में टीकाकरण, और वार्ताकार हथिन डॉक्टर अजीत कुमार।
0: तो चलिए सुनी जा।
2: वर्तमान समय में आर्थिक लाभ किसानों का एक प्रमुख लक्ष्य है तथा इसमें पशुओं के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्रतिवर्ष हजारों दुधारू पशु खतरनाक बीमारियों जैसे गलाघोटू, लंगड़िया, खुरपका मुहपका आदि के संक्रमण के कारण मारे जाते हैं, जिससे पशुपालकों को आर्थिक क्षति का नुकसान उठाना पड़ता है। एक प्रचलित लोकोक्ति है, उपचार से बेहतर है बचाव, जो कि पशुओं में पूर्णतः सत्य है तथा यह आर्थिक तथा नीति शास्त्र दोनों में लागू होती है। वास्तव में बहुत से विषाणु जनित रोग लाइलाज है, क्योंकि विषाणु जनित रोग के उपचार हेतु कोई विशिष्ट औषधि उपलब्ध नहीं है, अतः विषाणु के संक्रमण से होने वाले रोगों का एक ही विकल्प मौजूद है, वह है टीकाकरण। पशुओं में विभिन्न रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण उचित समय पर उचित मात्रा में पशु शरीर पर उचित जगह पर उचित मार्ग से तथा उचित टीकों के प्रयोग द्वारा ही संभव है। टीकाकरण रोगों से बचाव की एक विधि है, जिसमें कमजोर या मृत प्राय या मृत रोगाणुओं को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, जिसका उद्देश्य उस विशेष रोगाणुओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना या बढ़ाना है। यह न सिर्फ उन्हें सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाता है, बल्कि विभिन्न बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार नियमित टीकाकरण द्वारा पशुपालक न सिर्फ दवाइयों पर होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। टीकाकरण के द्वारा विश्व में करोड़ों जानवरों के जीवन में विभिन्न संक्रामक रोगों से

बचाव किया गया है। इस तरह पशुपालकों का यह उत्तरदायित्व और कर्तव्य बनता है कि वह अपने पशुओं का उचित टीकाकरण चिकित्सक की सलाह पर शुरुआत में ही कराएं तथा प्रतिवर्ष समय अनुसार टीकाकरण करवाते रहें। वर्तमान में हम जूनोटिक रोगों, वह रोग जो पशुओं से मनुष्यों में तथा मनुष्यों से पशुओं में फैलते हैं, की गंभीरता को अनदेखी नहीं कर सकते हैं। जैसे रेबीज, एंथ्रेक्स, ब्रुसलोसिस, गाय का चेचक, क्षय रोग इत्यादि। इसलिए पशुओं में टीकाकरण से संक्रामक तथा खतरनाक जूनोटिक रोगों से बचाव संभव है। टीका शरीर के प्रतिरोधी तंत्र को उत्तेजित करता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। यह एंटीबॉडी शरीर तथा वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। बहुत सारे रोग के संक्रमण होने पर प्रभावित पशु की मृत्यु ही हो जाती है, यदि सही समय पर समुचित इलाज न किया जाए। इसलिए सही समय पर टीकाकरण ही इन जानलेवा रोगों का सही बचाव है। एक पशु से दूसरे पशु को होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए राज्यों में पशुपालन विभाग द्वारा भी समय समय पर टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसका लाभ पशुपालक को जरूर उठानी चाहिए। टीकाकरण से पशुओं में संक्रमण होने वाली अनेक बीमारियों की समय पर रोकथाम की जा सकती है। गाय, भैंस, बकरी आदि में होने वाले प्रमुख रोग हैं खुरपका मुंहपका रोग, गलाघोटू रोग, लंगड़ा बुखार एवं संक्रामक गर्भपात। खुरपका मुंहपका रोग मुख्यतः गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि जाति के पशुओं में होने वाले प्रमुख विषाणु जनित अंत्यत संक्रामक एवं छुआछूत का रोग है, जिसे फूट एंड माउथ डिजीज एवं FMD के नाम से भी जाना जाता है। छोटी उम्र के पशुओं में यह जानलेवा भी हो सकता है। संकर नस्ल के पशुओं में यह रोग अत्यंत तीव्रता से फैलता है। इस रोग का फैलाव पशुपालकों को अत्यधिक आर्थिक हानि पहुंचाता है। इस रोग से प्रभावित पशुओं में बुखार होने के बाद उनके मुंह एवं जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण पशु के मुंह से लार टपकते रहता है और चारा आदि खाना बंद कर देता है। इस रोग में पशु की मृत्यु तो नहीं होती है, परंतु दूध उत्पादन एवं पशु स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस रोग से बचाव हेतु पशुओं में प्रथम टीका 3 माह की उम्र पर, दूसरा टीका 6 माह की उम्र पर लगानी चाहिए। तत्पश्चात टीका मार्च, अप्रैल एवं सितंबर, अक्टूबर के महीने में प्रतिवर्ष लगवाते रहना चाहिए। दूसरा प्रमुख रोग गलाघोटू है, जिसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया के नाम से भी पुकारा जाता है। गलाघोटू एक जानलेवा रोग है जो पास्चुरेला माल्टोसीडा नामक जीवाणु के संपर्क संक्रमण से होता है। हालांकि यह रोग प्रायः सभी प्रजातियों में होता है, परंतु इसका अधिक प्रकोप गोवंश एवं भैंस वंश के पशुओं में अधिक होता है। एक बार इस रोग के लक्षण प्रकट हो जाने पर लगभग 80-90% पशुओं की मृत्यु ही हो जाती है। मौसम में परिवर्तन और थकान से उत्पन्न तनाव के कारण पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने से इस रोग का प्रकोप तथा फैलाव बढ़ जाती है। बरसात में इस रोग का फैलाव ज़्यादा होता है। इस रोग से संक्रमित पशु में बुखार 104 डिग्री से 107 डिग्री फारेनहाइट तक चला जाता है तथा निमोनिया होने के कारण पशु को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। इस रोग के प्रकोप से पशु के गले में सूजन हो जाने के कारण पशु घर घर की आवाज करता है। तत्पश्चात ज्यादा गले में सूजन होने पर संक्रमित पशु का सांस लेने में दिक्कत होने लगता है तथा तुरंत समुचित उपचार न होने पर 24 घंटे के अंदर संक्रमित पशु की मृत्यु ही हो जाती है। चूंकि इस रोग का फैलाव वर्षा ऋतु में ज्यादा होता है, अतः पशुपालक भाइयों को मेरा सलाह है कि गलाघोटू रोग से बचाव हेतु अपने पशुओं को प्रथम टीका 6 महीने की उम्र पर एवं फिर प्रतिवर्ष टीका मई या जून के महीने में पशु चिकित्सक से संपर्क कर जरूर लगवाते रहें। तीसरा जानलेवा रोग लंगड़ा बुखार है, जिसे जहरवाद, काला बुखार, ब्लैक क्वार्टर, BQ आदि नामों से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः गाय भैंसों में होने वाले जीवाणु जनित रोग है, जो क्लोस्ट्रीडियम चेभियाई नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है, जिसमें भारी भरकम शरीर वाले पशु के प्रायः कंधे या पुट्ठे की मांसपेशियां में गैस भरी

0: सूजन होती है जिसके कारण पशु लंगड़ाने लगते हैं। गैस भरी सूजन वाली जगह को दबाने पर चरचराहट की आवाज आती है, तेज बुखार तथा सेप्टिसीमिया से पशु की मृत्यु हो जाती है। यह रोग भैंस की अपेक्षा गाय में अधिक होता है। लंगड़ा बुखार का सामान्यतः संक्रमण कम उम्र के पशुओं में, जिसकी उम्र 6 महीने से 2 वर्ष की हो, उसमें अधिक देखने को मिलता है। वर्षा ऋतु में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है तथा इसमें मृत्यु दर भी बहुत अधिक होती है। अतः पशुपालक भाइयों को मेरा सुझाव है कि लंगड़ा बुखार से बचाव हेतु अपने पशुओं को प्रथम टीका 6 महीने की उम्र पर एवं प्रतिवर्ष टीका मई या जून के महीने में सदैव पशु चिकित्सक से सलाह लेकर लगवाते रहें। गाय और भैंस में संक्रामक गर्भपात रोग, जिसे ब्रुसेलोसिस रोग के नाम से भी जाना जाता है, एक जीवाणु जनित रोग है। इस बीमारी में पशु की प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है तथा गर्भित पशु में 6 से 9 महीने के बीच गर्भपात हो जाता है। इस रोग के कारण पशु स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं कर पाता है। इस रोग से बचाव के लिए 4 से 8 महीने तक की केवल मादा बछड़े को टीका लगवाते रहना चाहिए। टीकाकरण करते समय ध्यान देने योग्य कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे केवल स्वस्थ पशुओं को ही टीका लगवाएं, बीमार पशु को कदापि टीका न लगवाएं। निर्धारित कोल्ड चेन में टीके को रखना जरूरी होता है। टीका निर्माताओं के द्वारा दिए गए निर्देशों और खुराक की कड़ाई से पालन करें। टीका लगवाने के 2 से 3 सप्ताह पूर्व पशुओं को कृमिनाशक दवा जरूर देनी चाहिए, जो पशुओं में बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है। संभावित रोग प्रकोप के 1 माह पूर्व टीकाकरण जरूर करवा लें। जहां तक हो सके गर्भधारण किए हुए पशुओं में टीका न लगवाएं। टीकाकरण विफलता के आम कारण हो सकते हैं, जैसे कमजोर और बीमार पशुओं को टीकाकरण करना, टीका के रखरखाव और कोल्ड चेन मेंटेन करने में कमी होने पर, झुंड के सभी पशुओं में एक बार टीका न लगवाने पर, टीका के स्ट्रेन और रोगजनक जीवाणु के स्ट्रेन के विभिन्न प्रकार या उप प्रकार होने से भी टीका काम नहीं कर पाता है। अतः पशुपालकों को मेरा सुझाव है कि अपने स्वस्थ पशुओं को रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण पशु चिकित्सक से संपर्क कर समय अनुसार लगवाते रहना चाहिए।
1: हाँ, तो बहुत ही उपयोगी जानकारी दिल थी पशुओं में टीकाकरण डॉक्टर अजीत कुमार, तो इनका धन्यवाद करही। और अपने सोदर लोग के चलते चलते कोई गीत बढ़िया से सुनवा दे ही।
2: एकदम सुनवाई
1: तो चलथिन कविता चौधरी के स्वर में सुनही ई लोकगीत।

0: बाद देखिए कितना निमन झूमर रहे, एकदम मन झूम गई
1: सचमुच। लवंग चुए ल सारी रात तो और झूमे के मन करते हैं, लेकिन समय के अभाव है। इतना बढ़िया गीत सुनावे लगी कविता चौधरी के, धन्यवाद करी।
0: और अब यही के जोड़े चले के बिरा हो गए।
1: हाँ, तो नमस्कार। नमस्कार अर्चना बहन।
0: नमस्कार अंजुला बहन।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल के तहत खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर।

0: हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुन

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण में हुए शामिल। लोक भवन ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति के आधार पर मामलों का हुआ निपटारा। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गया, औरंगाबाद और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के बिग्रेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। इधर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर करना उनकी प्राथमिकता होगी। पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत

0: बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए शहरों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
1: जो नए टाउनशिप की कल्पना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है, और उसके तहत हमको नए शहरों को एक वृहद रूप से भविष्य को देखते हुए उसको हमें विस्तार के साथ साथ उसमें सुविधाएं भी बढ़ानी है। उसके अलावा हमारी जितने भी अभी वर्तमान में शहरी क्षेत्र हैं, या वो नगर निकाय है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, तो उनमें भी बेटर सुविधाएं फैसिलिटीज हमको पहुंचानी है और लोगों को आसानी से सरकार की सुविधाएं मिले, योजनाओं का लाभ मिले और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपनी क्षमता के अनुसार 100% देते हुए बिहार की प्रगति के लिए और बिहार के लोगों के कल्याण के लिए काम कर सकूं।
0: जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हर खेत तक पानी पहुंचाने की है।
2: कि हमारी प्राथमिकता है कि हर खेत तक कैसे सिंचाई का पानी पहुंचाया जाए, एक एक गांव में, एक एक खेतों तक, हमारे किसान के खेतों तक पानी पहुंच जाए, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं, सर्वे हो रहा है और हम लोग का टारगेट है कि 30 तक एक भी खेत नहीं छूटे, किसान के खेतों तक पानी पहुंचे।
0: राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विभागीय चुनौतियों को अवसर में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लोगों के प्रति जवाबदेही तय की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी गलत करेंगे उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
3: कल मैंने पदाधिकारी को, कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश भी दिया कि मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस चीज को याद रखना। तो इसलिए आने वाले समय में एक एक लोग जनता के प्रति जिम्मेवार बने, इसके लिए पदाधिकारी, कर्मचारी, सारा सिस्टम ईमानदारी से और जिम्मेवारी से काम करे तो मैं उसको सम्मान करूंगा। और जो आदमी सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत करेंगे, या तो वो सुधरेंगे या जेल के सलाखे के अंदर रहेंगे।
0: प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। लोक भवन ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को लिखे पत्र में कार्य योजना की रूपरेखा मांगी है। लोक भवन ने कहा है कि जून महीने में सभी विश्वविद्यालयों के अकादमिक सत्र की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को वित्तीय स्थिति भी अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव के पाठक को बिहार में नियम कानूनों को सरल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें पुराने कानूनों को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किए गए डी रेगुलेशन के दूसरे चरण के तहत लंबित मामलों को निपटाकर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। इस सिलसिले में उन्होंने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ पटना में उच्च स्तरीय बैठक भी की है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन किया। लोक अदालतों में बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रम वाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए गए। पहली बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की गई। लोक अदालतों में 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग पीठ का गठन किया गया था। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि अररिया में 1,227, शेखपुरा में 545 और शिवहर में 287 मामलों का निष्पादन किया गया। सुपौल में ट्रैफिक चालान से जुड़े 163 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किए जाने की मांग को लेकर कल पटना में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में 5,000 छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थियों पर ट्रैफिक बाधित करने, विधि व्यवस्था भंग करने और पुलिस कर्मियों

0: के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को युवाओं की कोई परवाह नहीं है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बिहार सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने की जगह सिर्फ सत्ता बचाने और राजनीतिक समीकरण साधने में जुटी है।
1: हमारे TRE के फोर के बच्चों को मारने का जो प्रवृत्ति सरकार ने अपनाई है, मैं उसको लेकर के घोर निंदा करता हूं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता और लीडर और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसे गंभीरता से लिया है और हम उन TRE के बच्चों को साथ और उनके संघर्ष के साथ देने के लिए हम तैयार हैं।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। आज गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। रोहतास जिले में कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर में सबसे अधिक 51.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है।
2: दिनांक 10 मई उत्तर बिहार के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया। यह मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव में मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कृतज्ञ राष्ट्र आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। राजधानी पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मंत्री लेसी सिंह और रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज

0: नगर परिषद कार्यालय में पिछले दिनों अपराधियों की गोलीबारी में घायल सभापति राजकुमार कुट्टू का आज पटना में निधन हो गया। उनका पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। गौरतलब है कि अपराधियों की गोलीबारी में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की भी मौत हो गई थी। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड अंतर्गत बरहड़वा फतेह मोहम्मद गांव में एक दुकान में आग लग जाने से दो बच्चों समेत तीन लोगों की झुलसकर मौत हो गई। घटना में दो लोग घायल हो गए। अररिया आरएस थाना क्षेत्र स्थित एक किराना गोदाम में आग लग जाने से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरे को हरे रंग में डुबोकर बेचने के वायरल वीडियो के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने 9 महिला हॉकरों को गिरफ्तार किया है। आईआईटी पटना परिसर में क्रिकेट खेलते समय करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र तेलंगाना का रहने वाला था। वैशाली जिले के हाजीपुर टाउन थाना क्षेत्र से पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी जिले के कन्होली थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 किलोग्राम मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने नशीला इंजेक्शन बेचने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। सुपौल जिले की एसएसबी सीमा चौकी न्योर ने स्थानीय पुलिस की मदद से भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से 2 महिलाओं को नेपाली शराब और 1,08,000 भारतीय रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बंद होने के कारण लगातार लग रहे जाम को देखते हुए मुंगेर के तारापुर नगर पंचायत में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने स्केटिंग प्रतियोगिता के विजेता लव और कुश को सम्मानित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण में हुए शामिल। लोक भवन ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति के आधार पर मामलों का हुआ निपटारा। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गया, औरंगाबाद और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
3: पश्चिम चंपारण जिले में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है। बीते दिनों आई तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गई, जिससे आवागमन बाधित हो गया। मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी देखी गई, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और कई जगह जाम की स्थिति बन गई। वहीं मौसम में आई ठंडक से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है।

0: जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नंदकिशोर राम को राज्य के नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्हें डेयरी पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद जिले सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर तथा आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। इधर जदयू नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पिछले सप्ताह पश्चिम चंपारण से सद्भाव यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में वाल्मीकि नगर के जदयू सांसद सुनील कुमार, पूर्व मंत्री श्रवण कुमार, पार्टी के पूर्व और वर्तमान विधायक जिलाध्यक्ष कन्हैया कुशवाहा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा के दूसरे दिन बेतिया ऑडिटोरियम में आयोजित संवाद कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और कार्यकर्ताओं व आम लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। बेतिया के ऐतिहासिक धरोहर बड़ा रमना मैदान के सौंदर्यीकरण और संरक्षण को लेकर प्रशासन ने सक्रिय पहल शुरू कर दी है। बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि लगभग 2,26,56,892 रुपए की लागत से मैदान का समतलीकरण कर खाली स्थानों पर मुलायम घास बिछाई जाएगी तथा अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों की लंबे समय से इस धरोहर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की मांग रही है। बीते दिनों जिले के लोगों को बड़ी सौगात मिली। अब जिले वासियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यह सुविधा अब जिले में ही उपलब्ध होगी। पिछले दिनों वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार और विदेश मंत्रालय भारत सरकार की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने रामनगर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बगहा और रामनगर के विधायक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पहले दिन कुल 35 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए। सांसद सुनील कुमार ने कहा कि अब वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बेतिया या पटना नहीं जाना पड़ेगा। वहीं विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने बताया कि इस केंद्र में प्रतिदिन 45 पासपोर्ट और 5 PCC अपॉइंटमेंट स्लॉट उपलब्ध रहेंगे। जिले में निजी विद्यालयों की कार्य प्रणाली को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी तरुणज्योत सिंह ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक शुल्क वसूली, अनावश्यक फीस और विशेष दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के लौरिया प्रखंड बाल विकास कार्यालय परिसर में 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2026 का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी ब्रजेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने बताया कि यह पखवाड़ा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक पूरे प्रखंड क्षेत्र में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के जीवन के पहले 6 वर्षों में मानसिक और शारीरिक विकास को मजबूत करना तथा गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जिले के होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर सुरेश प्रसाद को ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में आयोजित विश्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि की जानकारी सामने आते ही पश्चिम चंपारण सहित पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई।
1: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। पश्चिम चंपारण जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष कुमार। आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है सामयिक चर्चा।
2: नमस्कार, सामयिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं बिहार की नई सियासत पर आधारित विशेष रिपोर्ट। मैं हूं खालिद रशीद। श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे की। कौन बना मंत्री, किसे मिला अहम मंत्रालय और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इन्हीं मुद्दों पर होगी विस्तार से चर्चा। श्रोताओं, बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले महीने 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के बाद बीते 7 मई को मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने एनडीए के घटक दलों से मनोनीत 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान सबसे पहले श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली।
3: डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं
2: शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के

0: राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के घटक दलों के प्रमुख नेता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की। नई कैबिनेट में अनुभवी चेहरों के साथ साथ नए और युवा नेताओं को भी मौका दिया गया है। इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 15 मंत्री पद मिले हैं, जबकि जेडीयू से 13 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके अलावा अन्य घटक दलों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री को प्रतिनिधित्व मिला है। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों समेत मंत्रिमंडल में अब कुल 35 मंत्री हैं। संख्या के आधार पर 1 मंत्री पद अभी रिक्त है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विस्तार सिर्फ प्रशासनिक जरूरत नहीं बल्कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश भी है। अब बात विभागों के बंटवारे की करते हैं। जानते हैं किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है इस रिपोर्ट में।
1: मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता जैसे अहम विभाग अपने पास रखे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त विभाग सौंपा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग की कमान दी गई है। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और सूचना तथा जनसंपर्क विभाग की कमान सौंपी गई है। संजय सिंह टाइगर को उच्च शिक्षा और विधि, दामोदर रावत को परिवहन और नीतीश मिश्रा को नगर विकास और आवास तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अशोक चौधरी को खाद्य उपभोक्ता और संरक्षण विभाग, भगवान सिंह कुशवाहा को योजना विकास, अरुण शंकर प्रसाद को श्रम संसाधन, युवा रोजगार और कौशल विभाग का कार्यभार दिया गया है। मदन सहनी को मध्य निषेध और निबंधन विभाग, संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन और रत्नेश सादा को आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। पथ निर्माण विभाग कुमार शैलेंद्र को, पर्यटन केदार प्रसाद गुप्ता को और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी लखेंद्र रोशन को दी गई है। वहीं सुनील कुमार को ग्रामीण कार्य विभाग, जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और नंदकिशोर राम को डेयरी, मत्स्य और पशुपालन संसाधन विभाग सौंपा गया है। मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरों में शैलेश कुमार और बोलो मंडल को ऊर्जा, डॉक्टर प्रमोद कुमार को खान एवं भूतत्व और कला एवं संस्कृति तथा मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके साथ ही रामचंद्र प्रसाद को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, रामकृपाल यादव को सहकारिता, संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, संजय कुमार को गन्ना उद्योग और दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार।
0: इस कैबिनेट विस्तार में युवाओं और महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिखाई दी है। कैबिनेट विस्तार में 5 महिला मंत्रियों को जगह दी गई है। इनमें भाजपा की श्रेयसी सिंह को उद्योग और खेल तथा रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कमान दी गई है। वहीं जदयू के लेसी सिंह को भवन निर्माण, शीला कुमारी को विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा तथा श्वेता गुप्ता को समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पदभार ग्रहण करने के बाद उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन और पलायन रोकना उनकी प्राथमिकता है।
2: अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, सेवा भाव के साथ उद्योग के क्षेत्र में भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार बिहार को उस नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे और एक बेटी की तरह सेवा करके दिखाएंगे।
0: भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विभाग के लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए ठोस कार्यनीति बनाई जाएगी।
3: राजस्व विभाग से सही तरीके से सब काम उसका निपटारा हो, इसका विभाग प्रयास शुरू कर देगा। नीचे स्तर पर विभाग की काफी बदनामी है और जिसको लेकर के लगातार विभाग प्रयास कर रही है कि विभाग के अंदर साफ सुथरा और स्वच्छ काम लोगों तक मिल सके।
0: राष्ट्रीय जनता दल समेत विपक्ष के अन्य दलों ने इस कैबिनेट विस्तार पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि विभागों का बंटवारा राजनीतिक संतुलन के लिए किया गया है, न कि विकास के लिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है इस कैबिनेट में परिवारवाद हावी नजर आ रहा है।
4: ये लोग केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। सब लोग जो है परिवारवादी जो है लोग हैं।
0: हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि नई टीम बिहार के विकास को तेज गति देगी।

0: और प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाएगी। प्रदेश की जनता को भी इस नई कैबिनेट से काफी उम्मीदें हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आम लोगों ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर तेजी से काम होने की उम्मीद जताई है।
1: हम उम्मीद करते हैं कि ये नई सरकार पलायन को रोकने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता देगी। और अगर हम बात करें रोजगार और उद्योग की, तो युवाओं के लिए नौकरी में बढ़ोतरी करनी होगी। और सबसे अहम मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार पर रोक होना चाहिए, सरकारी काम में पारदर्शिता होनी चाहिए।
2: मेरा नाम रोशनी पांडे है और मैं सारण बिहार से हूँ। हमें ऐसा लगता है कि जो वुमेन है वो हमारे प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझती है और उसको वो आगे भी बढ़ाएंगी। तो ये जो गवर्नमेंट का पार्ट है, अप्रोच है इस बार, वो बहुत ही अच्छा हमें लगा है। एंड वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये गवर्नमेंट क्या करने वाली है, और हमें बहुत ज्यादा होप है एंड ट्रस्ट है गवर्नमेंट।
3: मेरा नाम कुंदन सिंह है। मंत्रिमंडल में पूरा A to Z का ख्याल रखा गया है। 5 महिला मंत्री बनाए गए हैं, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक मिसाल है। जैसे अगर हम पहले बिहार हमारा महिलाओं के पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज कहीं ना कहीं ये तस्वीर दर्शाता है बिहार के विकास में उन्नति के लिए आगे आ रही हैं।
0: तो श्रोताओं, बिहार की नई कैबिनेट सिर्फ मंत्रियों की सूची नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक और प्रशासनिक दौर की दिशा भी तय करेगी। जिम्मेदारियां तय हो चुकी हैं, मंत्रियों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है, अब नजर रहेगी कामकाज और नतीजों पर। इसके साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा का ये अंक समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया। संपादन डॉक्टर सविता पारीक, ध्वनांकन प्रहलाद कुमार और प्रस्तुति अजय कुमार।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म सुनैना से इस गीत को, जिसके लिए स्वर दिया है यशोदास ने।

0: लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म हिना में। अगला गीत आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

महेंद्र कपूर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म हमराज में। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म है उत्सव।

0: फिल्म उत्सव में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले को। अगला गीत आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

बूंद जो बन गई मोती। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से इस गीत को, जिसके लिए स्वर दिया था मुकेश ने। इनके इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए अनूप कुमार के स्वर में गीत। कार्यक्रम है सुगम संगीत।

0: अनूप कुमार के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री

0: प्रधानमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवीके नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही है। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाश।

0: आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार

0: कक्ष विशेष शुक्ला।
1: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतर कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishakh, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. We have more from our correspondent.
0: After taking the oath as Chief Minister of West Bengal, Shubhendu Adhikari held meeting with the Chief Secretary, Home Secretary and other officials of the state at the PWD tent at Maidan. Meanwhile, renovation works are underway at the Writers Building in Kolkata for reshifting of the Secretariat of the State Government, which was shifted from this heritage building to the Navanno after Mamata Banerjee came to power in 2011. The new BJP government will work from the Writers Building, which is a heritage structure.

0: WFI said Vinesh is ineligible to compete in domestic events until the 26th of June this year for not completing the mandatory six-month notice period required for athletes returning from retirement under UWW anti-doping rules. The federation has sought her explanation on four broad charges, including her disqualification from the 2024 Paris Olympics. She has been given 14 days to respond to the notice. In archery, India's Sahil Jadhav won a bronze medal in the men's individual compound event at the World Cup 2026 Stage 2 in Shanghai, China today. The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player cum coach Martin Damsbo 147-144 in the bronze medal playoff to secure India's first medal of the ongoing tournament. In IPL cricket, Gujarat Titans were 221-4 in 19.2 overs against hosts Rajasthan Royals in Jaipur. When reports last came in, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Last night, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu. With support of Congress, VCK, IUML and left parties, set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India, Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmin. शुभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकान असेंबली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस वीसीके आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस तरह उन्होंने रियासत में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभाल ली है। गवर्नर आर एन रवि ने जनाब शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला के हमरा 5 काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और क्षुदीराम टूडू शामिल हैं। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, एनडीए और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराए आला, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नबीन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इख्तदार में थी। इधर मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली के नए मुंतखब अरकान विधानसभा में 13 मई को हलफ लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में पीडब्ल्यू टेंट में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और रियासत के दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान रियासती हुकूमत के

0: सेक्रेटेरिएट की जगह फिर बदलने के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तजदीद का काम जारी है, जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इख्तदार में आने के बाद नबन्ना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाकये के तहत आज SIR के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड IAS अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के IAS अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम TVK पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 सरकारी असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: TVK पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिन में वो चौथी मरतबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मंसूख कर दिया था क्योंकि उन्हें केरलम जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने TVK पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मदऊ किया। अब पार्टी को मजमूई तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। DMK पार्टी से इतिहास से अलीदा होकर कांग्रेस ने TVK पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआ की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: हालिया असम्बली इंतखाबात में TVK पार्टी 108 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 234 रुकनी तमिलनाडु असम्बली में अक्सरियत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पार्टी ने कहा है कि VCK और IUML दोनों ही पार्टियों ने सरकार की तश्कील के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। जोसेफ विजय 2 असेंबली हलकों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी। इस तरह TVK पार्टी के अरकान की तादाद 107 रह जाएगी। हिमायत करने वाली पार्टियों के अरकान असेंबली की मजमूई तादाद 13 हो गई है। इनमें कांग्रेस के 5 अरकान जबकि CPI, CPIM, VCK और IUML के 2-2 अरकान असेंबली शामिल हैं। भारत ने ओडिशा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहर हिंद के खित्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने MIRV सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO, भारतीय फौज और सनद की सताइश की। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात का भी 2 रोजा दौरा करेंगे, जो कल से ही शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले NDA सरकार की जानिब से शुरू की गई समाजी सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया है। इनमें PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि इन इकदामात से मुल्क के अवाम के लिए अजमत, वकार, यकीन दहानी और माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना से सबसे निचली सतह पर लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असर पड़ा है और समाजी सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है। हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातिहीन का ऐलान कर दिया है और इस एजाज के लिए मुल्क भर से 42 पंचायतों को मुंतखब किया गया है। پنچایتی راج کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ ایوارڈ پیش کیے جانے کی تقریب آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو

नई दिल्ली में होगी। वजारत के मुताबिक कर्नाटक को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं और उसकी 6 पंचायतों को मुंतखब किया गया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 5-5 पंचायतें चुनी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वापसता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल ईडी ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी थी। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के 2002 के एक्ट की फौजदारी दफात के तहत ये कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस केस का ताल्लुक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद के जरिए मुबैना तौर पर बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई से नाजायज रकूमात की भारत मुंतकली से है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए 3 केसों के सिलसिले में मुंबई में 17 मकामात पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दी। सीबीआई के मुताबिक तलाशी की यह कार्रवाई इन कंपनियों के डायरेक्टरों के रिहायशी ठिकानों के साथ साथ उन जैली कंपनियों के दफातर में की गई जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड्स को मुंतकिल करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में काबिल एतराज दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं। सीबीआई ने कहा कि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान सरकारी मिल्कियत के मुख्तलिफ बैंकों और एलआईसी की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायतों की बुनियाद पर अनिल अंबानी की सरबराही वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ 7 केस दर्ज किए गए। हजारों करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधड़ी के सिलसिले में ये शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। मणिपुर में कामजोंग जिले के नामली से जिस खातून को कुकी नेशनल आर्मी बर्मा और विलेज वॉलेंटियर्स ईस्टर्न जोन की जानिब से जुमेरात को अगवा किया गया था, उसे आसाम राइफल्स की मरबूत कोशिशों के सबब आज जेडचुरुज गांव से रिहा कर दिया गया। नीम फौजी दस्ते ने खुफिया और दीगर एजेंसियों के साथ तालमेल में अगवाशुदा खातून के बचाव की कोशिश की और इस खातून को जेडचुरु गांव के नजदीक सुपुर्द कर दिया गया। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में AIOS मुसल्ला अफवाज से मुतालिक ऑफ्थेल्मोलॉजी अपडेट 2026 का इफ्तिताह किया। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आंखों के अमराज की कुल हिंद अंजुमन के साथ इश्तराक में नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के महकमाए अमराज चश्म की जानिब से किया जा रहा है। इसमें भारत और बैरून मुल्क से फौज के आंखों के अमराज के माहिरीन और दीगर सिविलियन माहिरीन आंखों के अमराज के सिलसिले में तहकीक इख्तरा और तिब्बी महारत के सिलसिले में एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर यज्जा हो रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाब्ता जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसका मकसद इलाकाई महाजराई को फैलने से रोकना है। मगरबी एशिया के खत्ते में फौजी और सियासी कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका सिफारतकारी में मसरूफ है और उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया है कि ईरान के जवाब से मुजाकरात के अगले मरहले का तायुन हो सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई पर नुकताचीनी की है और अमरीका पर इल्जाम लगाया है कि वो कशीदगी बढ़ाकर सिफारती कोशिशों को कमजोर कर रहा है। आब नाए हुरमुस और उसके अतराफ ताजा वाकयात के पस मंजर में ये बयानात सामने आए हैं, जिसमें ईरान और अमरीकी फोर्सेस के दरमियान मुबैना बहरी टकराव भी शामिल है। केरल में मौसम गर्मा की बारिश में तेजी आ गई है और भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 5 दिनों तक कहीं कहीं शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। IMD ने आज 9 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है और 7 अजला में कल भी अलर्ट नाफिज रहेगा। खराब मौसम के सबब केरलम में और लक्षद्वीप में माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। ताहम कर्नाटक के साहिल के नजदीक माहीगीरी के सिलसिले में कोई पाबंदी नाफिज नहीं की गई है। 19वें मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदूबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। जनूबी एशिया का ये अहम फेस्टिवल दस्तावेजी मुख्तसर फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए वक्फ है। इसके लिए मंदूबीन 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके फेस्टिवल के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपना इंदराज करा सकते हैं, जबकि तलबा को दस्तावेजात की तस्दीक के साथ इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगी।

आज चेन्नई के शंघाई में तीरंदाजी आलमी कप 2026 के दूसरे मरहले के तहत मर्दों के इनफरादी कंपाउंड मुकाबले में साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता। महाराष्ट्र के 25 साल तीरंदाज ने डेनमार्क के सरकर्दा खिलाड़ी और कोच मार्टिन डेम्सपो को 144-147 के स्कोर से हराकर कांसे का तमगा जीता और भारत को जारी टूर्नामेंट में पहला तमगा दिलाया। गुजश्ता बरस भारत ने शंघाई में 5 कंपाउंड तमगे जीते थे। आईपीएल में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में

शंघाई में पांच कंपाउंड तमगे जीते थे। आईपीएल में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 55 रन स्कोर किए। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट को डिसिप्लिन की पाबंदी न करने और डोपिंग मुखालिफ जब्तों की खिलाफवर्जी के इल्जाम के सिलसिले में आज वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 15 सफहात पर मुश्तमिल नोटिस में WFI ने कहा कि विनेश इस साल जून तक घरेलू मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। शोभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकानी असेंबली ने भी काबीना वजीरा के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस वीसी के आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज टू में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है।

जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे, मुझे कहने दी कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे।

0: और उस राग से उस फिल्म में कैसे वो, और बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है। वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले तो फिर आप क्या करते हैं? आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे, जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की

0: इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
1: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का न केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है, और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है। तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7-8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
2: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
3: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाया है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
4: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी, और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।

0: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है, चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान। दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
0: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
0: और मैं प्रांजल।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी। वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
3: मेरा नाम सीता जाखड़ है। एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना डीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, इससे कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे अपने शेखावटी की हवेलियाँ मैंने बनाई है, इससे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहाँ का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ। मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है।
4: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादरगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन हैं जो ये कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9-10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादरगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन्स को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे तो मैंने उनका काम देखा। फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
5: मेरा पूजा राहुल नाम है। मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या

0: फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है, उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
1: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
2: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
3: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
2: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
3: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
2: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
4: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिलके रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज हैं, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पे लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं।
3: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
2: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
3: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
2: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
5: भारत में और भारतीय वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं। स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है

0: उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा। बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए, पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
4: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। Rajkumar Majumdar is one of the most versatile santoor players in India, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santoor under the guidance of the legendary santoor maestro,

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalaya and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया।